FM बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक सम्मत 1948 के श्रावण मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 अगस्त सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है, FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार अब से ही कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। दो दिन की बैठक में तीन प्राथमिकता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक से ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक साझेदारी मजबूत करने तथा संस्कृति के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्य रूप से आरंभिक बाल्यावस्था में समुचित देखभाल और शिक्षा, कौशल विकास सहयोग बढ़ाना तथा अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति, लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। संसद की कार्यवाही आज दिन के 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वहां की वास्तविकता विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा है।
1: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेगी। पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप आज से शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्य भारतीय टीम हिस्सा लेगी। इसके साथ ही

0: ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आइए सुनते हैं खेती की बातें।
2: भाइयों को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, प्रत्येक किसान यह अपेक्षा करता है कि उसकी जोत के संपूर्ण क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता वाली अधिक से अधिक उपज प्राप्त हो। किसान भाइयों, हमारी मृदा जितनी अधिक स्वस्थ होगी हम उतनी ही अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए जरूरी है मृदा में पोषक तत्वों का प्रबंधन। किसान भाइयों, जैविक खेती का सिद्धांत पुराना है परंतु अभी इसे व्यवस्थित रूप से लागू नहीं किया जा सका है। कई विकसित देशों में जैविक खेती राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर की जाती है, जिसमें मिट्टी, उत्पादन विधि और उत्पाद प्रमाणीकरण प्रक्रियाएं शामिल हैं। भारतीय जैविक खेती शुद्ध जैविक विधि, समन्वित हरित क्रांति कृषि प्रणाली तथा समेकित कृषि प्रणाली पर आधारित है। किसान भाइयों, शुद्ध जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक और पौध संरक्षण दवाओं का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित होता है। समन्वित हरित क्रांति कृषि प्रणाली में समेकित पोषक तत्व, कीट एवं व्याधि प्रबंधन तकनीकी को अपनाया जाता है, जबकि समेकित कृषि प्रणाली एक निम्न लागत की कृषि प्रणाली है जिसमें पोषक तत्वों से परिपूर्ण जैविक स्रोतों को पुनर्चक्रीकरण किया जाता है। इस पद्धति में फसल उत्पादन और पशुपालन को साथ साथ तथा एक दूसरे के पूरक के रूप में किया जाता है। इन तीनों पद्धतियों में से भारतीय किसानों द्वारा मुख्य रूप से जैविक पद्धति और हरित क्रांति पद्धति को अपनाया जा रहा है। मिट्टी में पोषक तत्व संतुलन हेतु दलहनी फसलों की एकल और मिश्रित खेती आवश्यक है। इसके साथ ही मृदा में कृषि अवशेष, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, जीवाणु खाद और बायोडायनेमिक कंपोस्ट का प्रयोग और पौध सुरक्षा हेतु खरपतवार की सफाई तथा जैविक कीटनाशकों का प्रयोग जरूरी है। किसान भाइयों, मृदा उर्वरता का संतुलन बनाए रखने के लिए फसल की मांग और आवश्यकता के अनुसार पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराते रहना आवश्यक है, जिससे अधिक से अधिक उपज मिल सके और मृदा स्वस्थ सुरक्षित बना रहे। इसके लिए आवश्यकता अनुसार अकार्बनिक और कार्बनिक स्रोतों से फसल को सभी तत्वों का निश्चित अनुपात में ग्रहण करना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक तत्व का पौधों के अंदर अलग अलग कार्य और महत्व है जो विभिन्न अवस्थाओं में पूर्ण होता है। कोई एक तत्व दूसरे तत्व का पूरक नहीं है। यह संतुलन बिगड़ने पर उत्पादन सीधे प्रभावित होता है। इस व्यवस्था या तकनीकी को एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की संज्ञा दी गई है। कृषि में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के कई लाभ हैं, जैसे अधिकतम पैदावार प्राप्त करना, पोषक तत्वों को बर्बादी से बचाना, मृदा की उत्पादकता और स्वास्थ्य बनाए रखना, गुणात्मक उत्पादन प्राप्त करना, वातावरण की विपरीत परिस्थितियों से फसलों का बचाव, कीड़े मकोड़ों के प्रभाव से प्राकृतिक तौर पर कम करना और लागत अनुपात में वृद्धि प्राप्त करना एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन से संभव है। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के लिए मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही उर्वरकों और जैविक खादों का प्रयोग करें। दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर का प्रयोग अवश्य करें। धान व गेहूं के फसल चक्र में ढेंचे की हरी खाद का प्रयोग करें। फसल चक्र में परिवर्तन करें। आवश्यकता अनुसार उपलब्धता के आधार पर गोबर तथा कूड़ा करकट का प्रयोग कर कंपोस्ट आप तैयार करें। खेत में उपलब्ध फसल अवशिष्ट जैविक पदार्थों को मिट्टी में मिला दें, इससे अनेकों लाभ हैं। कार्बनिक पदार्थ तथा अकार्बनिक उर्वरकों का संतुलित रूप में उपयोग करें। जी हाँ किसान भाइयों, मृदा में पोषक तत्वों के प्रबंधन पर आज विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जब मृदा स्वस्थ होगी तब अधिक से अधिक फसल उत्पादन संभव है। किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में बातें आज बस यहीं तक। दीजिए हमें कार्यक्रम खेती की बातें से अनुमति।

श्री राम के मन में ये सोच व्याप्त है कि राजा जनक समेत भरत सभी माताएं अयोध्या तथा जनकपुरवासी दुखी हैं और व्यर्थ ही चित्रकूट में वनवास के कष्ट भोग रहे हैं। उनकी चिंता सुनकर वशिष्ठ जी मिथिलापति से सबकी दुविधा समाप्त करने का आग्रह करते हैं। मुनिवर के वचन सुनकर जनक जी का ज्ञान और वैराग्य तिरोहित हो गए। वो प्रेम और मोह के वशीभूत हो गए। उन्हें लगा कि यहाँ आकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ ने तो पुत्र विरह में अपने प्राण त्याग दिए और वे उन्हें और गहन वन में भेजकर अपने प्राण भी नहीं त्याग सकेंगे। मिथिलापति को नहीं समझ में आता कि अब क्या किया जाए। अतः क्या किया जाए इसका निर्णय उन्होंने भरत पर छोड़ दिया। भरत ने कहा, सारा जगत जानता है कि सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। स्वामी धर्म और स्वार्थ एक दूसरे के विरोधी हैं। बैर अंधा होता है और प्रेम में बुद्धि साथ छोड़ जाती है। अतः मुझसे न पूछकर श्री राम की रुचि का ध्यान रखते हुए वही करना चाहिए जो सर्वसम्मत तथा सबके लिए हितकारी हो।

अभी आप सुने थे श्री रामजीत मानसगन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। सुनते हैं चिंतन संघर्ष आलेख वाचन निर्मला तिवारी से है।

अक्सर लोग मेहनत करने से घबराते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए छोटा और सरल रास्ते की तलाश करते हैं। लेकिन किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में व्यक्ति का संघर्ष जितना कठिन होगा, उसकी सफलता भी उतनी ही शानदार होगी। कठिन संघर्ष से ही व्यक्ति अपने जीवन के उन अनमोल उपहारों के ऊपर पड़ी हुई परतों को हटा पाता है जिनसे वह अनभिज्ञ होता है। कठिन संघर्ष से ही व्यक्ति का जीवन निखरता है

जिस प्रकार सोने की शुद्धता को जांचने के लिए उसे गलाया जाता है, जिससे अशुद्धियां जलकर नष्ट हो जाती हैं और केवल शुद्ध सोना बचता है, उसी तरह कठिन चुनौतियां व्यक्तित्व को निखारती हैं। चुनौतियां हमें सिखाती ही हैं, अवसर प्रदान करती हैं आगे बढ़ने

अभी आप सुन रहे थे चेतन तन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आई सुनते हैं आराधना भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम हरिहरन सुरेश वाडेकर और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे हरिहरन श्रेष्ठ वाटिका और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में आराधना। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आप सुनेंगे भेंट वार्ता, रीढ़ की हड्डी की बीमारियां और सावधानियां। भेंट वार्ता कर रहे हैं डॉक्टर राजचंद्र झा रांची से, और इनसे बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल।

0: की वर्तमान जीवन शैली की यदि हम बात करें तो रीढ़ की बीमारी से बहुत सारे लोग आजकल ग्रसित हो जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि रीढ़ की हड्डी से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हैं और कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो इस बीमारी को प्रभावित करती है, और क्या क्या सावधानियां अपने हम जीवन में बरतें, और खान पान का हम किस प्रकार ख्याल रखें कि एक संतुलित जीवन हम व्यतीत कर पाएं और रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारियां हम तक नहीं पहुँचे। बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजचंद्र झा। डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है रीढ़ के हड्डियों से संबंधित बीमारियों में?
1: शरीर के किसी भी अंग की हम बात करें तो आमतौर पे चार

0: आजकल के हमारे युवा साथी लगातार कंप्यूटर या लैपटॉप पर बैठकर काम करते हैं और काम करने के सिलसिले में बहुत सारी बीमारियां उन तक पहुंचती है। उन्हें कमर में दर्द होने लगता है, गर्दन में दर्द महसूस होने लगता है और कभी कभी पैर के पीछे भी उन्हें दर्द का एहसास होता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है, किस तरह की हम सावधानियाँ रखें कि बीमारी नहीं हो?
1: समय और युग का अपना धर्म होता है। लैपटॉप पर काम करना है।

0: अगर ये छोटी छोटी सावधानियों से आप रीढ़ के हड्डियों की तकलीफ से बच सकते हैं।
1: जिसके आरंभिक लक्षण हैं वो क्या है, ताकि हम सावधान हो जाएं और अपने दिनचर्या में हम सुधार ला लें।
0: प्रारंभिक लक्षण ज्यादा

कड़ापन का होना भी शुरुआती लक्षण है। इस स्थिति में अक्सर हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं कि काम की अधिकता से ऐसा हो रहा है।

खान पान के विषय में बताएंगे, आपको कुछ व्यायाम की सलाह देंगे और अगर आवश्यक होगा तो दवाइयां देंगे। इन चारों के संयोग से ही इन बीमारियों से बच भी सकते हैं और अगर बीमारी हो गई है तो उसका समाधान भी निकल सकता है। खान पान में सबसे आवश्यक ये है कि एक चीज हम लोग याद रखें कि अपने रसोई घर में उन चीजों का ज्यादा समावेश करें जो हमारे पूर्वज खाया करते थे, दादा नाना नानी दादी। ये फास्ट फूड ने बहुत नुकसान किया है। इस वर्ष पूरी दुनिया में, विशेषकर भारत वर्ष में, मोटे अनाजों पर काफी चर्चा हो रही है और फिर से एक बार उनको हमारे दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। तो मोटे अनाज, अब अगर भात ही है, चावल खाना

0: तो आपके शरीर की हड्डियां मजबूत रहेंगी, पैर, घुटना, कूल्हा, नीचे कमर, पीठ और गर्दन का दर्द कम होगा।
1: और कौन कौन सी मुख्य बीमारियां हैं रीढ़ की हड्डी की, जिससे हम काफी परेशान हो जाते हैं?
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा में भेंट वार्ता, रीढ़ की हड्डी की बीमारियां और सावधानियां। भेंट वार्ता करते डॉक्टर राजचंद्र झा और इनसे बातचीत करे थे श्री संजीव कुमार लाल। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहाँ से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार अब से कुछ ही पलों।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया पर हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है। हमले के बाद ये जहाज कल यमन तट से दूर लाल सागर में डूब गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सभी 13 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है और चालक दल की सुरक्षा के लिए यमन के अधिकारियों के साथ सक्रिय समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने यमन के अधिकारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वहां की वास्तविकता विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा है।
1: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी थी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। ये नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इसी राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों ही सदनों की कार्यवाही कल नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के कारण, पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के चलते बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद की कार्यवाही आज दिन में 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग CID की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषित करेगा। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय, मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि RBI प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत सहित भारत के शीर्ष खिलाड़ी प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आइए आपको बताते प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन समय में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 7:15 पर आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश धर्मू नायक एवं साथियों की आवाज़ में। बेगम अख्तर की आवाज़ में आप सुनेंगे सुगम संगीत 7:00।

बजकर 30 मिनट पर 8 बजे का समय होगा दिल्ली से समाचार प्रभात का। 8 बजकर 15 मिनट पर आप सुनेंगे दिल्ली से मॉर्निंग न्यूज। 8 बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे रांची से प्रादेशिक समाचार। गीत गुंजन का समय होगा 8 बजकर 45 मिनट पर। 9 बजे का समय होगा जौहर पलामू का। 9 बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग हिंदी में। समाचार का समय होगा 10 बजे। 10 बजकर 5 मिनट पर आप सुनेंगे दिल्ली से अंग्रेजी में समाचार। 10 बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे मुंबई से वेद भारती। 11 बजे रंग तरंग और 12 बजे यादों की महफिल। दोपहर के 1 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार। 1 बजकर 5 मिनट पर आप सुनेंगे दिल्ली से अंग्रेजी में समाचार। 1 बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे रांची से प्रादेशिक समाचार। 1 बजकर 20 मिनट पर आप सुनेंगे विविध भारती में सुरीला सफर मुंबई से। 2 बजे का समय होगा दिल्ली और मुंबई से अंग्रेजी में समाचार का। 2 बजकर 15 मिनट पर आप सुनेंगे दिल्ली और मुंबई से हिंदी में समाचार दोपहर की सभा में। 2 बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे मुंबई से विविध भारती में सदाबहार नग में। 2 बजकर 55 मिनट पर हम चलेंगे रांची जहाँ से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 3 बजे का समय होगा मुंबई से विविध भारती में सखी सहेली। 4 बजे का समय होगा रांची से प्रादेशिक समाचार का। 4 बजकर 2 मिनट पर आप सुनेंगे विविध भारती में आज के मेहमान। शाम 5 बजे आप सुनेंगे रांची से प्रादेशिक समाचार। 5 बजकर 2 मिनट पर आप सुनेंगे मुंबई से विविध भारती में छाया गीत। शाम 5 बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम।

शाम 5:35 आप सुनेंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन खेती बाड़ी का समय होगा। शाम के 6:02 पर किसान भानियों का अपना कार्यक्रम सैनवाणी का समय होगा। शाम 6:30 पर 7:00 का समय होगा रांची से प्रादेशिक समाचार का। जिले में आजकल आप सुनेंगे 7:10 पर एक रंग आप सुनेंगे 7:15 पर। कल्याणी कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे स्वास्थ्य कार्यक्रम 7:45 पर। 8:00 का समय होगा चितपट संगीत का। 8:45 पर हम चलेंगे दिल्ली जहाँ से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 9:00। 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार। 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती में आज के फनकार मुंबई से। 10:00 का समय होगा रजनीगंधा का। 11:00 आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 11:05 पर। और हम अपनी सभा का समापन करेंगे रात के 11:10 पर। ये थी हमारी आज के सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं पलाश लोकगीतों का ये कार्यक्रम धर्मनायकम साथियों की आवाज़।

अभी आप सुन रहे थे धर्म नायक एवं साथियों की आवाज में प्लास लोगी तो का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। सुनते हैं सुगम संगीत बेगम अख्तर की आवाज में।

लोग कहते हैं आज के मॉडर्न जमाने में क्लासिकल म्यूजिक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, इसमें आवाम की कोई दिलचस्पी नहीं, मगर ऐसा कहने वाले ये भूल जाते हैं कि गज़ल और उसकी गायकी भी क्लासिकल मौसीकी का ही एक अंग है। इसे आज भी वही मकबूलियत हासिल है जो पहले थी। गज़ल अगर सही ढंग से पेश की जाए तो इसका जादू सर चढ़कर बोलता है।

बदलते हुए जमाने ने जहाँ हर चीज को कुछ नयापन दिया, वहाँ मूसीकी ने भी नई कदरों की कदर की है। मैं नएपन की मुखालिफ नहीं, लेकिन ये नयापन वहीं तक मुनासिब है जहाँ तक आज के फनकार और मूसीकार नएपन के चक्कर में तहजीब का दामन न छोड़ें। गजलें पहले भी गाई जाती थीं, आज भी गाई जाती हैं, मगर असल में गजल वही कहलाने की मुस्तहक है जिसमें गजल का रवायती अंदाज मौजूद हो। मिसाल के तौर पर गजल की ये बंदिश सुनिए जो मुझे बहुत पसंद है।

गजल में एक ऐसी कैफियत है, और अच्छे शोरा की गजलों में तो सुभान अल्लाह सुभान, यानी सुन के तबीयत खुश हो जाती है। तो बताइए ये सिर्फ पढ़ के जो लुत्फ आता है, और गाने के बाद इसमें क्या लुत्फ पैदा होगा कि अगर वो उस अंदाज से गाई जाए जिस तरह गजल गाया करते थे, तो मेरा ख्याल है कि इंसान बगैर रोए तो नहीं उठना चाहिए उसको।

अभी आप सुन रहे थे बेगम अख्तर की आवाज़ में स्वय सरिता, सुगम संगीत का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहां सब सुनेंगे समाचार प्रभात अब से कुछ ही पलों में।

0: बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा। सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजीसी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवीं वरीयता मिली। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पांचवीं वरीयता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 13 भारतीय थे।
3: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना आया जाना बंद होना चाहिए और क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और व्यापार शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है।
4: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
2: श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि अगले महीने 12 और 13 तारीख को भारत की मेजबानी में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रित किया गया है। भारत इस साल ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह बैठक आज और कल भोपाल में आयोजित होगी।
5: भोपाल में आज से ब्रिक्स देशों की बड़ी सांस्कृतिक बैठक शुरू हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठकें होंगी। इसके चलते भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह सजाया गया है। इस आयोजन से सांस्कृतिक संवाद बढ़ेगा और सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। पहले 2 दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी जबकि आखिरी 2 दिन मंत्री स्तर पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत ने इस बैठक में 2 अहम प्रस्ताव रखे हैं। पहला, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना और दूसरा, यूनेस्को में सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा नामांकन भेजने की पहल करना। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
2: ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग CID की जांच पर भरोसा नहीं है।
2: झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय युवाओं के आक्रोश और आंसुओं का गवाह बना हुआ है। JPSC परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, व्यवस्था का रुख इतना कड़ा है कि कड़ाके की धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पीने का पानी, खाना और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस मुद्दे पर विपक्ष के मौन रहने पर तीखा हमला बोला है। आंदोलन स्थल पर बुनियादी संकट गहराने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: मेडिकल परामर्श समिति नीट UG काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
3: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को MCC पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं।
4: वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में इस विशेष पहल को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वायदा किया था। इस निर्णय से राज्य भर में लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने महिला कल्याण विभाग को 1,094 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किए हैं, जिससे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।

0: अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। केरल में आज भी तेज वर्षा जारी रहेगी, हालांकि कल की तुलना में आज बारिश में कुछ कमी का अनुमान है। असम में लगातार तेज बारिश जारी है और इससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पीवी सिंधु को BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवी वरीयता दी गई है। यह चैंपियनशिप 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में पांचवीं वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। चैंपियनशिप की पांचों स्पर्धाओं में भारत के दो दो खिलाड़ी भाग लेंगे। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमरीका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यों वाली भारतीय टीम हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निशुल्क है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर साइबर ठगी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश और एयर इंडिया की फ्लाइट 2379 के अचानक हवा के दबाव में फंसने से यात्रियों की हुई कठिनाई के समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। जनसत्ता का शीर्ष समाचार है, साइबर ठगी वाले खातों से निपटने के लिए 4 हफ्ते में बने मानक संचालन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट। दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, 4 सप्ताह के भीतर म्यूल खातों से निपटने को SOP बनाए RBI। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाथों पर नियम बनेंगे। पंजाब केसरी ने एयर इंडिया विमान की उड़ान संख्या 2379 के समाचार को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, एयर इंडिया विमान टर्बुलेंस में फंसा, पत्र ने इस घटना में घायल यात्रियों की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को शीर्षक दिया है, थाईलैंड से दिल्ली आ रहा विमान टर्बुलेंस में फंसा, DGCA ने जांच के आदेश दिए। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, जन्म मृत्यु पंजीकरण सुरक्षा उपाय नागरिकों की मुश्किल ना बने।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट UG काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। इंडिया फ्लैगशिप सिंक्स आफ्टर अटैक इन रेड सी, ऑल 13 इंडियन सेलर्स रेस्क्यूड, इंडिया कंडेम्स अटैक ऑन कमर्शियल वेसल। Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy review this morning. Supreme Court asks RBI to prepare SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. Online registration for first round of NEET UG counseling 2026 to commence today. IMD warns of very heavy rainfall in Assam and Meghalaya today. And in badminton, PV Sindhu seeded 9th, while Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty get 5th seeding for BWF World Championships. And now the news in detail.

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी परीक्षा मामले में छात्रों ने की दूसरे राज्यों के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जांच कराने की मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा। नेता प्रतिपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग दोहराई। निर्वाचन आयोग के एसआईआर के तहत राज्य भर में प्रारूप मतदाता और एएसडीडी सूची का प्रकाशन आज। मुख्य निर्वाचन कार्यालय चलाएगा न्यू वोटर हैशटैग अभियान। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण की पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू। स्वास्थ्य मंत्रालय ने छात्रों की सहायता के लिए जारी किए ट्यूटोरियल वीडियो और हेल्पलाइन नंबर। गिरिडीह में भीषण वज्रपात से 9 लोगों की मौत, 10 घायल। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आज भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया। और रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले गए डुरंड कप मुकाबले में स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली की शानदार जीत, जमशेदपुर एफसी को 2-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में जेपीएससी धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन आज 12वें दिन भी जारी है। आंदोलनकारी छात्रों ने अब राज्य से बाहर के हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जांच कराने की मांग की है। छात्रों ने सीआईडी जांच को नाकाफी बताया है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मामले पर सरकार की पैनी नजर है और जाँच जारी है।
1: छात्रों की जो मांग है, छात्रों की जो जिज्ञासा है, उसके अनुरूप समय आने पर आपको निर्णय भी दिखेंगे और मुझे उम्मीद है छात्र भी आश्वस्त और जिस तरीके से जांच टीम सक्रिय है सरकार के भी निर्णय सामने आएंगे।
0: वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने परीक्षा में सीटों की बिक्री का गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
2: सरकारी जो नौकरी है उसको ही जेपीसीसी हो या जेसीसी हो, इन लोगों ने बेचा है और इसलिए मैं कहता हूं कि भाई इन सारे एग्जामों को रद्द करनी चाहिए सरकार। जेपीएससी के चेयरमैन हो, सदस्य हो और महत्वपूर्ण पदों पर जो बैठे हुए हैं उन सब लोगों को हटाना चाहिए, उन लोगों के ऊपर एफआईआर करनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए और पूरी मामला की जाँच सीबीआई से करानी।
0: जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 एजेंटों उमेश कुमार, बुधेश्वर भगत और रमेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये आरोपी अभ्यर्थियों की तलाश करते थे। इसके अलावा सीआईडी ने परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी टीडीपीएल के निदेशक समेत 3 लोगों से गहन पूछताछ की है। राज्य में आज प्रारूप मतदाता सूची और एएसडीडी सूची का प्रकाशन ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि जिन नागरिकों का नाम इस ड्राफ्ट सूची में नहीं है वे आज से फॉर्म 6 भरकर ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके साथ ही युवा मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए आज सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा सोशल मीडिया पर न्यू वोटर हैशटैग अभियान भी चलाया जाएगा।
3: झारखंड में सभी बूथों पर ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा रहा है। साथ ही साथ इसे सभी पात्र पात्र नागरिक से अनुरोध है आप फॉर्म 6 के साथ डिटेल्स फॉर्म जमा करें। इस मौके पर झारखंड में एक हैशटैग अभियान कराया जा रहा है, हैशटैग न्यू वोटर्स। उसके माध्यम से हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सभी वोटर तक पहुँचने के लिए हम लोग का प्रयास है। इस प्रयास में सबका भागीदारी करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ।
0: नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। उम्मीदवार 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन और शाम 6 बजे तक शुल्क भुगतान कर सकते हैं। सीट आवंटन का परिणाम 17 अगस्त को आएगा। सहायता के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्यूटोरियल वीडियो जारी किए हैं। राज्य मंत्री दीपक बीरुआ ने साहिबगंज पुलिस मुख्यालय से डायल 112 के 15 अत्याधुनिक आपातकालीन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल आमजन को त्वरित और प्रभावी पुलिस सहायता सुनिश्चित करेगी।

मंत्री ने कहा कि सरकार नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस

0: महादेव जय भोलेनाथ।
1: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
2: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
1: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। धनबाद के कतरास क्षेत्र में लगातार बारिश के बीच कल शाम भीषण भूदशान से आधा दर्जन घर जमींदोज हो गए। मीडिया से बातचीत के दौरान एक महिला का घर लाइव कैमरे पर ढह गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। घटना में घरेलू सामान और वाहन जमीन में समा गए। स्थानीय लोग राहत कार्य में जुटे हैं। सरायकेला खरसावां पुलिस ने साइबर ठगी और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए विभिन्न राज्यों के 40 युवाओं को गिरोह के चंगुल से मुक्त कराया है। अपराधी इन युवाओं को बैंक खातों के बदले कमीशन का लालच देकर होटलों में रखते थे। एसपी मनोज स्वर्गियारी ने बताया कि युवाओं को चेतावनी देकर परिजनों को सौंप दिया गया है। गिरिडीह जिले में विभिन्न स्थानों पर वज्रपात से 9 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। सबसे दर्दनाक घटना देवरी थाना क्षेत्र में हुई, जहां 4 किशोरों की जान चली गई। जमुआ विधायक मंजू कुमारी ने पीड़ित परिवारों से मिलकर गांवों में तड़ित चालक लगाने की मांग की है। इस बीच मौसम विभाग ने आज रांची, खूंटी, सिंहभूम और सरायकेला सहित राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। हालिया हादसों को देखते हुए प्रशासन ने आमजन से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर न रहने और सुरक्षित इमारतों में शरण लेने की अपील की है। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में कल खेले गए डूरंड कप मुकाबले में स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली ने जमशेदपुर एफसी को 2-1 से हरा दिया। पहले हाफ में जमशेदपुर एफसी ने 1-0 की बढ़त बनाई थी, लेकिन दूसरे हाफ में एससी दिल्ली ने शानदार वापसी करते हुए लगातार 2 गोल दागकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में एससी दिल्ली ने जमशेदपुर एफसी को 2-1 से हराकर 3 महत्वपूर्ण अंक हासिल किए। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में जमशेदपुर एफसी ने पहले हाफ में बढ़त बनाई। टीम के खिलाड़ी सनन ने गोल कर जमशेदपुर एफसी को 1-0 से आगे कर दिया। हाफ टाइम तक जमशेदपुर एफसी की बढ़त कायम रही। दूसरे हाफ में एससी दिल्ली ने आक्रामक खेल दिखाते हुए शानदार वापसी की। नामते ने लगातार 2 गोल दागकर अपनी टीम को 1-0 की पिछड़ने की स्थिति से 2-1 की बढ़त दिला दी। निर्धारित समय तक एससी दिल्ली की बढ़त बरकरार रही और टीम ने जमशेदपुर एफसी को 2-1 से हराकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। नामते के 2 गोलों की बदौलत एससी दिल्ली ने डूरंड कप में अहम 3 अंक दर्जित किए। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
3: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने दिशम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री द्वारा रामगढ़ के नीमरा में उनकी आदमकद प्रतिमा के अनावरण की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, छात्र आंदोलन पर सीएम बोले, सरकार युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। प्रभात खबर ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 6 छात्रों ने

0: ओएमआर शीट में बदले गए उत्तर। हिंदुस्तान के शब्द हैं, झारखंड में कई जिलों में भारी बारिश, ठनका से 4 बच्चों समेत 19 की मौत। दैनिक जागरण लिखता है, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित युवक की घर से खींचकर पीट पीट कर हत्या, 8 गिरफ्तार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेपीएससी परीक्षा मामले में छात्रों ने की दूसरे राज्यों के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जांच कराने की मांग। मुख्यमंत्री ने दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा। नेता प्रतिपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग दोहराई। निर्वाचन आयोग के एसआईआर के तहत राज्य भर में प्रारूप मतदाता और एएसडीडी सूची का प्रकाशन आज। मुख्य निर्वाचन कार्यालय चलाएगा न्यू वोटर हैशटैग अभियान। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण की पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू। स्वास्थ्य मंत्रालय ने छात्रों की सहायता के लिए जारी किए ट्यूटोरियल वीडियो और हेल्पलाइन नंबर। गिरिडीह में भीषण वज्रपात से 9 लोगों की मौत, 10 घायल। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आज भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया। और रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले गए डूरंड कप मुकाबले में स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली की शानदार जीत, जमशेदपुर एफसी को 2-1 से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: सेवा जोहार, तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े सांस्कृतिक महाकुंभ का गवाह बनने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार लेकर आ रही है झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026। आगामी 9 और 10 अगस्त को रांची का मोराबादी मैदान गूंजेगा 5,000 से अधिक लोक कलाकारों, झूमर, छऊ और पारंपरिक जनजातीय प्रस्तुतियों से। महोत्सव में होंगे भव्य उद्घाटन एवं सम्मान समारोह, कला एवं शिल्प प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, स्वतंत्रता सेनानी विरासत प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी, ट्राइबल फैशन शो, रॉक बैंड की शानदार प्रस्तुतियां, इमर्सिव जोन और 700 ड्रोन का भव्य शो, आधुनिक 5D थिएटर और AI तकनीक इस अनुभव को और भी यादगार बनाएंगे।
3: यहां मिलेगा पारंपरिक जनजातीय खानपान, आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता, आकर्षक हस्तशिल्प, नॉलेज पार्टनर्स और लेखकों से संवाद का अवसर। सब परिवार आइए और अपनी संस्कृति के रंग में घुल जाइए। अपनी परंपरा और अपनी पहचान का उत्सव गर्व के साथ मनाइए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: सेवा जोहार, तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े सांस्कृतिक महाकुंभ का गवाह बनने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार लेकर आ रही है झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026। आगामी 9 और 10 अगस्त को रांची का मोराबादी मैदान गूंजेगा 5,000 से अधिक लोक कलाकारों, झूमर, छऊ और पारंपरिक जनजातीय प्रस्तुतियों से। महोत्सव में होंगे भव्य उद्घाटन एवं सम्मान समारोह, कला एवं शिल्प प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, स्वतंत्रता सेनानी विरासत प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी, ट्राइबल फैशन शो, रॉक बैंड की शानदार प्रस्तुतियां, इमर्सिव जोन और 700 ड्रोन का भव्य शो, आधुनिक 5D थिएटर और AI तकनीक इस अनुभव को और भी यादगार बनाएंगे।
3: यहां मिलेगा पारंपरिक जनजातीय खानपान, आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता, आकर्षक हस्तशिल्प, नॉलेज पार्टनर्स और लेखकों से संवाद का अवसर। सब परिवार आइए और अपनी संस्कृति के रंग में घुल जाइए। अपनी परंपरा और अपनी पहचान का उत्सव गर्व के साथ मनाइए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।

गीत गुजर सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम के आरंभ में ये सुनवाते हैं फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का ये गाना, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में। गीत मजरू सुल्तानपुरी के है और संगीत आनंद मिलिंद का। तो आइए सुनते हैं ये गाना।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल का ये गाना अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज़ में। गीत समीर के थे और संगीत आनंद मिलन का। श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमें गीत गुंजन से आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे गीत गुंजन, पुराने फिल्मी गीतों का। ये कार्यक्रम ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

जो आर पिलामू सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम आज के सुविचार से। आज ये हमारा सुविचार इस प्रकार से है, कहते हैं मेहनत पर भरोसा रख, हिम्मत कभी मत हार, तेरी मंजिल तेरा इंतजार कर रही है हर बार। तो हमें अपने मेहनत पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए और इसी भरोसे के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम बातें और भी करेंगे, मैं सुनते हैं ये प्यारा सा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जोहर पलामू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं मौसम का मिजाज। तो आज का अधिकतम तापमान है 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 26 डिग्री। हम बातें और भी करेंगे, मगर सुनते ये प्यारा सा गाना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जोहार पलामू। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते हैं, बातें करते हैं स्वास्थ्य के प्रति हमें किस प्रकार से सचेत रहना चाहिए। स्वास्थ्य यानी कि हमारा जो स्वास्थ्य है एक ऐसा धन है जो हम नहीं अगर उसे सुरक्षित रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो हम बिगड़ेंगे। इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही सचेत रहना होगा। हमें प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, फल फूल सब्जियां हर चीज़ हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। और अभी जैसा मौसम है यानी कि बरसात के दिनों में हम अपने घरों में ऐसे कई फलदार वृक्ष लगा सकते हैं, कई फलदार पेड़ लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं जिससे हमें फल प्राप्त होते हैं। और हम उसी फल में बात कर रहे हैं पपीते की, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है और तब फायदेमंद होता है जब हम इसे पके पपीते को खाली पेट खाते हैं। जी हाँ, कहा जाए कि दिन की शुरुआत में पपीता खाना एक सरल लेकिन आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी पोषण संबंधित आदत रखें। यह नारंगी फल पेपेन एंजाइम और विटामिन सी से भरपूर होता है जो शरीर के चयापचय की गति देने और धीरे धीरे विषैले पदार्थों को निकालने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने में हमें मदद करती है। ऊर्जा से भरपूर और दिन की शुरू करने का एक बेहतरीन तरीका है, तो क्यों ना हम खाली पेट पपीता खाएं जो सुबह उठते ही पाचन क्रिया को धीरे धीरे सक्रिय करने में मदद करती है। इसमें मौजूद एंजाइम पेपेन एक प्राकृतिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है जो हमारे पेट में प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है, जिससे सूजन अपच कब्ज जैसी समस्याओं से हमें राहत मिलती है। श्रोताओं, संतरे या नींबू जैसे अत्यधिक अलबी फलों के विपरीत है पपीते की बनावट मुलायम होती है जिसका पीएच स्तर मध्यम होता और जो पेट वाले लोगों के लिए काफ़ी उपयुक्त माना गया है। इसके अलावा यह आदत अगर रात भर

लेकिन नींद के बाद शरीर को शुद्ध करने में भी मदद करती है। सोते समय शरीर स्वयं की मरम्मत और विसरण की प्रक्रिया चल रहा है। पपीता खाने से हमें भरपूर पानी मिलता है, जिससे लीवर और किडनी से विषैले पदार्थ जो है वो बाहर आते हैं। पपीता हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है। हमें सोते समय शरीर स्वस्थ हो जाता है और चयापचय यानी कि पाचन की क्रिया जो है वो सुबह तक ठीक हो जाती है। तो हमें अधिक जो खाली पेट पपीता खाते हैं, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर को बदलाव में लाती है और हमें अंदर से जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। हमारे अंदर पाए जाने वाले अक्सर पेट फूलना, गैस हो जाना, अपच हो जाना, ये सब समस्याओं से हमें निजात मिलता है। पपीता एक प्राकृतिक उपाय है। पपीते में पाए जाने वाला पेपेन एंजाइम प्रोटीन को अमीनो और एसिड में तोड़ता है, जिससे पाचन तंत्र हमारे जो है वो सुचारू रूप से काम करते बिना किसी परेशानी के। भोजन से पहले हमें पपीता खाने से पेट पोषक तत्वों से भरपूर हो जाता है, साथ ही कब्ज से हमें राहत मिलती है। तो क्यों न हम खाली पेट सुबह सुबह पपीता खाएं, और पपीता अपने घरों में, बागानों में, आंगनों में हम इसे बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं। हम कच्चा पपीता का सब्जी भी खाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लेटिनियम अगर शरीर में कम हो जाते हैं तो पपीते के पत्ते के भी रस हम अगर उसे पीते हैं तो हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो अभी बरसात का दिन है और बहुत ही आसानी से ये पौधा मिल जाता है, तो अपने अपने घरों में लगाएं और हम इसे खाली पेट खाएं, फल के रूप में खाएं, सब्जी के रूप में खाएं और हम स्वस्थ रहें। तो हम बातें और भी करेंगे, मगर सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

0: जोहार पलामू।
1: अभी आप सुन रहे थे जोहार पलामू। प्रस्तुति स्वर था पिंकी कुमारी का और संयोजक थे श्री प्रशांत गौरव। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग। सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। उमंग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर विचार भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर जी ने। लिखते हैं,
2: बदलना है अगर कल को तो आज को बदलना सीखो, किस्मत की राह न देखो, खुद आगे बढ़ना सीखो।
3: बहुत सुंदर और प्रेरणादायी विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ श्रोताओ, परिवर्तन आज को बदलने से ही आता है, क्योंकि कल कभी नहीं आता।
2: जी
3: आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी का।
2: नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
3: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। स्वामी विवेकानंद जी पर केंद्रित कार्यक्रम उमंग सुना एवं पसंद आया, कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है।
2: आपने आगे लिखा है, कार्यक्रम इस तरह से प्रस्तुत किया गया जैसे स्वामी विवेकानंद जी साक्षात हमारी आंखों के सामने हैं एवं मन लगाकर हम इनका प्रवचन सुन रहे हैं। शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: और राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: गुजरात गांधी ग्राउंड से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
3: तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज की चर्चा में।
2: श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस दोस्त की जो हर समय हमारे साथ रहता है। जरा सोचिए कौन है वो जो इस आधुनिक युग में हमेशा लगभग हम सबके साथ रहता है, कोई रहे न रहे और उसके बिना अब रहा ही नहीं जाता।
3: विमलेश जी, मुझे लगता है आप बात कर रही हैं मोबाइल फोन की।
2: बिल्कुल सही कहा जी जी। अब तो लोग क्या विद्यार्थी भी मोबाइल के बिना ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे मछली पानी के बिना।
3: जी बहुत हद तक आपका कहना बिल्कुल ठीक है। विमलेश जी, सच्चाई तो ये है कि कुछ तो रात को भी मोबाइल देखते देखते सोते हैं और सुबह भी मोबाइल देख कर ही उठते हैं।
2: लेकिन अजीत जी, सच्चाई तो ये भी है कि अब मोबाइल के बिना काम भी नहीं चल सकता।
3: जी वो तो है,
2: हम किसी न किसी प्रकार से उस पर आश्रित हैं।
3: जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें एक बात अच्छी तरह से समझना होगा कि मोबाइल तो मात्र एक साधन है।
2: जी
3: महत्वपूर्ण ये है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसका सही उपयोग हमें आगे ले जाएगा और गलत उपयोग बिल्कुल पीछे।
2: जी
3: लेकिन प्रश्न है कि मोबाइल का सही उपयोग करें तो कैसे करें।
2: जी अजीत जी, चलिए मान लीजिए परीक्षा एक महीने बाद है, विद्यार्थी मोबाइल उठाता है पढ़ने के लिए, वो पढ़ाई के लिए गंभीर भी है, मोबाइल में परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन कक्षा चल रही है कि तभी एक नोटिफिकेशन आया, नई रील देखिए। अब बताइए जी जी क्या होगा।
3: फिर एक और रील या स्टोरी और आ जाएगी।
2: बिल्कुल, या सोशल मीडिया पर और कई संदेश आ जाएंगे, पता चला कि उसकी फोटो को बहुत से लाइक्स मिल गए हैं
3: और एक मैसेज ये भी आ गया कि आपकी फोटो तो साहब बिल्कुल कमाल कर रही है, कुछ और फोटो डालिए। अब क्या होगा हम समझ सकते हैं।
2: देखते देखते एक घंटा क्या कई घंटे गायब हो गए
3: और शायद पूरा दिन पानी में गया। तो अब सवाल ये है विमलेश जी कि क्या किया जाए।
2: देखिए, यही वो समय है जब पढ़ने वाले को संयम और दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है। एक नियम बनाना होगा, पढ़ाई के समय सोशल मीडिया बंद
3: और नोटिफिकेशन भी बंद।
2: बिल्कुल, नहीं तो हर 5 मिनट में मोबाइल बोलेगा।
3: क्या बोलेगा?
2: मुझे भी देख लो।
3: लेकिन सवाल ये है कि यदि मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ तो विमलेश जी इंटरनेट तो ऑन है, ऐसे में सोशल मीडिया भी तो चलता रहेगा।
2: नहीं अजीत जी, आप मोबाइल छोड़े बिना इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं, इसका भी उपाय है।
3: वो कैसे?
2: हर मोबाइल की सेटिंग में DND या डू नॉट डिस्टर्ब या फोकस मोड का विकल्प होता है, इस विकल्प को चालू कर दें, वहां आप अपनी इच्छा से फोन या सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन खोल या बंद कर सकते हैं, इससे इंटरनेट चालू रहेगा और आप पढ़ाई बिना बाधा के कर पाएंगे।
3: जी मित्रों, आप अलग से भी सोशल मीडिया के एप्स को उनकी सेटिंग में जाकर म्यूट कर सकते हैं।
2: जी
3: आप एक काम और कर सकते हैं कि सारे एप्स के आइकन मुख्य स्क्रीन से हटाकर दूसरी स्क्रीन पर डाल दें, ताकि यदि संदेश आए भी तो आपको दिखाई ना पड़े।
2: तो श्रोता मित्रों, हम कहना चाहेंगे कि मोबाइल से मनोरंजन जरूर कीजिए, लेकिन इससे अधिक मोबाइल को सीखने का साथी बनाइए। और याद रखिए,
3: मोबाइल पढ़ाई का साधन बने, समय बर्बाद करने का नहीं।
2: पढ़ते समय, परिवार के साथ समय बिताते समय नोटिफिकेशन अवश्य बंद रखें।
3: रोज मोबाइल के उपयोग का समय तय करें और रात में देर तक मोबाइल न चलाएं और इंटरनेट का सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग करें।
2: मत भूलिए, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं।
3: क्या बात है, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं। जिसने मोबाइल को नियंत्रित कर लिया,
2: समझिए उसने अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर लिया।
3: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, मिलेंगे फिर एक
2: नई जानकारी के साथ।
3: श्रोताओं, आज हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आपको एक काम करना है।
2: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर एक या दो पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको करना क्या है।
3: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर एक या दो पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। और भेज दीजिए अपना स्लोगन हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCRT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
3: YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के कई विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
2: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
3: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है परीक्षा।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कहानी पर आधारित है, जिसे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। कहानी के द्वारा ईमानदारी, परिश्रम, कर्तव्य निर्वहन और कार्यनिष्ठा के मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है।
4: परीक्षा। बात उन दिनों की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। उन दिनों देश में बहुत सारी रियासतें हुआ करती थीं। रियासतें यानी छोटे छोटे राज्य जो अंग्रेजों की अधीनता तो मानते थे लेकिन स्वतंत्र थे। ऐसी ही एक रियासत थी देवगढ़। राजस्थान की देवगढ़ रियासत बहुत ही मनोरम स्थान में बसी हुई थी। रियासत की जनता बहुत प्रसन्न थी। रियासत की खुशहाली के पीछे सबसे बड़ा योगदान था वहाँ के दीवान यानी मुख्य प्रशासक सरदार सुजान सिंह का। वे दयालु, नीति कुशल और बहुत अच्छे प्रशासक थे, लेकिन अब वे बूढ़े हो चले थे। एक दिन की बात है।
5: महाराज की जय हो। दीवान श्रीमत सरदार सुजान सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं।
6: मिलना चाहते हैं इस समय? उन्हें आदर सहित कक्ष में ले आओ।
5: जी महाराज।
7: महाराज,
6: आइए आइए दीवान साहब, बैठिए बैठिए। जी कहिए।
7: राजन, पिछले 40 वर्षों से आपके दास ने इस रियासत की सेवा की है। अब विचारा है कि इस सेवा से अवकाश ग्रहण करूं।
6: दीवान साहब।
7: महाराज,
6: हम आपका अनुरोध स्वीकार तब करेंगे जब आप हमारी एक शर्त मानेंगे।
7: आज्ञा दीजिए महाराज। कैसी शर्त?
6: शर्त यह है कि अवकाश ग्रहण करने से पहले आपको राज्य के लिए एक ऐसा दीवान ढूंढ कर देना होगा जो आपकी तरह सुयोग्य हो।
7: जी महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा।
4: दूसरे ही दिन देश के सभी प्रसिद्ध समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर विज्ञापन छपा कि देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। इस विज्ञापन का वही असर हुआ जो जंगल में आग का होता है। सैकड़ों लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए देश के अलग अलग प्रांतों से देवगढ़ चल पड़े। आइए अब आपका परिचय कराएं कुछ उम्मीदवारों से। आप हैं श्रीमान अ। आप सोकर उठते थे सवेरे 10 बजे, लेकिन जब से यहाँ आए हैं बेचारे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और बगीचे में टहलते हुए सूर्य देवता के दर्शन करते हैं। और आप हैं श्रीमान ब, स और ज। इनकी तो पूछिए मत, अपने घर में इन्होंने नौकरों की नाक में दम कर रखा था। ये वहाँ अशिष्टता के जीते जागते उदाहरण थे, लेकिन यहाँ तो ये बेचारे नौकरों को भी संबोधित करते समय आप श्रीमन, महामना, मान्यवर और जनाब जैसे संबोधनों और उपाधियों का उपयोग किए बिना बात ही नहीं करते। और इनसे मिलिए, आप हैं श्रीमान क। आप फैशन के मारे हैं, लेकिन यहाँ सादगी की प्रतिमूर्ति बने घूम रहे हैं। अक्सर राजमहल के पुस्तकालय में आप बड़े बड़े ग्रंथों को उलटते पलटते देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर पाखंडोत्सव चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी अयोग्य हैं। उन्हें क्या पता था कि कुशल और अनुभवी दीवान सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आँखें पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही हैं और अनुभवी कान सब कुछ सुन रहे हैं। समय समय पर उम्मीदवारों को समूह वाद विवाद के लिए भी बुलाया जाता था। एक दिन की बात है, सभी उम्मीदवारों को लगा कि विद्वता तो दिखा ही रहे हैं, क्यों ना शारीरिक क्षमता भी दिखाई जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि आज हॉकी खेली जाएगी।
8: ये मैंने दिया पास। अरे दौड़ो दौड़ो और तेज दौड़ो।
9: वो तो गेंद लिए खुद ही दौड़ा चला जा रहा, उसे पास देना चाहिए।
8: लगता है खुद ही बोल करके मानेगा। अभी छीनता हूँ गेंद उससे।
4: सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें कहीं दूर से इस मैच को भी देख रही थीं। खेल खत्म हुआ, सभी खिलाड़ी थके हुए थे, शाम होने वाली थी। अब सबने फैसला किया कि राजमहल लौटा जाए। मैदान से थोड़ी ही दूरी पर एक नाला था जिस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना होता था। खिलाड़ी लोग उसी नाले के पास बैठे सुस्ता रहे थे।
10: आज खेल में बड़ा मजा
11: आया, बहुत मजा आ गया। गोल मारा था भाई, मजा आ गया उसमें तो।
12: गोल हो गया किसी का, दिल
4: खुश हो गया। तभी एक किसान अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। नाले में कीचड़ था और चढ़ाई ऊंची थी, उसकी गाड़ी वहीं फंस गई।
13: ए, इधर क्या देख रहे हो?
7: साहब गाड़ी फंस गई है, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो।
14: अच्छा, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो बड़े आए।
15: चलो साथियों, देर हो रही है, दीवान साहब समय का भी बहुत ध्यान रखते हैं।
16: चलो चलो चलो, चलो,
7: अरे,
16: चलो
7: भाई, लेकिन
14: अरे छोड़ो इन्हें, चलो।
4: लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जो वहीं रुक गया। आज हॉकी के खेल में उसे चोट भी लग गई थी और वह लंगड़ा रहा था। वह दृढ़ निश्चय के साथ किसान की ओर बढ़ा और बोला,
17: बाबा तुम गाड़ी में बैठकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, बस थोड़ी देर में गाड़ी बाहर निकल जाएगी।
14: हाँ ठीक है, कोशिश करते हैं।
4: और हुआ भी यही, युवक ने पूरा जोर लगाया, किसान ने बैलों को साधा और थोड़ी ही देर में गाड़ी नाले के पार थी।
7: हाँ बेटा, अच्छा किया तुमने।
17: जी बाबा।
7: हुजूर, मुझे रात भर यहीं रुकना पड़ता।
17: तो क्या इनाम देते हो?
7: नारायण ने चाहा तो दीवानी

0: आपको ही मिलेगी।
1: और आखिर वो दिन आ ही गया। सबके दिल जोर से धड़क रहे थे। पता नहीं किसके भाग्य में राजयोग है। राज दरबार सजाया गया।
2: पूरा एक महीना हो।

0: मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा सुयोग्य पुरुष मिल गया है। मैं पंडित जानकी नाथ सा को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ।
1: बधाई हो पंडित जी।
0: जब आप हॉकी खेल रहे थे, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो व्यक्ति जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसमें धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता सभी गुण हैं। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा।
2: सही बात है।
0: उसका संकल्प दृढ़ है। वो स्वयं चाहे धोखा खा जाए,
2: बिल्कुल सही कहा,
0: लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य कर्म से कभी भी पीछे न हटेगा।
3: सभी सरदार सुजान सिंह के चुनाव की प्रशंसा कर रहे थे।
2: अच्छा इंसान है, हमेशा सही काम करेगा।
3: बिल्कुल। और देवगढ़ रियासत के नए दीवान पंडित जानकी नाथ सा को बधाई दे रहे थे।
1: बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो पंडित जी। बहुत खूब चुनाव किया।
4: महाराज की
5: जय हो।
4: महाराज की
5: जय हो।
4: महाराज की
5: जय हो।
4: महाराज की
5: जय हो।
3: सबकी समझ में आ गया था कि धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता जैसे सद्गुण ही व्यक्ति के सच्चे आभूषण होते हैं।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम परीक्षा, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मित्र की सहायता।
7: सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो समय पर काम आए और हर परिस्थिति में वो आपके साथ खड़ा रहे।
8: एक जंगल था। उस जंगल में एक ऊंचा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा बहुत दयालु था। वो सभी पक्षियों की सहायता करता था। जब दूसरे पक्षी दाना चुगने बाहर जाते थे तो कौवा उनके बच्चों की देखभाल करता था। वो पक्षियों के बच्चों को गीत सुनाता था।

कर जाता, सारी खबरें लेकर आता, काम काम कर गाना गाता, सबके मन को

0: एक दिन कौवे को भूख लगी। वो खाने की खोज में निकला। उसने उड़ते हुए देखा कि एक शिकारी आ रहा है। शिकारी के कंधे पर जाल रखा हुआ था। वो जंगल की ओर ही आ रहा था। कौवे ने शिकारी को देखकर सोचा,
1: ये शिकारी अवश्य कुछ पक्षियों को पकड़कर ले जाएगा। शिकारी से पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए।
0: उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, किंतु फिर भी पक्षियों को बचाने के लिए वो वापस लौट आया। जंगल में पहुंचते ही कौवे ने काव काव कर सब पक्षियों को इकट्ठा किया और बोला,

0: शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा। सुनो भाइयों, सुनो।
1: सब पक्षियों ने कौवे की बात मान ली। अब कौवा बहुत थक गया था, उसे भूख भी लग रही थी। वो खाने की खोज में जाने लगा। तभी उसने कुछ कबूतरों को देखा। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
0: भाइयों, आप कहां से आए हैं? मैंने आपको पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा।
2: मैं कबूतरों का मुखिया हूँ। हम सब पास के जंगल से आए हैं और दाना चुगने जा रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा, लेकिन सुनो भाइयों, सुनो। एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा। सुनो भाइयों, सुनो, सुनो भाइयों, सुनो।
2: कौवे भाई, हम उसके जाल में नहीं फंस सकते। हम उसके जाल पर बैठेंगे ही नहीं।
0: मुखिया जी, वो शिकारी बहुत चालाक है। वो चावल के दाने डालकर जाल लगाएगा।
2: कौवे भाई, हम सब तुम्हारी बात समझ गए हैं। तुम हमारी चिंता न करो।
1: मुखिया कबूतर की बात सुनकर कौवे की चिंता दूर हुई और अब वो खाने की खोज में उड़ गया। थोड़ी देर में जब वो वापस आया तो उसने देखा, जंगल में एक स्थान पर सारे कबूतर जाल में फंसे हुए हैं। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
0: अरे मैं तो तुम सबको बता गया था, फिर भी तुम सब इस जाल में कैसे फंस गए?
2: एक जगह चावल के दाने बिखरे देखकर हमें लोभ हुआ। हम चावल खाने नीचे उतरे तो इस जाल में फंस गए।
0: ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा देखो, शिकारी आ ही रहा होगा, लेकिन तुम सब साहस से काम लो। साहस और एकता से बड़ी कठिनाइयां दूर हो जाती है। तुम सब मिलकर इस जाल को लेकर उड़ सकते हो।
2: हाँ ठीक कहते हो कौवे भाई, ठीक कहते हो, ऐसा ही करेंगे।
1: कबूतरों ने ऐसा ही किया। सब

0: मिलकर उस जाल को लेकर उड़ चले। कौवा भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगा। कौवा चूहे के पास पहुंचा और बोला,
1: चूहे भाई, चूहे भाई,
2: क्या
1: तुम्हारा मित्र कबूतर एक शिकारी के जाल में फंस गया है।
2: कहाँ है मेरा मित्र? मुझे अभी उसके पास ले चलो।
1: चूहे भाई, वो देखो, वहाँ सामने वो एक जाल में फंसा हुआ है। उसके साथी कबूतर भी जाल में फंसे हुए हैं।
2: तो चलो कौवे भाई, उनके पास चलें। मैं अभी उनके जाल को काट देता हूँ।
1: हाँ हाँ, चलो
2: चलो चलो कौवे भाई,
1: चलो चलो, चलो, चलो, चलो।
0: चूहा और कौवा जल्दी से उस जाल के पास पहुंचे।
3: चूहे भाई, चूहे भाई, जल्दी से इस जाल को काट कर हमें मुक्त करो। शिकारी हमें ढूंढता हुआ यहाँ आ सकता है।
2: तुम चिंता मत करो मित्र, मैं अभी जाल काट कर तुम्हें मुक्त कर देता हूँ।
3: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी।
0: थोड़ी देर में चूहे ने जाल काट दिया। सब कबूतर मुक्त हो गए। मुखिया ने चूहे और कौवे का धन्यवाद किया। फिर सब कबूतर उड़कर अपने जंगल की ओर चल दिए। चूहा अपने बिल में चला गया। कौवा भी अपने पेड़ की।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहां आप सुनेंगे हिंदी में समाचार अब से कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नोरे ओलिया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें 13 भारतीय थे।
1: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषित करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय मौजूदा भू राजनीतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि बदलती विश्व व्यवस्था में अविकसित देशों की आकांक्षाओं को आकार देने वाला बहुपक्षवाद समय की जरूरत है। डॉक्टर जयशंकर ने 17 देशों से आए संयुक्त राष्ट्र स्थायी प्रतिनिधियों से बातचीत की। ये प्रतिनिधि अध्ययन भ्रमण पर भारत आए हैं। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन प्रतिनिधियों के साथ प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा, शांति सुरक्षा, विकास साझेदारी और आपदा प्रबंधन को लेकर बातचीत हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को अवैध लेन देन के लिए किसी और के खातों का इस्तेमाल और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। सरकार ने सोशल मीडिया पर में आ रहे उन दावों का खंडन किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार कार्ड वाले विद्यार्थियों को मुफ्त विद्युत साइकिल देने की घोषणा की है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी और डिजिटली जोड़ तोड़ है। प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। पीआईबी ने लोगों से ऐसे संदिग्ध दावों की सरकार को सूचना देने को कहा है। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 दिसंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निशुल्क है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमेरिका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्य भारतीय टीम हिस्सा लेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. An Indian-flagged commercial vessel, MSV Faiz Noor Olia, sank in the Red Sea after coming under attack off the coast of Yemen yesterday. All the 14 seafarers, including 13 Indian nationals who are on board the vessel, were rescued safely. According to reports, the Indian-flagged tanker was carrying oil from Saudi Arabia. Union Minister of Port Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, said India strongly condemns this unprovoked attack on the defenseless mechanized sailing vessel. He said the safety of our people is our supreme priority. In a statement, Ministry of External Affairs said targeting of commercial shipping in the region must end and free and unimpeded navigation and commerce through the international waterways in the region must be restored at the earliest. The Supreme Court has directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a standard operating procedure for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. The court also issued a series of directions to states, union territories, law enforcement agencies and banks to strengthen grievance redressal, speed up the restoration of defrauded money and improve the handling of digital fraud cases. The Medical Counseling Committee, MCC, will begin Round 1 registration for NEET UG Counseling 2026 today. According to the official schedule, Round 1 registration and fee payment will remain open till the 12th of this month until 3 p.m. We have more from our correspondent.
3: Candidates can fill their choices between the 6th and 13th of this month. The choice locking facility will remain available to students between 12th and 13th of August. Meanwhile, the round 1 seat allotment process will open to students between the 13th and 16th of this month. Further, the result will be declared on 17th of August. Candidates who have been allotted seats have to report to the respective institutes between August 18th and 22nd. The participating institutes will verify the data of joint candidates on 23rd of this month. Ahead of the commencement of the counseling process, Health Ministry has released step-by-step tutorial videos to help candidates understand the registration, choice filing and seat allotment process on the MCC portal. Rishu Jaiswal, Akashvani News, Delhi.
2: Bhopal, the capital of Madhya Pradesh, is hosting an important BRICS cultural meeting from today. Delegates from several countries have arrived in the city for 4 days of discussions on culture. The Ministry of Culture said that the meeting will bring together representatives from BRICS member states to advance cultural cooperation and build consensus on key areas ahead of the BRICS Culture Ministers meeting. Meanwhile, the 13th BRICS Education Ministers meeting and the 3rd BRICS Senior Officials meeting will also be held from today till the 7th of this month in Bhubaneswar, Odisha. Education Ministry said that these meetings will bring together education ministers, senior officials and delegates from BRICS member countries. The summer annuals of Amrit Udhyan at Rashtrapati Bhavan will open for the public from the 16th of this month. People can visit the Amrit Udhyan till 15th of September. During this period, it will remain open from 10 a.m. to 6 p.m. with the last entry at 5 p.m. However, the Udhyan will remain closed on all Mondays for maintenance. Entry to Amrit Udhyan will be free of cost. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said reform multilateralism reflecting aspirations of the global south is a need of the hour as the global order transforms. Dr. Jaishankar held an interaction with permanent representatives from United Nations from 17 countries who are visiting India on a study tour. In a social media post, the External Affairs Minister said that the discussions touched upon technology, maritime safety, peacekeeping, development partnership and disaster response. The IMD has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. In Assam, heavy rainfall continues, disrupting normal life in several parts of the state. The Brahmaputra and many of its tributaries are flowing close to the danger level at several locations. In Kerala, heavy rain will continue across the state today, although the intensity is expected to be lower than yesterday. In badminton, India's Isharani Barua defeated Lee So-hee of South Korea in the quarterfinals at the Korea Masters Super 300 Badminton Tournament in Assam today. And that's the end of this news bulletin.

0: बहुत ही मजेदार बातें चल रही हैं। आपने बताया कि पहले तो आपको जो बुनियादी शास्त्रीय संगीत है वो सिखाने के लिए गंधर्व भेजा गया और उसके बाद आपने अपने गुरु के साथ तालीम ली। वो कैसे दिन थे और कितनी दिलचस्पी बढ़ रही थी म्यूजिक में आपकी?
1: हाँ, म्यूजिक में तो बढ़ ही रही थी। इसके साथ साथ मेरे मतलब हफीज अहमद खान साहब, उन्होंने हिस्ट्री में एमए किया हुआ था, तो वो हमेशा बहुत सारे किस्से भी सुनाते थे।
0: हिस्ट्री में एमए क्लासिकल म्यूजिक सिखाने वाले, वाह
1: या, तो वो मतलब क्लासिकल म्यूजिक की हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंट्स की हिस्ट्री, लैंग्वेज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, फिर जो हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जो मिश्रण होता है लैंग्वेजेस का, कि ब्रज में शुरू होके उर्दू के कपलेट्स थाई में जाती है, ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को लेकर जो चर्चा बातें होती थी, तो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। फिर मैं शांति हिरानंद जी के पास सीखने गई ठुमरी दादरा में स्पेशलाइज करने के लिए, और शांति जी बेगम अख्तर की शागिर्द रह चुकी थी, और शांति जी ने एक बार मुझे बहुत कमाल की चीज कही। उस समय मैं मतलब स्कूल और कॉलेज में ही थी, तो गाना मैं बहुत अच्छे से गाती थी और वो मुझे समझाने की कोशिश करते थे कि भाव क्या है, और वो उस समय नहीं समझ में आता था इतना
0: मजेदार है ये।
1: बहुत साल बाद मुझे एक बात उनकी समझ में आई कि उन्होंने ये कहा कि क्योंकि तब उनकी उम्र हो चुकी थी, जब गाती थी मैं तो तब पिया नहीं था, क्योंकि ठुमरी दादरा में हर मतलब बंदिश में यही बात होती है कि द एकिंग पेन ऑफ सेपरेशन, कि पिया जो है वो छोड़ के चला गया। तो वो कहते थे कि जब पिया था तो गाना मतलब सीख रहे थे, और अब गाना आता है तो पिया के बारे में मतलब कि उम्र हो चुकी है, तो अब वो पेन रहा नहीं है। तो दोनों साथ में हुआ नहीं कभी। शी यूज टू यू नो सी
0: दैट, उस समय
1: वी आई नेवर अंडरस्टूड दैट, मच लेटर आई अंडरस्टूड कि भाव जो है वो मतलब कहाँ से आती है, कि आप जिंदगी में कुछ चीजें सहन करते हो, दर्द आता है, तभी आप कुछ क्रिएट कर पाते हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो, चाहे वो फिल्म हो, आप का क्रिएशन जो है। कल एक्चुअली मैं कैफी आजमी साहब के एक इवेंट पे गई थी जहां उनके सेंटेनरी पे पोस्टल स्टैंप रिलीज हुआ, और जावेद साहब यही कह रहे थे कि हम ट्रेजेडीज के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने कहा सैराट इतनी बड़ी ट्रेजेडी फिल्म है लेकिन फिर भी हिट हुई, एंड ही सेड कि नहीं, ट्रेजेडीज हमेशा होती है हिट, क्योंकि पेन से लोग रिलेट करते हैं ना, एंड वही चीज हम बात करते हैं, जब तक आपको जिंदगी में पेन नहीं मिलेगा आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, ये क्रिएशन की ट्रेजेडी है।
0: क्या बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मैं वापस दिल्ली वाले दिनों की तरफ जा रहा हूं। शांति हीरानंद से जब आप सीख रही थी तो वो तो हिंदुस्तानी बंदिशें सीख रही होंगी, तो कोई बंदिश याद है?
1: बिल्कुल तो मुझे जैसे मांड सिखाती थी, तो मुझे
0: वाह वाह वाह,
1: तो मैं एक सावन की ही कोशिश में

0: क्या बात है, मैं तो यही कहूंगा कि सचमुच सावन की बदरिया घिर घिर आए और खूब घिर घिर आए।
1: बिल्कुल, ये हमारी ख्वाहिश है।
0: बिल्कुल, यहां एक गाने की जगह बनाई जाए,
1: हाँ
0: सुनते हैं।

0: संगीत चल रहा था तो अभिनय की तरफ रुझान कैसे हुआ था?
1: एक्चुअली संगीत के वजह से हुआ
0: जी,
1: क्योंकि स्कूल में फिर कॉलेज में जहां भी हम लोगों के म्यूजिकल प्लेज होते थे वो मुझे इसलिए कास्ट कर लिया जाता था कि मैं गा सकती हूँ।
0: वाह, और अलग से गाने की परफॉर्मेंसेज नहीं करती थी?
1: नहीं, वो तो कॉलेज में एक्चुअली मैं गाना ही मतलब रेंडेवू IIT के जो फेस्टिवल्स थे, फिर बिट्स पिलानी में, सब में मैं मतलब कॉलेज को रिप्रेजेंट करती थी गाने में। और स्कूल में जब थी तो मैं वेस्टर्न म्यूजिक भी बहुत गाती थी, विटनी ह्यूस्टन। मुझे
0: कहा
1: मेरे इतने छोटे छोटे ऐसे कर्ली ऐसे बाल थे और सब मुझे कहते थे कि यू नो इंडियन विटनी ह्यूस्टन।
0: क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो वेस्टर्न से भी कनेक्शन रहा? और
1: मराया कैरी, विटनी ह्यूस्टन, ये सब गाती थी मैं।
0: वाह वाह वाह। पहली बार अभिनय कब किया था?
1: स्कूल में। स्कूल के जो हाउस कंपटीशन के प्लेज नहीं होते थे, और दुर्गा पूजा,
0: वाह वाह, ये तो बहुत महत्व।
1: बंगाली जो क्या होता है कि मतलब वो पूरा महीना जो हम लोग रिहर्सल करके फिर दुर्गा पूजा में परफॉर्मेंस, तो मेरा एक्चुअली पहला नाटक जिसमें मैंने मेन रोल मतलब सोलो रोल किया फुल प्ले में, वो दुर्गा पूजा का एक नाटक था, वो बंगाली में था।
0: अरे वाह वाह, तब क्या उम्र रही होगी आपकी?
1: 10 साल।
0: क्या बात है, इतना सारा
1: म्यूजिक उससे पहले से चल रहा था जिंदगी में, बट दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई मतलब हाँ एक्टिंग का इंट्रोडक्शन हुआ।
0: और कब ये लगा कि इसे करियर चॉइस के रूप में रखा जा सकता है?
1: ये बाय एक्सीडेंट हुआ ऑनेस्टली, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी।
0: और आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी?
1: जी। ऐसा कभी नहीं सोचा था कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को प्रोफेशन बनाऊंगी, क्योंकि क्या होता है इंडियन मिडिल क्लास होम्स में कि आप ये सब हॉबीज रखो, लेकिन प्रोफेशन, क्योंकि मेरे फादर भी इंजीनियर और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे और माय मदर यूज्ड टू टीच, तो वो उनका यही था कि हाँ मतलब आप कल्चरली एक वेल राउंडेड एजुकेशन आपका होना चाहिए और ये हॉबीज हो सकती है, लेकिन प्रोफेशन तो आपकी साइंस या इंजीनियरिंग यही कुछ होगा। तो ये ना बाय एक्सीडेंट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं म्यूजिक को या एक्टिंग को प्रोफेशनली करूं कुछ। लेकिन जब मैं कॉलेज में थी तो एक बहुत बड़ा जर्मन प्रोडक्शन यहाँ पे मतलब आया था इंडिया में, और उन लोगों ने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जो उनके प्रोडक्शन का पार्ट, और मैं सिलेक्ट हुई थी। और उस समय मतलब बहुत नामी नामी एक्टर्स जो NSD के ग्रेजुएट्स हैं एंड ऑल, वो पार्ट थे उस प्रोडक्शन का।
0: वाह,
1: तो दैट एक्चुअली चेंज्ड माय मतलब दिमाग खराब हो गया।
0: अच्छी खासी लड़की जो एकेडमिक्स में जा रही थी,
1: मतलब साइंस की जो है बैंड बज गई।
0: क्योंकि आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी।
1: बिल्कुल। और वो उस वर्कशॉप के बाद फिर मैंने बैरी जॉन के साथ और एक वर्कशॉप और कांड हो गया, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में समर वेकेशंस में और एक वर्कशॉप किया, और उसमें और इतना ज्यादा मजा आया, मतलब ठंड, एक तो मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है।
0: अच्छा।
1: ठंड में किसी कोल्ड यूनिवर्सिटी में US में जाके मैं लैब में बैठ के रिसर्च करूंगी, और ये देखो मतलब स्टेज पे हम गाना गा रहे हैं और एक्टिंग, क्या मजा है।
0: वाह वाह। जब ये बात घर वालों को पता चली तो क्या रिएक्शन थे? टीचर मम्मी जी और कॉरपोरेट पापा,
1: उनको मतलब हार्ट अटैक आया। और उसका पूरा, लेकिन मैं बिगड़ चुकी थी तब तक।
0: तब तक तो काम पूरा।
1: और द थिंग वाज कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो 100% स्कॉलरशिप, तो इसीलिए मेरे पिताजी और मम्मी ये नहीं कह सकते थे कि तुम्हारी एजुकेशन के लिए हम तुमको पैसे नहीं देंगे।
0: पैसे तो वहाँ ऑलरेडी आ रहे थे।
1: तो वो फुल स्कॉलरशिप मुझे मिल रहा है, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी बंद हो गई। कहती एक बिगड़ गई है, दूसरे को नहीं बिगड़ने देंगे।
0: तो वो सीधी राह पे चली गई।
1: अरे वो अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है।
0: क्या बात है, हाँ, क्या बात है। हाँ,
1: वो मतलब शी इज एक्सट्रीमली ब्राइट एंड वो कमाल की है, बट वो भरतनाट्यम सीख रही थी, उसने रंगेतरम किया, लीला सैमसन जो बहुत ही नामी और कला क्षेत्र के हेड भी रह चुके हैं, उस समय वो दिल्ली में थे और उनसे सीख रही थी, और बहुत सीरियसली डांसर बनना चाहती थी, और मतलब लेकिन वो अभी भी कहती है कि अरे तुमने दीदी को करने दिया लेकिन मुझे नहीं।
0: क्या बात है, क्या कितनी सुनहरी यादें हैं लेकिन इन तमाम चीजों की, कि आप जिंदगी में पढ़ते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, और फिर होता कुछ और है।
1: और फिर NSD के बाद मेरे पिताजी हर 2 साल में ये कहते थे कि अच्छा चलो ये हो गया, अभी तुम MBA कर लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग मिक्सचर है कि केमिस्ट्री के बाद तुमने यू नो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इन सब में तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और मैं एक्चुअली एक्चुअली जीमैट के लिए पढ़ती भी थी.
0: अच्छा.
1: जैसे मैं सीरियसली कोई एग्जाम देने बैठूंगी ऐसा लगता था कि अभी बैठ जाऊं, एक बहुत अच्छी फिल्म मिल जाती थी. फिर पापा को मैं कहती थी अरे मॉम पापा अभी देखो ये मिल गया है, अब ये करते हैं. फिर मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी बीच में 5 साल के लिए, ब्रिक लेन करके एक फिल्म की मैंने. और उसमें मुझे ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला. जूडी डेंच, एन हैथवे, इन सबके साथ मेरा भी सेम प्लेटफॉर्म में नॉमिनेशन था. तो उस समय मैं इंग्लैंड शिफ्ट हो गई कुछ सालों के लिए. वहाँ वेस्ट एंड में एक म्यूजिकल प्ले भी किया था इंग्लैंड करके. तो उस समय मैं गई थी लंदन बिजनेस स्कूल में ये पता करने के लिए कि चलिए अभी MBA किया जाए. पापा, हाँ पापा ने ऐसा. तो मैं वहां जब गई और हाँ. उनके काउंसलर से मिली
0: हाँ.
1: तो मेरा करियर ग्राफ और ये सब देख के और मुझसे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि आप मेरे स्टूडेंट्स को आकर एक इंस्पिरेशनल टॉक दे दो. तो मैंने कहा हाँ, मतलब मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए. कहते नहीं नहीं नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है,
0: आप यहाँ पढ़ो मत.
1: तो मैं लंदन में वेरियस बिजनेस स्कूल्स में इंस्पिरेशनल टॉक दे के अपने पॉकेट मनी कमा रही थी.
0: वाह वाह वाह, वहां भी पढ़ने वाला मामला तो बना ही नहीं.
1: नहीं, और मेरे पास एक वर्क परमिट था. सो आई वॉज लाइक, मैंने पापा को कहा कि पापा मुझे MBA करने की जरूरत नहीं है, वो 20 स्कूल्स तो मुझे बुला रहे कि आप यहाँ आके इंस्पिरेशनल टॉक्स दो.
0: फिर मामला टल गया.
1: फिर हाँ, परमानेंटली मामला टल गया.
0: मतलब ये है कि ये माना जा सकता है कि डेस्टिनी आपको दूसरी तरफ खींच रही थी.
1: हाँ, ऐसा, दैट इज द थिंग दैट वो आई रियली बिलीव दैट लाइफ इज व्हाट हैपेंस टू यू व्हाइल यू कीप मेकिंग प्लान्स.
0: राइट.
1: तो मैंने कोई प्लान नहीं बनाई. अभी तो मैंने एक फिल्म भी बनाई है जो इस वक्त हम लोग फेस्टिवल्स वगैरह में टूर कर रहे हैं.
0: बट उस फिल्म का नाम है फुल प्लेट.
1: फुल प्लेट. अब उसको लेकर भी मैंने कोई प्लान नहीं बनाई थी, वो भी अचानक ही बन गई. इनफैक्ट जो फिल्म मैं 3 साल से लिख के बैठी हुई हूँ जिसको मुझे बनाना है, वो अब तक मुझे उसका फंडिंग नहीं मिला है.
0: और ये बन गई.
1: मतलब ये अचानक से किसी ने मुझे कहा कि हमारे पास इतने पैसे हैं बना दो, और मैंने कुछ लिखा भी नहीं था उस समय.
0: हाँ.
1: तो तब मैंने लिखना शुरू किया और विद इन अ पीरियड ऑफ 3.5 मंथ्स हम लोग फ्लोर पे थे.
0: क्या बात है. तो ये होता है फ्लो ऑफ एनर्जी, कैसे हाँ, क्या काम करता
1: एक है. चीज है कि ये शायद मुझे ट्रेनिंग ऑफ एक्टिंग ने दी है. नसीर सर के क्लासेस जो है, नसीरुद्दीन शाह, जिनको मैं बहुत बहुत अपना गुरु मानती हूँ एक्टिंग में. मतलब मेरे बहुत गुरुज हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. रॉबिंदा है, बज्जू भाई है, अनामिका अक्सर है, अनुराधा कपूर है. और थर्ड ईयर में जाके एक जो कल्मिनेशन होता है ना, उसमें टुवर्ड्स दी एंड नसीर सर आए. और उन्होंने उन सब चीजों को एक बहुत साइंटिफिक वे से स्टूडेंट्स को समझाने की. और एक्टर ना बहुत अच्छे हैं हमारे देश में, लेकिन टीचर जो इतने कमाल के एक्टर हैं और इतने कमाल के टीचर है, वो सिर्फ नसीरुद्दीन शाह है.
0: वाह, क्या प्यारी बात.
1: तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा. और एक वो चीज जो कहते हैं ना कि हियर एंड नाउ और डोंट थिंक, जस्ट रिस्पॉन्ड टू द मोमेंट एंड लिसन टू योर को एक्टर एंड रिस्पॉन्ड. उसके प्रैक्टिस करते करते करते करते जिंदगी में भी ये हो जाता है कि आप कुछ भी आगे का प्लान मत करो, जो हो रहा है उसी के फ्लो में आप करते रहो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते. मैं पंडित रविशंकर से एक बार मिली थी, क्योंकि अनुष्का मेरी दोस्त भी है, उनकी एक्स हस्बैंड है जो राइट, उनके साथ मैंने एक फिल्म किया था एना कारेनिना, उसमें अनुष्का ने एक गाना कंपोज किया था जो मैंने गाया था. उसी दौरान मैं पंडित जी से एक बार मिली थी, तो उन्होंने कहा था कि जा हार ता हबे.
0: वाह,
1: ये उन्होंने टैटू में लिख दिया था.
0: क्या बात है, क्या बात है. और वो तो कितनी मीठी बांग्ला बोल.
1: जा हार ता हबे.
0: वाह, कितना सुंदर ये वाक्य है. यहाँ एक गाने की जगह बनाई जाए. अब जब पंडित रविशंकर का जिक्र है,
1: हाँ जी,
0: तो आप, एक सजेशन करता
1: आप. हाँ, बिल्कुल वही सजेशन जो आप मुझसे कह रहे थे.
0: हाँ,
1: अलाउद्दीन खान साहब का
0: वो बजा सकते हैं,
1: या
0: माता सरस्वती शारदा, जिसका कनेक्शन उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से है, और वहां से वो रचना उनके शिष्यों से होते हुए जयदेव जी के पास जाती है, और फिर वो फिल्म आलाप में आती है.
1: बिल्कुल,
0: ये सुनते हैं. ये समर्पित है उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब को, मैहर घराने के संस्थापक, और पंडित रविशंकर
1: जी को.
0: सुनते हैं. माता सरस्वती शारदा।

0: एक बार फिर वापस एनएसडी की तरफ चलते हैं। आपका एनएसडी में एडमिशन हो गया है और आप अपने ड्रीम को परस्यू करने निकली हैं। पीछे की तरफ केमिस्ट्री है।
1: हाँ, तब तक भी ड्रीम नहीं, मतलब तब तक मैंने फिर भी तो, मतलब जब एनएसडी में भी मैं गई तब भी मुझे ये पता नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है या डिजाइनिंग करनी है या
0: डायरेक्शन करना है।
1: हाँ, डिजाइन और डायरेक्शन। और एक्चुअली फर्स्ट ईयर के बाद मैंने सोचा था मैं डिजाइन और डायरेक्शन ही करूंगी, क्योंकि आई वॉज सो इंस्पायर्ड बाय द सिनेमा दैट आई वॉज वॉचिंग। और मतलब चाहे वो इंडियन सिनेमा हो कि संत तुकाराम हो या राजा हरिश्चंद्र, जो हमारे पुराने जैसे इंडिया में सिनेमा की जो बिगिनिंग थी, या फिर वो फ्रेंच न्यू वेव हो, पोलिश सिनेमा हो, ये सब देख के दिमाग एकदम
0: हिल गया।
1: हाँ, सत्यजीत रे और मृणाल सेन और मतलब और इंडियन कमर्शियल फिल्म्स भी। और हमारी जो टीचर हुआ करती थी, जो फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स करवा रही थी हमें, गायत्री चैटर्जी, वो FTII में भी पढ़ाती थी, वो इतने अच्छे से मतलब समझाती थी और एनालिसिस मतलब करती थी। सो आई वॉज सो मच इन लव विथ। और हमको इंटरनेशनल प्रोडक्शंस देखने को मिलते थे थिएटर में। फिलिप जॉन्ते, मतलब उनका प्रोडक्शन देख के मेरा दिमाग हिल गया था।
0: बिल्कुल।
1: पीना बाउश, ये सब जो थिएटर प्रोडक्शंस हैं। और हमारे एनएसडी में एक रशियन डायरेक्टर आए थे, एक पोलिश डायरेक्टर आए थे हमारे साथ काम करने के लिए। तो जो इंट्रोडक्शन हमें वर्ल्ड थिएटर से भी मिला और इंडियन क्लासिकल फॉर्म से, डांस से, कथकली, ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि यार डिजाइन डायरेक्शन में बहुत इंस्पायर हो गई थी। लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद जब हमें चूज करना होता है तो हमें बच्चू भाई और सब मेरे जो जितने टीचर्स थे उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, तुम एक्टिंग करो। डिजाइन डायरेक्शन कभी भी कर सकते हो बाद में, अगर तुम्हें मन किया तो कर लोगे, पर अभी एक्टिंग लो। तो मैंने अपने गुरु जो है सब उनकी बात मानी
0: और एक्टिंग की तरफ आगे बढ़ती गई। एनएसडी के आपके बैच में कौन कौन लोग थे, आपके बैचमेट्स?
1: बहुत लोग थे और वो लोग सब मतलब थिएटर कर रहे हैं अपने रीजन्स में। अभी मैं फुल प्लेट लेकर केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई थी।
0: जी जी।
1: और वहाँ बहुत बढ़िया रिस्पांस था और मेरे दो बैचमेट्स जो थे उन्होंने मुझे बताया नहीं और वो ऑडियंस में बैठे हुए थे।
0: वाह वाह।
1: और बहुत साल बाद उनसे मुलाकात हुई और स्क्रीनिंग के बाद वो आए और मैंने कहा ओह माय गॉड, एंड दे फेल्ट सो गुड कि मैंने एक फिल्म बना दी।
0: बिल्कुल।
1: और एक्चुअली ये फिल्म बनाना बहुत मुश्किल भी रहा है फॉर एवरी विच वे, क्योंकि जब मैं इनिशियली मतलब इंडिपेंडेंट फिल्म बनाना तो हमेशा ही मुश्किल होता है। शूटिंग के दौरान भी दिक्कतें आईं, फाइनेंशियल दिक्कतें आईं। जब बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने फाइनली फिनिशिंग फंड्स लेकर, एक और को प्रोड्यूसर लेकर हम फिनिश करने वाले थे, एडिट खत्म हुआ, देन आई गॉट डायग्नोस्ड ऑफ अ टर्मिनल इलनेस। और उसके दौरान मैंने पिक्चर खत्म की, पोस्ट प्रोडक्शन किया उसका। So it was a very difficult process, but then, like I said, ki I think no pain, no gain.
0: और इन तमाम मुश्किलों को, उतार चढ़ावों को सहत कर और उनसे पार होते हुए ये फिल्म पूरी। क्या ये आपका पहला डायरेक्शन था?
1: नहीं, मैंने रोम रोम में करके एक फिल्म बनाई थी,
0: इससे पहले बना चुकी
1: इससे पहले। हाँ, और
0: नवाज थे उसमें,
1: नवाज था उसमें, और नवाज और मैं एक फिल्म शूट कर रहे थे लायन करके, एक बहुत अच्छे ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर हैं गार्थ डेविस, एंड लायन ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म है। तो हम दोनों कलकत्ते में साथ में शूट कर रहे थे उसको, एक्टर्स। तो फ्री टाइम पे बात हो रही थी, मैंने कहानी ऐसे उसको सुनाई कि यार ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ वेनिस में। उसको बहुत इंट्रीगिंग लगी, उसने कहा यार तनिष्ठा ये इसको लिखो यार, बहुत कमाल की कहानी है। तो मैंने लिखना शुरू किया और फिर हम लोग मिलते रहे। नवाज और मैंने एस्को एक्टर्स पहले भी काम किया है और वो मेरे सीनियर भी हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। हाँ, तो हम मिलते रहे और मैं लिखती गई और फिर उसको मतलब ही रियली लाइक्ड इट।
0: क्या हुआ था आपके साथ रोम में?
1: सुपर नेचुरल स्टोरी थी।
0: सुपर नेचुरल,
1: हाँ, मतलब वो एक्सपीरियंस। खैर, देन मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इसको मैं बनाऊंगी।
0: Right.
1: मैंने सोचा था हम लिखते हैं, हम दोनों एक्टिंग करेंगे और किसी को देते हैं मतलब। बट ये नवाज ने मुझे कहा कि यार तूने जैसे लिखा है ना, ये तेरे दिमाग से आया है, ये कोई नहीं और नहीं बना सकता। मैंने कहा बट मैंने कभी फिल्म बनाई नहीं है। उसी ने मुझ में ये कीड़ा
0: डाल दिया।
1: इंसर्ट किया।
0: पहले एक्टिंग का कीड़ा ऑलरेडी था, उसके बाद ये एक और आ गया।
1: फिर बनाई ये पिक्चर हम लोगों ने।
0: शुरुआती दिक्कतें क्या थी?
1: कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि ईरोस तब बहुत बड़ा स्टूडियो था, वो ऑन बोर्ड आ गया था। दिक्कत बाद में हुई क्योंकि उसके बाद जब हमने फिल्म बना ली, फिल्म बनाने के बाद अगेन बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ, लेकिन उसके बाद ईरोस वेंट थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। तो उनका दे हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन द फिल्म, बट दे वर मतलब सबसे बड़ा स्टूडियो आप सोचो, फिर दे वेंट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। उसके बाद पैंडेमिक आ गई, सब कुछ बंद हो गया। सो लोगों की वो स्ट्रगल होती है कि फिल्म बनाने में, ये बनने में इतनी मुश्किल नहीं हुई, बट आई कुडंट डू एनीथिंग विद द फिल्म लेटर। मतलब दो तीन फेस्टिवल्स में गई, उसके बाद रिलीज नहीं कर पाए हम।
0: अभी
1: पता नहीं। उसके बाद मैंने एक शॉर्ट फिल्म जो है, एक एंथोलॉजी सीरीज अमेजोन के लिए अनपॉज्ड करके उसका एक सेगमेंट रैट अटैट, वो डायरेक्ट किया मैंने। और फुल प्लेट मेरी सेकंड फीचर फिल्म है जिसको हमने बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अगेन वर्ल्ड प्रीमियर किया, वहां मुझे विजनरी डायरेक्टर अवार्ड मिला। फिर फ्रांस में वसूल में हमें पीपल्स चॉइस अवार्ड और क्रिटिक्स स्पेशल मेंशन मिला। केरला, मैंने बताया केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल धर्मशाला, इसमें हमने स्क्रीनिंग की। अभी शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा रही है और सेंट जॉन्स मिनियापोलिस में हमने यूएस प्रीमियर की उस फिल्म की।
0: इतना सारा नाम आपकी फिल्म कमा रही है, कैसा लगता है?
1: बहुत ही बढ़िया, क्योंकि बहुत ही मुश्किल थी ये फिल्म बनाना।
0: इसका आइडिया कहां से आया था? वो तो एक वेनिस की सुपरनेचुरल कहानी है, आपने बताया। बस इतना ही एक क्लू छोड़ा आपने, इसका मामला क्या था?
1: ये एक लूजली एक रियल पर्सन पे ही है, जो मतलब मैं क्लियरली उतना नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम हो जाएगी। पर मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया इनको, और लेकिन मैंने कुछ लिखा नहीं था। मेरे दिमाग में था कि यार ये बहुत कमाल है और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इस कहानी में। पर जब मुझे मेरे जो फर्स्ट प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया अचानक कि छोटी बजट की कुछ भी, किसी को भी लेना है ले लो, जो भी बनाना है बना लो, तब मैंने लिखना शुरू किया। मुझे लगा कि यार ये तो कभी हो नहीं सकता आज की तारीख में, क्योंकि आज आप किसी भी स्टूडियो के पास जाओगे तो उनके मैंडेट्स हैं कि वो किस तरह के फिल्में देखना चाहते हैं, आपको वो लिखना पड़ता है।
0: यहाँ तो पूरी आजादी है।
1: और कल हम लोग एक्चुअली इस इवेंट में भी यही बातें कर रहे थे कि पहले ना कमर्शियल सिनेमा भी जब बनती थी, वो उस समय सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है या सोसाइटी जिस चीजों से गुजर रही है, राइटर्स उनका रिफ्लेक्शन ऑडियंस तक लेकर आते थे। मार्केट प्रेशर की मार्केट ये चाह रही है इसलिए हम ये लिख रहे हैं, ये नहीं होता था। पर अब वो नहीं है क्योंकि स्टूडियो सिस्टम जो अमेरिका में बहुत सालों से है वो यहाँ फुल्ली आ गया है,
0: कुछ अलग ही रूप में आया है।
1: हाँ, वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, तो वो एल्गोरिथम से हमें बताया जाता है कि यार जो है ना, मतलब लोग ये चाह रहे हैं तो ये लिखो, ये बनाओ। आजकल हम ये चाह रहे हैं, आजकल थ्रिलर्स चल रहा है, आजकल रोम कॉम्स चल रहे हैं, आजकल यू नो यूथ पे ऐसे फिल्में चल रही है, आज ये सोशल ड्रामा नहीं चलेगा या म्यूजिकल्स नहीं वर्कआउट हो रहा है, ये सब एल्गोरिथम्स बता रही हैं आपको, और उस हिसाब से आप तो जो फ्रीडम होती है आर्टिस्ट के एक्सप्रेशन की, वो कहीं पे यही बात हो रही थी, हम अपने आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी कैसे इसमें बरकरार रखें। क्योंकि अगर हम आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें एक पैसा भी नहीं मिलेगा,
0: बिल्कुल,
1: बिकॉज इट इज सो डिफिकल्ट। और मुझे लगता है कि इन फिल्मों के लिए ऑडियंस है, बहुत है, क्योंकि हमारे देश के जो डाइवर्सिटी है उसमें इन फिल्मों के लिए बहुत बड़ा ऑडियंस है, लेकिन जो गेटकीपर्स हैं, जो हमें मदद करते हैं उन तक पहुंचने में, वो पहुंचने नहीं देते हैं।
0: बिल्कुल सही है। यहां एक गाना सुनते हैं।
1: बिल्कुल।
0: गाना कौन सा होगा?
1: बिछड़े अभी तो हम

0: फिर से एनएसडी की तरफ चलता हूँ, इसलिए क्योंकि एनएसडी में आपने एक्टिंग का डिप्लोमा लिया, हालांकि आपने डायरेक्शन की तरफ घूमने की कोशिश जरूर की लेकिन वो कामयाब नहीं होने दी गई है ना। अब बात यह है कि एक्टिंग के ऑफर्स तो आने लगे थे और पहली फिल्म जो है वो बड़ी इंटरनेशनल टाइप की फिल्म आपने की थी, वहां से आगे की बातें करते हैं।
1: मेरी एक्चुअली पहली फिल्म थी अनवर जमाल की एक फिल्म स्वराज।
0: अच्छा, अनवर साहब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो
1: जी जी जी, और उन्होंने एनएसडी में रहते हुए ही जब एक प्ले देखने आए थे वो अपने पत्नी के साथ, सहजोजी के साथ, वहां उन्होंने मुझे देख के मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। और सारे एनएसडी के मेरे सीनियर्स थे एक्टर्स, चार औरतों की कहानी थी वो।
0: ओके।
1: और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट की और हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक करते थे गाना, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी।
0: अरे अरे।
1: और हम गांव में मतलब रह रहे थे, इतना मजा आया था ना राजस्थान के एक गांव में। और शाम में मतलब 6:30 के बाद अपने हट में जाओ रजाई के अंदर, और पूरी रात हम गाना गाते थे। और सुबह 4 उठ के नहा के शूटिंग, क्योंकि 6:30-7 से हम लोगों की शूटिंग शुरू हो जाती थी, उनको तैयार होना पड़ता था। बहुत मजा आया। वो मेरी पहली फिल्म थी स्वराज, एंड स्वराज को नेशनल अवार्ड भी मिली थी सोशल ड्रामा के लिए, बेस्ट सोशल ड्रामा। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी फिल्म की बम्बई में, बस यूं ही करके। और फिर मुझे बस यूं के बाद राजा मेनन की फिल्म, जो अभी बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने एयरलिफ्ट बनाई, उनके साथ मैंने 2 पिक्चर की, बस यूं ही और 12 आना। उसके बाद मुझे मिली शैडोज ऑफ टाइम, जो एक जर्मन प्रोडक्शन थी और एक ऑस्कर विनिंग जर्मन डायरेक्टर फ्लोरियन गैलनबर्गर, उनकी फिल्म
0: ऑडिशन से मिली थी।
1: ऑडिशन से, बहुत राउंड्स ऑफ ऑडिशन थी।
0: ओहो,
1: हाँ। और उस समय बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो कंसिडरेशन में थे उस रोल के लिए,
0: जिनके नाम हम नहीं लेना चाहेंगे।
1: मुझे लगा था कि यार मतलब वो बड़े, बहुत बड़े स्टार्स थे। मैंने कहा मैं क्यों दे रही हूँ ऑडिशन। बट अगेन मुझे इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वेस्ट में ना वो लोग लिपसिंग नहीं करते हैं, और रोल था एक कोठे में जो गाना गाती है और नाचती है उस औरत का। एंड फ्लोरियन वांटेड कि ऑब्वियसली जो एक्टर है वो लाइव गाएंगे, ही वांटेड अ सिंगर। तो मैंने वहीं पे स्कोर किया।
0: क्या बात है।
1: और मतलब हमको डांस भी करना था वहां पे और गाना भी था। एंड वो जो गाना है बंगाली ठुमरी थी जो आई हैड टू सिंग फॉर दैट फिल्म।
0: यू हैव टू सिंग।
1: ओके। আমি লাশময়ী তোমার চোখে কামনার ফুল যে ফোটাই তবু আখিতের চোখ রাখলে যেন আমি যে তোমার নই তোমার নই তোমার

0: अनुई।
1: क्या सुंदर तो बोल है, मतलब अद्भुत, क्या लाइन है वो, कामना के फूल,
0: हाँ
1: क्या बात है, क्या बात है, सुंदर।
2: अभी आप सुन रहे थे तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन किया मनीषा सिंह ने और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने संत मीराबाई का ये भक्ति पद सुना। संगीत दिया था हृदयनाथ मंगेशकर ने।

0: बहादुर शाह जफर का कलाम अभी आपने सुना। गायिका थी रूना लैला और संगीत पंडित गुलाम कादिर का था।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है।

0: डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
0: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब सुनते हैं यूसुफ आजाद कव्वाल और उनकी हमनवा की गाई ये कव्वाली। इसे तविश महमूद ने लिखा और धुन बनाई निसार ने।

कार्यक्रम में अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में एक गजल, शायर सबा अफगानी और संगीत इकबाल का।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं किशोरी अमोनकर की आवाज में उनकी गाई ये ठुमरी भैरवी।

0: किशोरी अमोनकर की आवाज में अभी आपने उनकी गाई ये ठुमरी भैरवी सुनी।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय,
0: शोभा गुर्टू की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं ये कजरी।

0: हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभी आप सुन रहे थे शंकर, शंभू और खव्वाल की आवाजों में हजरत अमीर खुसरो का ये कलाम। ये एक सूफी कव्वाली थी जो हजरत अमीर खुसरो ने अपने मुर्शीद यानी अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के लिए लिखी, और इस कव्वाली में भी अपने पीर, अपने संत को पाने की खुशी और उनके प्रेम के रंग का वर्णन कर रहे थे। संगीत दिया था मुरली मनोहर स्वरूप ने।
1: आएगी जरूर,
2: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
0: रंग तरंग कार्यक्रम में अब सुनिए जयदेव के संगीत निर्देशन में रामानंद शर्मा का लिखा ये भक्ति पद। इसे गाया है शर्मा बंधु ने।

इस रचना के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments as well as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा, जिसके चलते केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2026-27 के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अनुमान को संशोधित करके 6.7% कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष प्रमुख व्यापार मार्गों को बाधित करके वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां पेश कर रहा है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अपने अनुमान को पहले के 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। रिजर्व बैंक ने घरेलू अर्थव्यवस्था पर आशावादी रुख अपनाते हुए वर्ष 2026-27 के लिए अपने विकास अनुमान को बढ़ाया और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को घटाया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने लगे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: उधर राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। जम्मू कश्मीर से भाजपा सांसद सतपाल शर्मा ने कहा कि 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। श्री शर्मा ने कहा कि आज का दिन न केवल जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि फैसले ने जम्मू कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। श्री शर्मा ने कहा कि दशकों तक अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को अलग थलग रखा। श्री शर्मा ने यह भी बताया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत की एकता और अखंडता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को

0: को निरस्त किया गया था। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
1: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
0: झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 225 अंक बढ़कर 78,654 पर, जबकि निफ्टी 25 अंक गिरकर 24,590 पर पहुंच गया। भारत की शरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर पुरुष सिंगल्स में शीर्ष खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रोहनक चौहान, सानीत दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज अभिनेत्री काजोल और जेनेलिया डिसूजा का जन्मदिन है और विविध भारती परिवार की ओर से हम इन दोनों अभिनेत्रियों को देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने वो गीत चुने हैं जो काजोल और अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा की फिल्मों के हैं। तो आइए सुनते हैं कुछ ऐसे ही चुनिंदा गीत।
1: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
0: लता मंगेशकर और कुमार सानू, फिल्म का नाम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार जतिन ललित।

ये बिखरी बिखरी जुल्फे, ये झुकी झुकी पलके, ये गोरी गोरी बाहें।

0: ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे का, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल।
1: अनु मलिक के संगीत निर्देशन में अभी आपने देव कोहली का लिखा ये गीत सुना। आवाजें कुमार सानू, अनु मलिक और साथियों की। फिल्म का नाम था बाजीगर।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये गीत है अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है। इसे समीर ने लिखा है और तर्ज जतिन ललित की है।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो, 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अमित कुमार और उदित नारायण की आवाजों में। फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम। बोल समीर के हैं और धुन जतिन ललित की है।

अभी आपने सुना फिल्म कभी खुशी कभी गम का ये गीत। अगला गीत जतिन ललित की संगीत निर्देशन में प्रसून जोशी का लिखा हुआ, युगल स्वर सोनू निगम और सुनिधि चौहान की, फिल्म का नाम है फना।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है।
3: जी हाँ, अब आप सुनने वाले हैं आशा भोंसले और उदित नारायण को। फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था। गीतकार समीर हैं और संगीतकार जतिन ललित हैं।
4: अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

आशा भोंसले और उदित नारायण को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था प्यार तो होना ही था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है जाने तू या जाने ना, आवाज रूना की, संगीत दिया है ए आर रहमान ने और गीत लिखा है अब्बास ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। फिल्म का नाम है मस्ती, आवाजी शान और स्नेहा पंत की। इसे समीर ने लिखा है और धुन बनाई है आनंद राज आनंद ने।

0: मस्ती फिल्म का दो गाना अभी आपने शान और स्नेहा पंत की आवाजों में सुना।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
3: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
3: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
3: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि हर नागरिक को बड़े सपने देखने, उन्हें साकार करने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का अवसर सुनिश्चित किया जाएगा। राज्यसभा में आज जम्मू कश्मीर से भाजपा सांसद सतपाल शर्मा ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत की एकता और अखंडता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। संसद परिसर में हमारे संवाददाता से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के प्रत्येक निवासी पर अब हर सरकारी योजना का लाभ पहुंच रहा है।
2: आज ही के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने लगे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी कर प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: वहीं सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। श्री गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश में हर वर्ष लगभग 1,80,000 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है। रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति ने आज इस फैसले की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है

0: कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments, as well as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में एसआईआर अभियान के तहत प्रारूप मतदाता और एएसडीडी सूची का हुआ प्रकाशन। नाम सुधारने और नए नाम जोड़ने के लिए दावा प्रतिदावा की प्रक्रिया शुरू। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से। भाजपा ने आज रांची में बुलाई पार्टी विधायक दल की बैठक। सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का बड़ा आश्वासन। नए लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया बहुत जल्द होगी शुरू। नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। सरायकेला से 22 लाख के 3 इनामी माओवादी गिरफ्तार। 3 AK-47 राइफलें बरामद। और रांची में आदिवासी महोत्सव की तैयारियां तेज। गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। सुरक्षा और सुव्यवस्थित आयोजन के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में एसआईआर अभियान के तहत प्रारूप मतदाता और एएसडीडी सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जिन पात्र नागरिकों का नाम सूची में नहीं है, वे फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं। इसके साथ ही मतदाता सूची में किसी भी सुधार या नाम हटाने को लेकर आज से दावा प्रतिदावा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हजारीबाग जिले में एसआईआर अभियान के तहत कुल 16,32,000 मतदाताओं में से 13,52,000 नाम ही डिजिटलाइज किए गए हैं। उपायुक्त हेमंत सत्ती ने बताया कि शेष 2,80,000 मतदाताओं के नाम अनुपस्थित, मृत या डुप्लीकेट होने के कारण प्रारूप सूची से बाहर हैं।
1: प्रत्येक एईआरओ अपने अपने क्षेत्राधिकार में संबंधित जो लोग हैं जिनकी सुनवाई करनी आवश्यक है उनको नोटिस निर्गत करेंगे। जो नोटिसेस हम लोग इश्यू करेंगे घर घर जाकर के बीएलओ नोटिस इश्यू करेंगे और उस नोटिस में लोगों को आकर के अपने पक्ष में जो भी दस्तावेज उनसे मांगे जा रहे हैं उन दस्तावेजों को सबमिट करना होगा ताकि जो मतदाता सूची का उस अंतिम प्रकाशन के समय उनका नाम उसमें आए।
0: झारखंड विधानसभा का 5 दिवसीय मॉनसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर आज रांची में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पार्टी जेपीएससी परीक्षा धांधली, युवाओं के रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे ज्वलंत मुद्दों पर हेमंत सोरेन सरकार को सदन के भीतर घेरने की आक्रामक रणनीति तैयार करेगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा और सकारात्मक भरोसा देते हुए कहा है कि राज्य की हर पात्र महिला को इस योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार बहुत जल्द नए पात्र लाभुकों को इस महत्वाकांक्षी योजना से जोड़ने की नई प्रक्रिया शुरू करने जा रही है।
2: हेमंत सोरेन की सरकार जो 2,500 रुपया दे रही है, 4 महीने का पैसा जमा करके वो 10,000 रखती हैं और इस पैसे से अपने बच्चे के लिए सॉक सूज उनके लालन पालन की व्यवस्था होती है, कहीं हाथ नहीं पसारती है। और मैं अनुमान करता हूँ कि ये जो पैसा हम दे रहे हैं यानी कि 14,000 करोड़ का 18% कम से कम ये राशि वापस राज्य के खजाने में आ रहा है जीएसटी के रूप में और अन्य दूसरे रूप में।
0: नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। उम्मीदवार 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन और शाम 6 बजे तक शुल्क भुगतान कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को एमसीसी पोर्टल पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ चल रहा छात्रों का आंदोलन गुजरते समय के साथ और धारदार होता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने 7 और 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। छात्रों की मांग है कि संदिग्ध परीक्षाओं को तत्काल रद्द किया जाए और राज्य से बाहर के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के स्वतंत्र पैनल से इस पूरे मामले की निष्पक्ष न्यायिक जाँच सुनिश्चित की जाए। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 5.25% पर यथावत रखा है। मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत मांग के बल पर भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान घटाकर 5% कर दिया है। रांची में झारखंड प्रदेश कांग्रेस की ओर से एक विशेष मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें संगठन की मजबूती और प्रवक्ताओं को मीडिया के समक्ष पार्टी का पक्ष पूरी मजबूती से रखने की सीख दी गई। विधायक राजेश कच्छप ने बताया, प्रवक्ताओं से जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने का आह्वान किया।
4: कांग्रेस पार्टी हर विभाग में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है ताकि एक संवाद जो है वो बना रहे। तेज तरार हमारे जो युवक युवतियां हैं उनको यह अवसर प्रदान किया है ताकि कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी के तहत कांग्रेस पार्टी का जो संदेश है उन लोगों तक कैसे पहुंच, और भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी हुई है उनकी विफलताओं को कैसे उजागर भी कर।
0: सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावां से प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के 3 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। आईजी अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। गिरफ्तार नक्सलियों में 15 लाख का इनामी मदन मोहन मदन महतो, 5 लाख का रवि सरदार और 2 लाख की इनामी महिला नक्सली मीना शामिल है। इन इनामी माओवादियों के पास से 3 AK-47 राइफलें बरामद की गई हैं। जमशेदपुर पुलिस ने संकोसाई चेन छिनताई कांड का खुलासा करते हुए 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूटी गई सोने की चेन, 1 देसी पिस्तौल, कारतूस और 40,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। सिटी एसपी ललित मीना ने बताया कि आरोपी NH-33 पर बड़ी लूट की योजना बना रहे थे।
5: इनके पास से 1 देसी पिस्तौल, 2 जिंदा गोली, सोने की एक चेन, 1 सोने का टुकड़ा, 40,000 रुपए डोंगल और 3 एंड्रॉइड और 1 छोटा मोबाइल फोन।
0: गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव वन्ना दादेल ने रांची के मोरहाबादी मैदान में होने वाले झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 की तैयारियों का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात, पार्किंग और पेयजल जैसी व्यवस्थाओं को समयबद्ध तथा उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिलाजुला रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार मिलने तक

सेंसेक्स 225 अंक बढ़कर 78,654 पर, जबकि निफ्टी 25 अंक गिरकर 24,590 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,31,000 रुपए प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने तत्काल चेतावनी जारी करते हुए चतरा, गढ़वा, लातेहार, पलामू, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में अगले 3 घंटों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में SIR अभियान के तहत प्रारूप मतदाता और ASDD सूची का हुआ प्रकाशन, नाम सुधारने और नए नाम जोड़ने के लिए दावा प्रतिदावा की प्रक्रिया शुरू। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से, भाजपा ने आज रांची में बुलाई पार्टी विधायक दल की बैठक, सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का बड़ा आश्वासन, नए लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया बहुत जल्द होगी शुरू। नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, सरायकेला से 22 लाख के 3 इनामी माओवादी गिरफ्तार, 3 AK-47 राइफलें बरामद। और रांची में आदिवासी महोत्सव की तैयारियां तेज, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण, सुरक्षा और सुव्यवस्थित आयोजन के दिए निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

लता मंगेशकर की आवाज थी और फिल्म का नाम था आशीर्वाद। हमारे श्रोता ने लिखा है कि कहा जाता है कि सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो ये दर्शाता है कि हर अच्छे काम की शुरुआत में मुश्किलें और नकारात्मकता आती ही हैं। भगवान शिव द्वारा इस विष को अपने गले में रोकना ये सिखाता है कि समाज की भलाई के लिए कभी कभी कड़वी बातें भी सहनी पड़ती हैं। जो इंसान अपमान और आलोचना को झेल कर भी शांत रहता है, वही असल में महान बनता है। बहुत सुंदर। हमारे श्रोता ने हमारे एक सवाल का जवाब दिया है। हमने पूछा कि क्या आपके शहर में बरसा है पानी सावन बरसा के नहीं। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ गुजरात में अभी सावन नहीं आया, उत्तर पूर्व भारत में गए सोमवार के आसपास सावन शुरू हो गया है, पर पश्चिम में सावन महीना देर से आता है। इन्होंने लिखा है, अरे आपने हमारा नाम बदल दिया, मीनाक्षी जी। बड़ा सुंदर नाम रख दिया आपने हमारा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन हमारे तीन तहसील में बारिश नहीं हुई है, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर और जामनगर में बारिश नहीं हुई। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे भोपाल और आसपास के क्षेत्र में पानी नहीं बरस रहा है, बहुत चिंता हो रही है। बाकी गर्मी तो कम है, मौसम बहुत सुहावना है, चारों ओर हरियाली, तालाब, जंगल से घिरा हुआ शहर है हमारा। अगर अच्छा पानी गिरता है तो शिमला मसूरी का मजा आता है। क्या बात है, हम बिल्कुल

गुजारिश करते हैं भगवान से, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के शहर में पानी बरसे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पिछले महीने से मैं बारिश की गीत सुनकर थक गई थी, पर हमारे शहर में बारिश नहीं हो रही ही, पर पिछले सोमवार से हमारे शहर में रिमझिम सावन बरस रहा है। आज भी सुबह से एकदम बिल्कुल फुहार हो रही है और बहुत बढ़िया हरियाला मौसम हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है ना आपको। आप लिखती हैं कि भाई विविध भारती स्टूडियो में भी सावन आ गया है। बिल्कुल, यहाँ तो सावन आ गया है स्टूडियो में, और सुरीला सफर में भी तो हम निकल पड़े हैं ना, जहाँ सावन की बौछारें हमें भीगो रही हैं। भीगे हैं ना आप, बताइए मुझे भीगे हैं कि नहीं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया है, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि कहा जाता है कि सावन मास में ही अच्छाई, तो हमने आपका विचार पढ़ दिया था, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं सलिल चौधरी का संगीत, शैलेंद्र के बोल, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है 2 बीघा जमीन। अच्छा बताइएगा, हमारे एक श्रोता ने कहा आपके 2 सवालों का क्या हुआ। नहीं नहीं, आज हम खूब सारी बातें करने वाले हैं, खूब सारे सवाल आपसे करने वाले हैं, सीधे साधे प्यारे से, जिनका जवाब आप इस सफर में चलते चलाते दे देंगे, है ना। बताइएगा आपके लिए सावन का सबसे रूमानी एहसास क्या है, बारिश, ठंडी हवा, चाय या किसी अपने का साथ।

हमारे श्रोता लगातार हमें लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम आपसे थोड़े से नाराज हैं, आप आजकल बहुत दिनों बाद आती हैं। वैसे तो हमने सोचा आज हम सुरीला सफर नहीं सुनेंगे क्योंकि कुछ ऐसे काम है जो हम नहीं कर पा रहे, उसे करना बहुत जरूरी था, पर अब लगता है कि आपको हम सुनेंगे।

ये और जब सावन की बातें हैं तो हम क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा है। फिर दिल ने धीरे से कहा, हो जाओ शामिल, देखो ना सब ने कितने प्यारे प्यारे संदेश भेजे हैं, तुम भी लगी हो इन सब में। बस फिर क्या था, हम लिखने लगे, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप इस तरह से इतना काम होते हुए भी हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं और हमारे साथ इस सुरीले सफर पर निकल पड़ते हैं। एक श्रोता ने कहा है, यह सावन हर साल आता है मगर हर बार कुछ नया छोड़ जाता है, कभी भीगी मिट्टी की खुशबू में कोई पुरानी याद, कभी झूले की पींग में बचपन, कभी पपीहे की पुकार में किसी का इंतजार, पेड़ों पर उतरती हरियाली जैसे धरती ने हरे रंग की चूड़ियां पहन ली हो और बादल आसमान की पेशानी पर ठहरी कोई खामोश दुआ बन गया हो। शायद इसलिए हमारे फिल्मी गीतों ने सावन को सिर्फ देखा नहीं, उसे जिया है। हर धुन में कहीं रिमझिम की बूंद है, कहीं मोर के पंखों की थिरकन, कहीं विरह की भीगी सांस तो कहीं मिलन की मुस्कान। सावन दरअसल मौसम नहीं, यादों का भीगा हुआ पन्ना है जिसे जिंदगी हर बरस फिर से खोलकर पढ़ती है। बहुत सुंदर, बहुत गहरी इबारत आपने लिखी है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि भारत ऋतुओं की विविधता का देश है लेकिन जो आत्मीयता, रसमयता और भावुकता सावन के महीने में छिपी है वो अद्वितीय है। सावन केवल वक्त का एक महीना नहीं है, ये भारतीय जनमानस के लिए प्रेम, विरह, हरियाली और आस्था का एक जीवंत उत्सव है। सावन आते ही प्रकृति अपना सबसे सुंदर रूप धारण कर लेती है। सावन रस का महीना है, चाहे वो पानी का रस हो, संगीत का रस हो, प्रेम का रस हो या फिर भक्ति का रस हो। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना उल्लास, उमंग, खुशी और प्रकृति को भी खुशनुमा बना दे।

लगता है हमारे श्रोताओं को जो है पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े और अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। इसलिए तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कहा है हमारे सवाल के जवाब में कि आपके लिए सावन का सबसे रुमानी एहसास क्या है। आप लिखते हैं कि गर्मा गर्म पकौड़े और चाय। चलिए हम पढ़ते हैं आपके इन जज्बातों को। आप लिखते हैं, पहली बूंदों को अदरक वाली चाय, गर्म पकौड़े और सुरीले सावन गीतों के सुनते हुए अपने मनमीत के साथ मजा लेना ही बढ़िया एहसास लगता है। क्या खूब। एक श्रोता ने लिखा है कि आज बहुत कम सुनाई देने वाले मधुर सावन गीत आ रहे हैं, धन्यवाद। वहीं एक श्रोता ने कहा है, हमें तो सावन में बारिश हो रही हो तब गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मजा आता है। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन माह में हल्की रिमझिम वर्षा के साथ गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों का आनंद लेते हुए झूले पर, अच्छा टेरेस पर डाले गए झूलों पर बैठना अधिक सुहाता है। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना, झूले भी खेतों में पड़े हैं और शिव जी पर नियमित प्रातः जलाभिषेक सब पत्नी हम कर रहे हैं। सारे माह बेटियों बहुओं ने व्रत रखने का संकल्प लिया है। एक समय भोजन करेंगे, शिव नाम का जाप होगा और अभिषेक होगा। बहुत खूब। वहीं श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना, झूले भी पड़े हैं और व्रत भी किया है। एक श्रोता ने लिखा है कि चाय और पकौड़े को तो सावन की जान माना जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन की शुरुआत में हमारे यहाँ बारिश का आनंद देना शुरू कर दिया। हम घर बैठे बारिश के साथ रेडियो पर आपके प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं और झांसी में 15 दिन बाद पानी बरसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और क्या कहना चाहिए, बधाई, ये आपके शहर में पानी बरसा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने सावन का आनंद हमेशा ही लिया है। बचपन में कागज की नाव बनाकर तैराना, कॉलेज के दिनों में भीगते हुए सावन का आनंद लेना और रेडियो पर सावन के गीतों का मजा लेना। सर्विस पीरियड में अवकाश के दिन अपनी पत्नी के साथ खिड़की के फुहारों और हरियाली का आनंद लेना। अब सेवानिवृत्त होने के बाद अदरक, काली मिर्च और इलायची की शुद्ध दूध की चाय और गर्मा गर्म प्याज के पकौड़ों का, आहा, हमारा भी मन कर गया है। मजा अपनी पत्नी के साथ लेता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ तो जब भी बारिश होती है तो पतिदेव पकौड़े की फरमाइश करते हैं और फिर हम दोनों बारिश का मजा लेते हुए साथ साथ पकौड़े का भी मजा लेते हैं। बहुत सुंदर, यही तो जीवन है। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन महीने की बरसात की फुहार, चाय की प्याली और पकौड़े के स्वाद कुछ अलग ही होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन की बारिश में चाय और पकौड़ों की जुगलबंदी इस रूमानी एहसास को दोगुना कर देती है। गर्मा गर्म पकौड़े, कटती हुई ठंडक और बारिश की रिमझिम के बीच प्याज, आलू और मिर्च के करारे पकौड़ों की बाइट, मन को तृप्त कर देती है। इलायची अदरक वाली चाय पकौड़ों के साथ खौलती हुई अदरक इलायची की चाय की चुस्की रूह तक सुकून पहुंचाती है। मौसम का असली मजा खिड़की के पास बैठकर बारिश को देखते हुए चाय पकौड़े का आनंद लेना है और सावन का सबसे खास और ये सुखद पल बन जाता है। भाई, आपकी चाय और पकौड़े की बात पढ़ते पढ़ते, आपकी फीलिंग्स को महसूस करते करते हमारी भी इच्छा हो गई है कि एक गर्मा गर्म चाय और कुछ गर्मा गर्म पकौड़ियाँ खाई जाए। अच्छा, तो हमने एक सवाल पूछना चाहा भी था आपसे कि क्या कभी आपने बारिश में कागज की नाव बनाई। हाँ, बचपन में तो जरूर बनाई होगी। हमारे एक श्रोता ने अभी जवाब भी दिया कि उन्होंने बरसात में खास तौर से कागज की नाव को तैराया है। कितना मजा आता था ना घर आंगन में, जब हम जो नाली है उसमें एक कपड़ा ठूंस देते थे ताकि पानी बाहर न जाए और कागज की नाव उस पे चलाए करते थे और हमें लगता था कि हमने जैसे असल में नाव बना ली है और हम उस पर तैर रहे हैं। अच्छा, बताइएगा कि सावन का नाम सुनते ही आपके दिल में सबसे पहली कौन सी याद ताजा हो जाती है, कम से कम शब्दों में बताना है। और हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत।

हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि मेरे लिए सावन की रिमझिम फुहारें, खिड़की पर आती ठंडी हवा की लपटें, लपटें अरे आपने तो एक अलग ही शब्द इस्तेमाल कर लिया। हाथों में अदरक इलायची वाली कड़क चाय का गर्म कप और बैकग्राउंड में बजते हुए सदाबहार रुमानी गाने, ये किसी जन्नत के एहसास से कम नहीं लगते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। और जब कोई संगीत प्रेमी इस तरह की कल्पना करता है या इस रोमानियत से जीता है तो उसकी जिंदगी क्या कहने। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे नागपुर वाले अपार्टमेंट के टेरेस पर मैंने झूला रखा है और शाम को उस पर बैठकर झूलते हुए हरियाली देखता हूं और ठंडी हवा का आनंद उठाता हूं, बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन में दोस्ती यारों के साथ चाय की दुकान पर मिलाप बढ़ जाता है और वार्तालाप और हंसी मजाक से समय बिताना कुछ अलग ही मजा देता है। बिल्कुल। एक श्रोता ने कहा है कि सुबह से दीदी बनारस में बारिश हो रही है, मेरा फेवरेट आनंद लेने की जगह वही होती है, बारिश में बस कुल्हड़ वाली सौंधी सौंधी खुशबूदार चाय पीता हूँ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर में बारिश काफी कम हुई है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। एक श्रोता कहते हैं कि फिलहाल तो हमारे जबलपुर में बारिश नहीं हो रही है, गर्मी तपन भी है, ना ही ऐसा कोई बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, सिर्फ विविध भारती का सहारा है जो हमें ठंडी ठंडी फुहार वाले गीत सुना रहा है, जब बारिश होगी तो पकौड़े और अदरक वाली चाय मिलेगी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के महीने में अपनी व्यस्तता बढ़ जाती है क्योंकि भोले भंडारी को खुश भी करना है, घर के ही मंदिर में शिव जी को जलाभिषेक करना, बेलपत्र और फूलों से पूजा करना दैनिक गतिविधियों का अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। साथ ही सोमवार को फलाहार वाला व्रत रखकर तन और मन को डिटॉक्स भी करना होता है। हाथों को हरी चूड़ियों और मेहंदी से सजाना भी सावन के महीने की विशेषता है। उस पर से बारिश की ठंडी फुहारें आसपास के वातावरण को और खुशनुमा बना देती है, बहुत सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के शानदार गीत, आज तो मैं और मेरा प्यार भरा नमस्कार आपको, शानदार सुरीला सफर का कार्यक्रम, बारिश और भी तेज हो रही है मेरे शहर में, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सभी को सावन का मौसम दुख और सुख दोनों का मिलन है। पहले सावन में मायके जाते थे, झूला झूलते थे, सखियों से मिलते थे, अब वो सब नहीं हो पाता है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली, मैंने उनको सिर्फ इस गाने की दो लाइनें लिखी थी कि तेरी दो टकिया दी नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए रे, क्या बात है। बस फिर क्या था, उनको पता चला और उन्होंने छुट्टी दे दी और मेरा ये सावन का अनुभव हर साल सावन में याद आता है। वाह, अब तो ना मायके से कोई आता है ना कोई बुलाता है, पुरानी यादों को याद करके ये सावन बीत जाता है यही जिंदगी है ना, जिंदगी में हर पल एक से नहीं होते हैं, कभी खुशी कभी गम होते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन की पहली फुहार में आज काशी नगरी भीग गई है, मौसम बहुत सुहावना हो गया है, जहां बारिश अभी तक नहीं पहुंची थी वहां भी सावन की वर्षा पहुंच चुकी है, बाबा विश्वनाथ जी के से प्रार्थना करती हूं कि

अभी सावन की सुंदर छटा चले चलती रहे। वही एक श्रोता ने लिखा है कि अरे आपने तो मंदाकिनी शब्द के अलग अलग अक्षरों का अर्थ लिख दिया है। बहुत लंबा खत आपने लिखा है, बहुत लंबा संदेश, चलिए फिर कभी इसको पढ़ेंगे। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इबारत को पढ़कर मालूम हुआ कि सावन के महीने की क्या विशेषता है और सावन के ऊपर आज मधुर और कर्णप्रिय गीत सुनने को मिलने वाले हैं, तो हम इसके लिए आपके साथ सुरीला सफर में चलने को तैयार है। भाई अब तो हम अंतिम सोपान तक पहुँच चुके हैं, तो चलिए सुनते हैं प्रीति सागर की आवाज में। इनका साथ दे रहे हैं भूपेंद्र, फिल्म का नाम है भूमिका।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जो काम इंसान यूं ही नहीं करता वो काम बारिश करवा देती है। भवन की सफाई, पेड़ पौधों को साफ करना, पीने का पानी, पशुओं का चारे की व्यवस्था, ये बरसात ही तो करती है। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि कटक उड़ीसा में सावन आया, आकर भिगो भी गया, बारिश हुई, ऊपर छत्तीसगढ़ में बहुत बारिश हुई, हीराकुंड डैम से पानी भी निष्कासित हो रहा है, नदी नाले पानी से भरे हुए हैं। बहुत दिनों के बाद बारिश आई, लेकिन खुशी के साथ दुख भी दिया, कई जिलों में बाढ़ आने से बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम ऐसे प्रकृति को देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि हमारे ही लोग इस अतिवृष्टि से कितने परेशान हैं, और जानमाल को जब नुकसान होता है तो वाकई मन रो पड़ता है। जी, अब तो मिलने मिलाने का वक्त खत्म हो गया है, और अब आपको हमें यानी मंदाकिनी जोशी को इजाजत देनी होगी कार्यक्रम सुरीला सफर से। तो हम लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है भोर या सवेरा पर। साथियों, भोर प्रकृति की वो मुस्कान है जो धीरे धीरे खिलती जाती है और रात के घने अंधकार के घमंड को अपनी मुस्कुराहट के सौंदर्य से समाप्त कर देती है। ये केवल दिन की शुरुआत भर नहीं बल्कि आशा, ऊर्जा और नव जीवन का सुंदरतम उत्सव है। जब पूर्व दिशा में उषा अपनी सुनहरी चुनर फैलाती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश स्वयं पर इठला रहा हो, मानो आकाश की झोली से भोर हाथ भर भर के सोना उछाल कर धरती पर बिखेर रही हो। रात भर चंद्रमा और तारों की छत्र छाया में विश्राम करती धरती भोर की पहली किरण के साथ अंगड़ाई लेकर जाग उठती है।

घास की पत्तियों पर सजी ओस की बूंदें मोतियों की तरह दमकने लगती हैं। मंद मंद बहती शीतल हवा फूलों की सुगंध को अपने साथ बहाकर पूरे वातावरण में बिखेर देती है। वृक्षों की डालियों पर बैठे पक्षी अपने मधुर कलरव से प्रकृति के इस जागरण का स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण सृष्टि किसी अदृश्य संगीत की लय पर थिरक रही हो। भोर जीवन का वो संदेश है जो कहता है कि कोई भी अंधकार स्थायी नहीं होता। कितनी ही लंबी और भयावह रात क्यों ना हो, लेकिन अंत में उसे उजाले के सामने झुकना ही पड़ता है। यही कारण है कि सवेरा मानव जीवन में आशा और विश्वास का प्रतीक माना गया है। ये हमें प्रेरणा देता है कि कठिन परिस्थितियों और निराशाओं के बीच भी धैर्य बनाए रखें, क्योंकि हर संघर्ष के बाद सफलता का सूर्योदय अवश्य होता है।

भोर हमें ये भी सिखाती है कि हर नया दिन एक नया अवसर है बीते हुए कल की असफलताओं और दुखों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का अवसर। जैसे सूर्य प्रतिदिन बिना थके अपनी किरणों से संसार को आलोकित करता है, वैसे ही मनुष्य को भी निरंतर कर्म करते हुए अपने जीवन को प्रकाशमय बनाना चाहिए। सच तो ये है कि भोर प्रकृति द्वारा रचित सबसे सुंदर काव्य है। इसकी हर किरण में उम्मीद का

गीत है हर हवा के झोंके में नव जीवन का संदेश है और हर उगते सूरज में अनंत संभावनाओं का प्रकाश है। भोर हमें याद दिलाती है कि जीवन रुकने का नहीं बल्कि हर दिन नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने का नाम है। इसलिए सवेरा केवल समय का परिवर्तन नहीं बल्कि मन और आत्मा के जागरण का उत्सव है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की शरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।
1: आज ही के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था, वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई है और अब शासन राजनीतिक परिवारों के बजाय जनता द्वारा संचालित है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
2: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
0: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, संपर्क व्यवस्था बेहतर हुई है, सरकारी सेवाएं मजबूत हुई हैं और पर्यटन, निवेश तथा सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।
3: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है। नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसमें चिनाब और अंजीखड रेल पुल शामिल है, के पूरा होने से कश्मीर घाटी तक रेल संपर्क सुनिश्चित हुआ है। जेड मोड टनल ने सोनमर्ग तक हर मौसम में पहुंच सुनिश्चित की है, जबकि जोजिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये नीतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुंच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ 35 लाख से अधिक

0: रही, जिसमें 65,000 से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। 2,200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं और 26 नए औद्योगिक ढांचे विकसित किए गए हैं। 41,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लगभग 981,000 स्वरोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। इन वर्षों में सुरक्षा की स्थिति में भी काफी सुधार देखने को मिला है। श्रीनगर से इशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है।
2: After a detailed assessment of the evolving
0: परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के विस्तार से समीक्षा करने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25 पर ही बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
1: रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश में आर्थिक वृद्धि बनी हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रही।
2: Headline inflation has edged up.
0: उम्मीद के मुताबिक मुद्रास्फीति आधार से थोड़ी ऊपर चली गई है। हालांकि पहली तिमाही में वास्तविक महंगाई दर अनुमान से थोड़ी कम रही। इससे पता चलता है कि लागत का दबाव कीमतों पर पूरी तरह से नहीं पड़ा है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन और खाद्य वस्तुएं हैं। अब तक कीमतों के दबाव के हर तरफ फैलने के कोई खास संकेत नहीं मिले हैं। कीमती धातुओं को छोड़कर महंगाई दर पहले के अनुमान के मुताबिक ही नियंत्रण में है।
2: As projected earlier.
1: उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए RBI ने वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है।
2: रियल GDP ग्रोथ फॉर दिस ईयर
0: मौजूदा वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी का अनुमान अब 6.7% है। ये हमारे पिछले अनुमानों से 10 आधार अंक अधिक है। पहली तिमाही में 7%, दूसरी तिमाही में 6.4%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8%।
2: Q4 at 6.8%।
1: श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: सदन की कार्यवाही फिलहाल अभी जारी है। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति CP राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की योजना की घोषणा की।

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि विद्यार्थियों ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है।
1: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि उन्हें किसी का इस्तीफा नहीं बल्कि संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर राज्य के बाहर से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जाँच चाहिए। छात्रों ने सीआईडी जाँच को नाकाफी बताया है। छात्रों के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद सीआईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। सीआईडी ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, जिसमें पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल हैं, के लिए पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में ये भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उत्तरी कर्नाटक के यादगीर जिले के कडेचूर बडियाल औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह रासायनिक रिसाव के कारण 3 श्रमिकों के दम घुटने से मौत हो गई। रिसाव के संपर्क में आए 2 श्रमिकों को रायचूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में तीसरे ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू हो गई है। अनेक देशों के प्रतिनिधि 4 दिन के इस विचार विमर्श में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 78,322 पर और निफ्टी 94 अंक फिसलकर 24,521 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और लद्दाख में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। ओडिशा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस बार मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।
2: उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित जिलों में बड़ी नदियों का जलस्तर घटने के साथ ही राहत और बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हीराकुद बांध के 5 और स्लुइस गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे बाढ़ का पानी छोड़ने वालों गेटों की संख्या घटकर 8 रह गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि आज 13 जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। उड़ीसा में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 26% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और खेलों में भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गए हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानिध दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज खेलेंगे। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध।

0: प्रदर्शन तेज, असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, और भारत की ईशारानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं रवि का संगीत, साहिर लुधियानवी की बोल, मन्ना डे की आवाज, फिल्म का नाम वक्त।

0: करती हो, हम पे तुम भी मरती हो, बहाने क्यों करती हो, हम पे तुम भी मरती हो, अभी तो नया साथ है, आज हंसी तो कल भी हंसोगी।
1: किशोर कुमार की आवाज में आपने श्रीमान फंटूश का गीत सुना। गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे।
0: बहाने क्यों करती हो?
1: और ये स्वर है मोहम्मद रफी का, फिल्म का नाम है सहेली। गीत रचना इंदिवर की और धुन कल्याण जी आनंद जी की।

बेकरार पर हमें अपने प्यार पर तुमसे बड़ा नाज है। अजी ये गुस्सा छोड़ो अभी से दिल ना तोड़ो, अजी ये गुस्सा छोड़ो अभी से दिल ना तोड़ो, अभी तो नया आजाद है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम है रिश्ते नाते। गीत रचना हसरत जयपुरी की है और धुन मदन मोहन की।

कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है दो बदन। शब्दकार शकील बदायूनी है और धुन रवि की है।

0: भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेएस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में। इसे कमर जलालाबादी ने लिखा और धुन कल्याण जी आनंद जी ने दी।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: और ये है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, आवाजें मोहम्मद रफी और शारदा की, फिल्म का नाम है गुमनाम।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज लोक भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुलाकात की। इस दौरान श्री सोरेन ने राज्यपाल को जेपीएससी और जेएसएससी की नियुक्ति प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं तथा इसके विरोध में रांची में चल रहे छात्र आंदोलन से अवगत कराया। इस मौके पर राज्यपाल ने छात्र हित को सर्वोपरि बताते हुए परीक्षा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और युवाओं के विश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री सोरेन ने राज्यपाल को आश्वस्त किया कि सरकार छात्रों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इधर राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों के आंदोलन का आज 12वां दिन है। आंदोलन को धार देने के लिए डॉक्टर, इंजीनियर्स और अन्य बुद्धिजीवी वर्ग सहानुभूति जताते हुए उन्हें समर्थन देने रांची पहुंच रहे हैं। वहीं नियुक्ति घोटाले की परतें भी खुल रही हैं। कई अभ्यर्थियों ने 9 से 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। अब सभी पीड़ित तथा प्रभावित अभ्यर्थी इस विषय पर लामबंद होते दिख रहे हैं, जिससे सरकार और परीक्षा एजेंसियां घेरे में हैं।
1: हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो भी रणनीतियां हमारी बन रही हैं, हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को सुने, क्योंकि अब बच्चों के पास उतनी हिम्मत नहीं रही है। सारी चीजों हम लोगों ने करके देख लिया, एकमात्र आखिरी रास्ता हमारा ये अनशन बचा हुआ था, तो हम लोगों ने अन्न त्याग दिया है। अब हम चाहते हैं कि आप हमारी मांगों को सुन ले। आप गार्जियन है, अगर आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? हम देखना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, आप किस तरह से अपनी गार्जियनशिप को निभाते हैं।
0: राज्य में आज एसआईआर अभियान के तहत प्रारूप मतदाता और एएसडीडी सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जिन पात्र नागरिकों का नाम सूची में नहीं है, वे फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं। इसके साथ ही मतदाता सूची में किसी भी सुधार या नाम हटाने को लेकर आज से दावा प्रतिदावा दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। झारखंड विधानसभा का 5 दिवसीय मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, जिसे लेकर आज रांची में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पार्टी जेपीएससी परीक्षा, धांधली, युवाओं के रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे ज्वलंत मुद्दों पर हेमंत सोरेन सरकार को सदन के भीतर घेरने की आक्रामक रणनीति तैयार करेगी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल ने आज रांची के मोराबादी मैदान में होने वाले झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 की तैयारियों का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात, पार्किंग और पेयजल जैसी व्यवस्थाओं को समयबद्ध तथा उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। उम्मीदवार 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन और शाम 6 बजे तक शुल्क भुगतान कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
2: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को एमसीसी पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावां से प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के 3 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। आईजी अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इनमें 15 लाख रुपए का इनामी मदन महतो, 5 लाख रुपए का रवि सरदार और 2 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली मीना शामिल है। इनके पास से 3 AK-47 राइफलें बरामद की गई हैं। और राज्य के कई इलाकों में आगामी 8 अगस्त तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने चतरा, देवघर, गिरिडीह, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार और सिमडेगा जिलों में अगले 3 घंटों के दौरान गरज और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली आपको भी नमस्कार और जरा माफ कीजिएगा।
2: ममता जी पहले तो आपको नमस्कार, सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भाई माफी किस बात की?
1: बस यही तो मैं इंतजार कर रही थी कि आपने पूछा ही नहीं माफी किस बात की। बस माफी मांग ली, अब कुछ भी गलती हुई हो तो आप माफ कर दीजिए।
2: नहीं भाई ऐसे तो हो नहीं सकता कि आपने कुछ गलती की है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कुछ कारण है इसलिए आप कह रही है।
1: दरअसल ये जो बात है ना इसलिए कह रही हूँ, माफी मांग लेने में कोई बुराई नहीं है।
2: ये तो बहुत सही
1: है ना। अब चाहे कोई छोटा हो उम्र में चाहे बड़ा हो, अगर आपने कोई गलती की है या आपको ऐसा लगता है कि आपने गलती की है तो माफी मांग लेनी चाहिए, भले ही आपकी गलती ना हो। लेकिन इतनी विनम्रता भी ना हो कि आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको अनायास माफी मांगने का खामियाजा भुगतना पड़े, वो भी नहीं होना चाहिए। तो हम अपने श्रोताओं से आज ये जानना चाहते हैं किन मौकों पर उनको माफी मांगनी पड़ी, क्षमा करना पड़ा, और किन मौकों पर उन्होंने अपने छोटों को क्षमा दी और किन मौकों पर उन्होंने क्षमा किया, तो वो अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोता।
2: बहुत छोटा सा शब्द है पर उसका बहुत गहरा अर्थ है। तो हमारे श्रोता लिख कर भेजे, उन्होंने ये तो बहुत लिख कर भेजा है कि क्षमा कर देना चाहिए क्षमा नहीं करना चाहिए, पर आपके जीवन से जुड़े कुछ अगर अनुभव है तो वो हमसे साझा।
1: अच्छा तो आप बताइए आप किन मौकों पर क्षमा करती
2: हैं? मैं तो बहुत बार मांग लेती हूँ, क्षमा मांग लेती हूँ और क्षमा कर भी देती हूँ, तभी हम जिंदगी को ना बड़े आनंद से गुजार सकते हैं जिंदगी। अगर हम दिल में किसी के प्रति ऐसा गांठ रख के चले ना तो उसमें क्या होता है हमारा भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है।
1: बिल्कुल सही कह रही है। और हम अपने घर में अपने बच्चों को तो रोजाना कुछ न कुछ किसी न किसी बात पे क्षमा करते हैं, अगर क्षमा नहीं करेंगे तो बच्चों के मन में गांठ पड़ जाएगी और वो फिर कैसे सीखेंगे। तो ये हम अपने श्रोताओं से यही कह रहे हैं कि अपने अनुभव हमें बताएं कि उन्होंने कोई ऐसी यादगार घटना भी हमें संक्षेप में बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और वो टिप्पणी हम श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। और बताइए और किन
2: किन बातों की? साथ ही एक बहुत ही एक ऐसा मुद्दा है ममता जी जो हर घर घर में होता है, जो माता पिता की लड़ाई में बच्चों पर बुरा असर, इस बात में भी ये है कि पति पत्नी ने भी एक दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए समय समय पर, जब भी जरूरत पड़े सॉरी बोल दिया क्षमा मांग ली तो ये काम जो है बहुत अच्छी तरह सुलझ सकता है, क्योंकि माता पिता की लड़ाई से बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, उनका मानसिक जो है ना स्तर बहुत बहुत गिर जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे,
1: उन पर इस विषय पर भी तनाव बहुत होता है
2: जी।
1: और अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे तो उनकी पढ़ाई पर असर होता है, सबसे ज्यादा उनकी शिक्षा बाधित होती है।

0: है, क्योंकि वो माता पिता के झगड़ों को मन में कहीं उनके भीतर चलता रहता है, और माता पिता झगड़ के कई बार वो भूल भी जाते हैं,
1: एक हो
0: अपने
1: जाते
0: अपने
1: हैं।
0: एक हो जाते हैं, और कई बार अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं। जैसे दफ्तर में काम कर रहे हैं तो वो लोग अपने दफ्तर के कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन बच्चे के कोमल मन पर उस झगड़े का बहुत गलत असर पड़ता है।
1: स्कूल में भी उनका मन नहीं लगेगा कि देखिए हमारे मम्मी पापा के बीच कैसी लड़ाई हो गई, अंदर ही अंदर वे परेशान रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति किसी भी बच्चे पर ना आए, इस तरह से क्या किया जाए, यानी कि जब भी ऐसे कुछ हो तो बंद कमरे में बातचीत करके सुलह कर देना चाहिए। इस विषय पर भी आप लिखिए कि आप ऐसा करते हैं या फिर आप बिल्कुल इन बातों से दूर रहते हैं।
0: और इसमें भी अपने अनुभव हमारे श्रोता साझा कर सकते हैं, और जो भी टिप्पणी अभी आएगी उन टिप्पणियों को हम उन तक पहुंचाएंगे। और क्षमा के बारे में हमने बता दिया, और साड़ियों का संसार बृहद है,
1: जी
0: बहुत विराट है,
1: जी
0: और तरह तरह की साड़ियां होती हैं, और महिलाओं की तो खास शौक है पहनने की, लेकिन तोहफे में पाना भी महिलाओं को बड़ा अच्छा लगता है। साड़ी अगर आपने खरीदी तो ठीक है, लेकिन वही साड़ी अगर कोई आपके रिश्तेदार या कोई भाई बहन पिता और दोस्त मित्र
1: पति
0: पति दे दे खास मौके पर, तो वो जैसे लिख उठता है कि फला मौके पर फला ने ये
1: हमें ये
0: साड़ी दी
1: साड़ी
0: थी।
1: दी थी। तो माहेश्वरी साड़ी जो मध्य प्रदेश की शान है, उसके बारे में हम जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, हमारे सखियों ने भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने शुरू कर दिए हैं, अपने मैसेजेस लिखना शुरू कर दिया है। और व्यंजन यानी हम शब्दों के माध्यम से तो चटनी बनाते ही हैं, पर
0: और
1: अगर
0: ये जो मौसम है ना,
1: जी
0: बारिश का मौसम, इसमें
1: हाँ
0: जब भजिए पकौड़े बनते हैं तो उसके साथ चटनी जरूरी होती है,
1: हाँ
0: और चटनी ऐसी चीज है कि चाहे पकौड़े के साथ खाइए या पराठे के साथ, पूरी के साथ, दाल चावल के साथ, हर चीज के साथ फिट हो
1: यानी वो
0: जाती है।
1: खाने का जायका बढ़ा देती है।
0: और गाना भी जायका बढ़ाता है हमारे प्रोग्राम का, सुनते
1: सुनते
0: हैं ये
1: हैं।
0: गाना।

0: हाँ तो सोनाली जी, हम बात कर रहे थे साड़ियों की, और माहेश्वर साड़ी के बारे में हम बताने वाले थे अपनी सखियों को। भारत की हस्तकरघा परंपरा विश्वभर में अपनी उत्कृष्ट और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं अनुपम धरोहरों में माहेश्वरी साड़ी का बहुत बड़ा योगदान है और इसका स्थान भी है। मध्य प्रदेश के नर्मदा तट पर बसे महेश्वर नगर में निर्मित ये साड़ी अपनी हल्की बनावट, आकर्षक किनारे, मनमोहक पल्लू और राजसी गरिमा के लिए जानी जाती है।
1: और ममता जी, ये केवल एक परिधान नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और बुनकरों की अद्भुत कला का जीवंत प्रतीक है। और माहेश्वरी साड़ी का इतिहास लगभग 250 वर्ष पुराना है। 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी महेश्वर में ये स्थापित की थी। उन्होंने गुजरात, मालवा और दक्षिण भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों से कुशल बुनकरों को महेश्वर बुलाकर उन्हें बसाया। उनके संरक्षण में ऐसी साड़ी तैयार की गई जो राज परिवार की गरिमा के अनुरूप होने के साथ साथ हल्की, सुंदर और उपयोगी भी थी।
0: बिल्कुल सही आप कह रही हैं, और तभी से माहेश्वरी साड़ी की परंपरा आगे बढ़ती रही। माहेश्वरी साड़ी हस्तकरघे पर बहुत सावधानी और धैर्य से बुनी जाती है। इसमें सूती और रेशमी धागों का सुंदर संयोजन भी किया जाता है। पहले धागों की रंगाई होती है, फिर उन्हें करघे पर चढ़ाकर पारंपरिक तकनीक से बुनाई की जाती है। एक उत्कृष्ट माहेश्वरी साड़ी तैयार करने में कई दिन और जटिल डिजाइन होने पर कई सप्ताह तक का भी समय लग जाता है।
1: और ममता जी, ये साड़ियां ना वजन में बहुत ज्यादा हल्की और पहनने में आरामदायक होती है। सूती और रेशमी धागों का संतुलित मिश्रण होता है। दोनों ओर से समान दिखाई देने वाली रिवर्सिबल बॉर्डर इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और पल्लू पर सामान्यतः 5 समानांतर धारियां बनाई जाती है और गर्मियों में भी सहजता से पहनी जाती है। सादगी और शाही गरिमा का ये साड़ियां सुंदर मेल है।
0: और ये भी बता दें कि माहेश्वरी साड़ियों के डिजाइन महेश्वर किले, नर्मदा नदी की लहरों, मंदिरों की नक्काशी और प्रकृति से प्रेरित होते हैं। इनमें चटाई, लहरिया, हीरा, ईंट, चमेली, रूपमती, नर्मदा लहर वगैरह वगैरह पारंपरिक पैटर्न बहुत लोकप्रिय हैं।
1: और रंगों की अगर बात की जाए, रंगों में लाल, हरा, बैंगनी, नीला, काला, गुलाबी, सुनहरा, फिरोजी, मैरून, दोहरे रंगों का भी आकर्षक संयोजन देखने को मिलता है। और इसके कई सारे प्रकार हैं, जैसे नीम सिल्क, शुद्ध सिल्क, सूती माहेश्वरी, टिशू माहेश्वरी और कतान माहेश्वरी ये प्रसिद्ध है।
0: और चेक्स और स्ट्रिप डिजाइन वाली साड़ियां भी होती हैं। हर तरह की साड़ी का अपना एक अलग सौंदर्य है और उपयोग भी है। और महेश्वर के हजारों बुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को जीवित रखे हुए हैं। और सोनाली जी, एक बात और है कि इस जो साड़ी की ये परंपरा है, इससे कितने लोगों को रोजगार मुहैया होता है। जो बुनकर होते हैं अपनी कुशलता से जब साड़ी तैयार करते हैं तो उनकी आय का जरिया भी यही होता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर ये कार्य करते हैं और उनकी मेहनत, धैर्य और सृजनशीलता ही माहेश्वरी साड़ी की वास्तविक पहचान है। ये हस्तशिल्प न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराती बल्कि ये एक उद्योग के रूप में काम करती है। समाज और देश तक इसकी पहुंच है
1: जी। और माहेश्वरी साड़ी को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि इस साड़ी की विशिष्ट पहचान और गुणवत्ता माहेश्वर क्षेत्र से जुड़ी हुई है। GI टैग नकली उत्पादों पर रोक लगाने, बुनकरों के अधिकारों की रक्षा करने और इस पारंपरिक कला को वैश्विक पहचान दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये साड़ियां जो है देश ही नहीं विदेशों में बहुत लोकप्रिय है। विवाह, फिर धार्मिक समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरकारी आयोजन और औपचारिक अवसरों पर इसे विशेष पसंद किया जाता है। आधुनिक फैशन डिजाइनरों ने भी पारंपरिक डिजाइनों को नए रंगों और शैली के साथ प्रस्तुत कर इसकी लोकप्रियता को और भी बढ़ाया है।
0: माहेश्वरी साड़ी केवल रेशम और सूत का ताना बाना नहीं बल्कि नर्मदा की निर्मल धारा, महेश्वर के किले की भव्यता और बुनकरों के स्वप्नों से बुनी हुई भारतीय संस्कृति की अनुपम चादर है। इसे ओढ़ना, इसे पहनना मानो इतिहास, परंपरा और सौंदर्य को एक साथ आत्मसात करना है।
1: और माहेश्वरी साड़ी भारतीय हस्तकरघा परंपरा की एक अमूल्य धरोहर है। इसमें इतिहास की गरिमा, संस्कृति की सुगंध है और बुनकरों के श्रम का अनुपम सौंदर्य समाहित है। और ये साड़ी हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत से

0: जोड़ने के साथ साथ स्वदेशी हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने की प्रेरणा भी देती है।
1: और हम इस समय प्रेरणा पा रहे हैं ये गाना सुनवाने के लिए। सुनते हैं ये गाना, फिर और बातें करते हैं।

0: भाई सोनाली जी, एक बात बताइए कि लड़ाई झगड़े का असर तो मन पर होता है, पर आप बताइए कि जरा आप जब झगड़ कराती हैं, झगड़ लेती हैं अपने पतिदेव से, तो उसका असर कितनी देर तक रहता है?
1: उसका असर तो बहुत देर तक रहता है ममता जी, और भूलने के सिवाय कोई चारा नहीं होता है। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके साथ कैसे होता
0: मैं तो
1: है?
0: झगड़ती नहीं।
1: ऐसा नहीं हो सकता।
0: नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे कोई पति पत्नी नहीं होते कि जिनके बीच लड़ाई नहीं होती।
0: हम तो पति पत्नी के बीच तो झगड़ते ही हैं सोनाली जी। हमने भाई बहनों में बहुत झगड़े किए हैं, और परिवार में कौन ऐसा है जिससे हमारा झगड़ा नहीं हुआ है। लेकिन वो झगड़ा ना बहुत क्षण के लिए होता है, और थोड़ी देर बाद झगड़ा बिल्कुल खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं। फिर सोचते हैं कि झगड़ा किस बात पे हुआ था। जैसे जब दो बहनें हम झगड़ा करते थे, तो बाद में सोचते थे कि आखिर झगड़े का मुद्दा क्या था। घर वाले पूछते थे, बात किस बात, झगड़ा किससे शुरू कैसे हुआ। कभी बैठने की जगह को लेकर कि हम यहाँ बैठेंगे, कभी सोने को लेकर कि यहाँ हम सोएंगे और इस बिस्तर पे तुम, तो पहले हम जाएंगे या पहले हम ये किताब पहले हम पढ़ेंगे, ये मैगजीन पहले हम पढ़ेंगे, इस पर हमारे भाई बहनों में ज्यादा झगड़ा हुआ। और तो और, रेडियो सुनने के लिए कि कोई तेज आवाज में सुनना चाहता है, कोई धीमी
1: धीमी
0: आवाज
1: आवाज
0: में,
1: में।
0: तो उस पर बहुत जम के झगड़े हुए। तो ये जो छोटे छोटे झगड़े हैं ना, ये कभी कभी यादगार हो जाते हैं। ये प्रेमिल झगड़े हैं, स्नेहिल झगड़े।
1: ये नहीं, ये घर घर की कहानी होती है। पर भले ही झगड़े में मतभेद हो जाए, पर मनभेद नहीं होना चाहिए, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन हमारे श्रोताओं ने बहुत सफाई से, प्यार से इस बात को छुपा लिया है, अपनी बात उजागर नहीं की। अब हमने
1: डर
0: तो
1: गए
0: बात
1: होंगे ना।
0: की पत्नी से डांट खानी
1: हाँ,
0: पड़ेगी।
1: क्यों ना, आपने वहां लिख दिया, सबको पता चल गई घर की बात।
0: तो हमने तो इसलिए बता दिया, और आपने भी बता दी
1: हाँ,
0: कि हम तो झगड़ते हैं बाकायदा।
1: ये तो बहुत ही
0: तो
1: सामान्य सी बात है ना,
0: हाँ,
1: झगड़ा होना।
0: लेकिन झगड़े का असर जब घर पर होता है, बच्चों पर पड़ता है, तब फिर आपको सचेत हो जाना चाहिए। वहां पर झगड़े पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, लड़ाई झगड़ों का प्रभाव तो सभी पर पड़ता है, फिर बच्चों का हृदय तो बहुत कोमल होता है। ऐसे माहौल में वे हमेशा डरे और असुरक्षित महसूस करते हैं। घरेलू तनाव के कारण बच्चे डिप्रेशन, अत्यधिक चिंता और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। उनका मानसिक विकास रुक जाता है। ऐसे बच्चे बड़े होकर हिंसक और दूसरों के साथ चिड़चिड़ा व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि वे अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते।
1: एक हमारे साथी ने यह भी लिखा है ममता जी, कि अभिभावकों की लड़ाई में बच्चों पर असर। मतभेद तो सभी परिवार में चलते ही रहते, लेकिन मन का भेद कभी नहीं होना चाहिए। 31 तारीख को मेरी सहेली के बेटे बहू ने तलाक लिया। नन्ही सी बेटी 4 साल की है, उसे माता पिता दोनों चाहिए। वीडियो कॉल करती है और पापा के पास जाने की जिद भी करती है। माता पिता तो अपने निजी कारण से अलग हो ही गए। सोचती हूँ कि अब उस बच्चे की जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आएंगे और वे उन सबको किस तरह लगी। इन्हीं बात कितनी, यानी कह लीजिए कि भावनात्मक रूप से वो बच्ची जो है थोड़ी सी परेशान भी होगी, कि वो पापा के पास भी जाना चाहती है और मम्मी के पास भी रहना चाहती है,
0: बिल्कुल।
1: पर किसी कारणवश दो अलग अलग हो गए हैं। पर ये विचार करके ही हमें तकलीफ हो रही है, तो उस बच्ची पर क्या गुजर रही होगी ये हम सोच भी नहीं सकते।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और ये हमारी जो श्रोता हैं, इन्होंने बिल्कुल सटीक बात कही है। ऐसे अखबार में एक घटना हमने पढ़ी थी, जिसमें निचोड़ ये था उस घटना का, कि पति पत्नी ने तलाक लिया और कोर्ट से बाहर आ रहे हैं पति पत्नी, और छोटी बच्ची है, वो जिद कर रही है अपने माता पिता के पास जाने के लिए। पिता उसे रखने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसका लालन पालन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, उसकी मेरी नौकरी है। और माँ ये कह रही है कि इसका भरण पोषण मैं कैसे करूंगी, क्योंकि अभी तक उसको गुजारा भत्ता नहीं मिला है, और वो कहां से इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्च वहन करेगी। तो दोनों अलग अलग दिशाओं में खड़े हैं, और बच्ची जार जार आंसू रो रही है कि वो कहां जाए, उसे चाहिए माँ का साथ, पिता का साथ। तो ये जो स्थिति होती है, और दयनीय स्थिति है, ऐसी नौबत आने नहीं देना चाहिए। कई बार माता पिता के बीच जो टकराव होता है, अब हम सभी ये भी कहते हैं कि जब घर घर में तनाव ज्यादा हो जाए, लड़ाई झगड़े इस हद तक पहुंच जाए, तो अलग होना बेहतर होता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं, तो ये नहीं सोचते कि इस अलगाव का आने वाली पीढ़ी पर क्या असर होने वाला है। बच्चा कैसे एडजस्ट करेगा, बच्चा किसके पास जाना चाहिए? चाहेगा, क्यों वो माँ के पास अकेले रहना चाहेगा, क्यों वो पिता के पास अकेले रहना चाहेगा, उसे तो दोनों चाहिए ना, उसे माता पिता का घर भी चाहिए, प्यार भी चाहिए और माता पिता के घर मतलब नानी का घर भी चाहिए, दादी का घर भी चाहिए। तो दोनों जब छूटते हैं, दो में से कोई छूटता है तो बच्चे के कोमल मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि बाल मन बहुत कोमल होता है, माता पिता क्या किसी भी लड़ाई का असर उनके मन पर बहुत ज्यादा होता है। वही एक साथी लिखते हैं कि माता पिता के बीच होने वाले लगातार झगड़ों और मन मुटाव से बच्चों के कोमल मन पर बहुत गहरा और नकारात्मक असर पड़ता है। इससे बच्चों में असुरक्षा की भावना, मानसिक तनाव और पढ़ाई में एकाग्रता की कमी जैसी समस्याएं पैदा होने लगती है, मानसिक और भावनात्मक असर डालती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों पर ही पड़ता है, माता पिता पर भी इसका असर पड़ता है। हमारे परिवार में ऐसा हुआ है, ये तो अच्छा है कि परिवार के लोगों को संभालने से बहुत कुछ अनहोनी नहीं हो सका, पर एक परिवार का टूटना तो दुखद ही रहा।
0: बिल्कुल सही है, और कभी भी टूटना या तोड़ना अच्छा नहीं होता है, तो चीजों को टूटने से बचाना चाहिए। चीजें भी टूटती हैं तो भी बुरा ही लगता है, लेकिन कई बार स्थिति बहुत बिगड़ जाती है तब उस ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जब नियमित लगातार घर में हिंसा होने लगती है, शारीरिक हिंसा और पटक फोड़ होने लगता है, बर्तन पटकना, ये सब जब स्थिति जरूरत से आगे बढ़ जाती है तब फिर ऐसे में अलगाव बेहतर होता है। लेकिन यहाँ एक चीज और है, अब जमाना बदल गया है, अब हमारे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं इन चीजों की, लड़ाई झगड़ों के लिए काउंसलिंग होता है, पति पत्नी के अलग काउंसलिंग होती है और काउंसलर्स मतलब दोनों के बातों को सीक्रेट रखते हैं, और इस मामले में आपके पास सर्च करने के लिए जरिया है बहुत सारा, लोगों से पूछ सकते हैं, अखबार है, गूगल है, जहां से आप सर्च कर सकते हैं। तो झगड़ों को अवॉइड करें, चाहे उसके लिए आपको जो करना हो, काउंसलिंग करना हो, सलाह लेना हो, दोस्तों मित्रों या परिवार वालों से सलाह लेनी चाहिए, उनको बीच में लाना चाहिए ताकि आपके झगड़े कम हो, क्योंकि उसका असर निश्चित रूप से बच्चों पर पड़ता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता का घर बच्चों के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होती है, जब इस सुरक्षित जगह पर ही लगातार तनाव और कलह बनी रहे तो बच्चे का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि

0: जिन घर में रोज झगड़े होते हैं वहाँ के बच्चों में डिप्रेशन एंजाइटी की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अभिभावकों को ये समझना होगा कि बच्चों के सामने लड़ना उनके बचपन को छीनने जैसा है। यदि मतभेद हो भी तो उन्हें बच्चों के सामने लाकर बंद कमरे में शांति से सुलझाना चाहिए। और बच्चों की सिर्फ यही इतनी नहीं होती खामियां, आगे चलकर बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, एकांतवासी हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते, अंतर्मुखी हो जाते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा हिंसक भी हो जाते हैं। और सोनाली जी, हम आपको बताएं कि एक कपल के बारे में उन्होंने हमें बताया कि उनके बीच झगड़े होते थे तो जब झगड़े शुरू हो तो कमरा बंद कर लेते थे और म्यूजिक चला देते थे, रेडियो या कोई भी गाना, ताकि झगड़ने की आवाज बाहर ना जाए, और फिर जम के झगड़ा करके फिर बाहर आते थे। तो ये भी एक तरीका है झगड़ने का,
1: यानी बच्चों को पता ही नहीं चला कि अंदर क्या हुआ, अंदर तो डांस कर रहे थे या गाना गा रहे थे मम्मी पापा। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है ना, हम जो जैसा व्यवहार करते हैं बच्चे वैसे ही उसका अनुसरण करते हैं। तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि बच्चों के सामने बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े ना,
0: जब झगड़े की नौबत आए तो एक प्यारा सा गाना गुनगुना लेना चाहिए एक दूसरे के लिए, तो झगड़े टल तो जाते हैं। हाँ। सुनते हैं ये गाना।

तेरा मेरा साथ रहे, हमारा और श्रोताओं का साथ बना रहेगा। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर कुछ बातें और करते हैं इस संदर्भ में।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली।
1: ममता जी, आपने कहा था ना कि रेडियो धीमा सुनना है या तेज आवाज में सुनना है, इस पर से आपके बीच में लड़ाई होती थी।
0: हमारी बहनों, दो बहनों की बहुत लड़ाई होती थी।
1: तो ऐसे ही इसी तरह का एक कमेंट हमारी सखी ने लिखा, ये कहते कि रेडियो तेज सुनना, इस पर हमारा आज भी झगड़ा होता है, पर वो तो मस्ती में फिर हम रेडियो लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं और थोड़ी देर के लिए बात नहीं करते, फिर वही मस्ती वाली बात है। कितनी अच्छी बात है।
0: बिल्कुल। और ये भी होता था कि मतलब होता होगा हमारे श्रोताओं के बीच भी कि रेडियो तो तब उस समय एक ही रेडियो हुआ करता था।
1: हाँ,
0: अब तो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं जो कई कई सेट होते हैं घरों में, आप एक किचन में सुन लो, एक दूसरे कमरे में,
1: और मोबाइल से भी सुनते
0: हम
1: हैं,
0: मोबाइल पे भी सुन लेते हैं क्योंकि हमारे श्रोता बताते रहते हैं। हमारे तो एक श्रोता हैं जिन्होंने बताया था कि उनके पास 11 रेडियो सेट है और वो सब बड़े वाले रेडियो सेट। तो अभी शौक भी है, अगर रेडियो से इतना प्यार है तो लोग इस तरह से रेडियो रखते हैं। बहरहाल, बात लड़ाई झगड़े की चल रही थी और तकरार की चल रही थी। तो एक श्रोता ने लिखा है कि लेखिका शिवानी जी के उपन्यास में पढ़ी थी मैंने, गृहस्थी में लड़ाई झगड़ा होता है उतना ही हमारे प्यार की दीवार मजबूत होती है, मतलब जितनी लड़ाई हो उतनी दीवार मजबूत होती है, इसलिए पति से खूब लड़िए थोड़ी देर के लिए। वो कहते हैं ना कि मियां बीबी के झगड़ा दूध में पड़ी मलाई के समान होना चाहिए और मलाई तुरंत हट जानी चाहिए।
1: तो यानी लड़ाई झगड़ा तब होगा जब हम आपस में बातचीत करेंगे, हम अगर हम किसी से हेल्प लेंगे, हम किसी की मदद करेंगे तभी तो बातचीत करेंगे। यानी उस बातचीत के पीछे घर में जो है ना, पति पत्नी एक दूसरे की मदद भी करेंगे, तो फिर थोड़ी बहुत मनमुटाव होना बहुत स्वाभाविक सी बात है, पर ये मनमुटाव बहुत बड़ी लड़ाई में परिवर्तित ना हो जाए और इससे बच्चों पर बहुत बुरा असर ना पड़े, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। और एक साथी ने हमारे लिखा है कि लड़ाई किसी के भी बीच हो, चाहे वो बच्चे या अभिभावक हो या हमारे पड़ोसी हो, सभी पर बुरा असर पड़ता है। लगातार हो रहे झगड़े का मानसिक और भावनात्मक असर बच्चों पर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे जरूर होते हैं लेकिन ऐसे माहौल में मन के कच्चे बनने में जरा देर नहीं लगती। घर के माहौल को देख स्कूल में या बाहर किसी के साथ भी आक्रामक बनने की संभावना बढ़ जाती है, इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ने लगता है, उनका ग्रेड कम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए।
0: अब एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे बड़ी बात पति पत्नी को झगड़ना ही क्यों है। अब ये तो सवाल बहुत बड़ा है, क्यों झगड़ना है, मुद्दा क्या होता है?
1: जानबूझ के कोई लड़ता नहीं।
0: मुद्दे तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, घरेलू झगड़े तो बहुत ही छोटे छोटी बातों पर, कि तुमने ऐसा कहा, नहीं नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, अरे तुमने मुझे इस बात के लिए याद नहीं दिलाया, देखो ये तौलिया यहाँ पर रख दी, चादर गीली तौलिया रख दी,
1: सब्जी लाने के लिए बोला था तुमने एक ही तरह की सब्जियां लेके आ गए, सारी हरी वाली हरी पत्तेदार सब्जी लेके आ गए, अभी मुझे साफ करने के लिए टाइम नहीं है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, लड़ने के लिए कोई
0: खास बड़ा कारण नहीं होता, बहुत छोटे कारण होते हैं जिससे लड़ाई झगड़े होते हैं और पति पत्नी के बीच, या फिर कई बार जब व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है तो बड़े झगड़े भी होते हैं, तो दीवार खड़ी हो जाती है। मान लीजिए कई बार संबंधों की बात आती है, संबंधों में दरार जब पैदा होती है तो फिर उन झगड़ों को बचाना ही बेहतर होता है। और वो कहा भी जाता है ना कि बच्चों पर जो प्रभाव पड़ता है, बच्चे तो भावनात्मक रूप से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि कई बच्चों का स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है और पढ़ाई ऐसी उनकी चौपट हो जाती है कि वो फिर आगे उनका करियर ही नहीं बन पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
1: बस हमें सामंजस्य रखना चाहिए रिश्ते के बीच में, कि भाई बहुत ज्यादा उसे किसी भी चीज को ना बहुत अधिक हम महत्व देते हैं, कि वही बात ताने मारना, बार बार आलोचना करना।
0: वैसे एक बात बताइए सोनाली जी, जब आपके पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है तो आप क्या करती हैं, कैसे निपटारा करती हैं?
1: भाई मैं तो ऐसे करती हूँ, पैर में चप्पल पहनती हूँ, निकल जाती हूँ।
0: पति महोदय सुन रहे होंगे तो फिर मुझे लगता है कि ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ी देर बाद एक दूसरे से जिसने भी, जो भी सोचे कि हम समझौता कर ले, एक चाय का ऑफर, एक कॉफी का ऑफर, कुछ खाने के लिए, चाय पीनी है क्या,
1: मैं बना रहा हूँ तुम पियोगी क्या,
0: हाँ ये वाला, उसके बाद मुझे लगता है कि झगड़े खत्म हो जाते हैं। या कोई मीठी सी चीज रखी है घर में, तो मैं तो ये खाने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, दोनों को करना चाहिए, तो आपको भी खाना है, या फिर चलो यहाँ हम घूमना चाहते हैं, चलना है क्या तुम्हें मॉर्निंग, मतलब सुबह की सैर के लिए, शाम को घूमने, या चलो पिक्चर देखने चलते हैं।
1: अरे बहुत सारे हैं उसके, तो बहुत सारे की साड़ी ला दी, गिफ्ट ला दी, चलिए
0: हाँ,
1: ये साड़ी
0: ये
1: खरीदना
0: तुम्हारे
1: चाहती
0: लिए
1: हो,
0: ले आए,
1: कहाँ, या फिर क्षमा कर देना, सबसे जरूरी बात
0: लेकिन
1: है।
0: वहां पर ईगो आ जाता है ना, बीच में जो अहम अहम नाम
1: ये
0: की दीवार है
1: बहुत मोटी दीवार होती है।
0: वो ऐसा करने नहीं देती है। चाय बनाने तो जा रहे हैं, मन कर रहा है कि पूछ लेते हैं, नहीं नहीं इसने तो मुझे बहुत बुरा बुरा बोला था, नहीं पूछते हैं, छोड़ो
1: आज
0: हटाओ।
1: तो पूछूंगा ही नहीं, ये आज तो मैं
0: बिल्कुल।
1: पूछूंगी ही नहीं, आज तो कुछ भी हो जाए मैं तो बात
0: हाँ,
1: करने ही नहीं वाली।
0: तो सबसे जरूरी है ये जो अहम की दीवार है इसे तोड़ देना। और हमारे लिए इस समय क्या जरूरी है,
1: गाना सुनना।
0: सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को ये गाना।

0: माफ करिए सोनाली जी, जरा कमेंट्स जो पढ़ रही है ना, धीरे धीरे चुपके चुपके जरा जोर से पढ़ के सुनाइए।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है कि भैया,
0: अरे मैंने आपसे माफी मांगी, आपने कुछ कहा ही नहीं।
1: ममता जी
0: ये होता है माफी का असर कि इतनी खिलखिलाहट खिल जाती है
1: और इतने प्यारे अंदाज में कोई बोलेगा ना तो
0: दिल आ जाता है। क्या लिखा है?
1: एक हमारे सखी ने कहा है कि जो है ना, ये क्षमा करने का यानी ये कहने का कि भाई मैं चाय बनाऊं क्या, नहीं आपने जो बोला था तो इसमें ना मन में होता है कि ऐसा बोल दे कि चलो मैं चाय पर मन, वो जो दिल की बात है ना जुबा तक ही नहीं आती है।
0: हाँ भाई, अहम की दीवार जो होती है ना, तो उस अहम की दीवार को तोड़ना है और जब वो टूट जाएगा तो ये आसान हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आज हम लोगों की बातों से जितने झगड़े हुए होंगे सुलट के जाएंगे,
1: वो बिल्कुल सुलझने वाले हैं
0: शाम तक चाय के साथ।
1: कोई तो भी चाय बनाएगा, कोई पकौड़े बनाएगा, है ना।
0: हाँ बिल्कुल, और कोई चटनी भी बनाएगा। अभी चटनी की रेसिपी भी बतानी।
1: बहुत सारी रेसिपीज आई है हमारे, बहुत सारी सखियों ने अलग अलग तरह की रेसिपीज लिख कर भेजी जो हम सोच भी नहीं सकते कि इतने अच्छी अच्छी चटनियां भी बन सकती है। शब्दों की चटनी बहुत बनी है आज।
0: लेकिन क्षमा के बारे में हमारे श्रोताओं ने जो लिखा वो भी हम एक एक करके पहुंचा देते हैं उन तक। एक हमारी सखी है जो नियमित रूप से लिखती है, इन्होंने लिखा है कि क्षमा के धरातल पर दो व्यक्तित्व उभरते हैं, एक आप और एक सामने वाला। अक्सर हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, गलती दूसरे पक्ष की ही मानते हैं, इसलिए क्षमा नहीं करना चाहते। हो सकता है हमें भी समय-समय पर ग्लानी की अनुभूति होती हो, लेकिन हमारा अहंकार इस तथ्य को उजागर होने से रोक देता है। हमारे घाव हरे के हरे रहते हैं और इसका दर्द भी हम यदाकदा महसूस करते हैं। सामने वाला भी कभी कभी सोचता होगा कि हम क्षमा मांगे, ये द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। क्षमा इस द्वंद्व का निराकरण कर देती है, रिश्ता बच जाता है और दोनों फिर से मित्र बन जाते हैं।
1: क्या बात है। एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी, क्षमा मांगने और क्षमा करने में दोनों में ही सुख है। कभी गलती हो भी जाए तो क्षमा याचना में अपनी नम्रता ही रहती है और रिश्ते मजबूत रहते हैं। उससे भी बढ़कर है क्षमा कर देना। कभी कभी क्षमा करने में ज्यादा जोर आता है, क्षमा मांगने से ज्यादा हिम्मत चाहिए क्षमा करने के लिए, पर यकीनन क्षमा करने में स्वयं को बहुत हल्कापन हो जाता है, बड़े भारी मानसिक बोझ से हम बरी हो जाते हैं। हमने इसको खुद आजमाया है। क्या बात है।
0: कई बार क्षमा मांगकर दुख भी होता है, अगर गलत बात के लिए क्षमा मांगनी पड़े, जैसे कई बार जबरदस्ती आपको माफी मांगनी पड़ जाती है दबाव के चलते, परिवार में, समाज में, दफ्तर में या कहीं ऐसी सार्वजनिक स्थल पर आपको जबरदस्ती सॉरी कहना पड़ता है, तो वहाँ आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, आत्मसम्मान वहाँ
1: जाता है,
0: हाँ चोटिल होता है। तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए कि आप किसी के दबाव में कर माफी ना मांगे।
1: जी
0: बिल्कुल।
1: वैसे एक साथी ने लिखा है कि पहले मेरा स्वभाव था गलती चाहे हो ना हो मैं क्षमा मांग के बात को खत्म कर देना ही पसंद करती थी, पर जब देखा कि इसका भी गलत ही लोग फायदा उठा रहे हैं तब मैंने कुछ अपने को रिजर्व करा और थोड़ा सा चुप रहकर निग्लेक्ट करना मुझे बेहतर ऑप्शन लगा। ये भी ऑप्शन अच्छा है कि भाई आप थोड़ी सी दूरी बना ले तो फिर इन सब समस्याओं से थोड़ा बहुत छुटकारा तो हम पा सकते हैं।
0: अब क्षमा के जब हम टिप्पणियां पढ़ रहे हैं तो एक टिप्पणी हमें मिल गई है जो झगड़े वाली, जो क्षमा के साथ मैच हो रही है। इन्होंने लिखा है, हमारी सखी है, हमारा और हमारे घर में झगड़ा होता है कि साहब जी को टीवी देखना पसंद है और मुझे रेडियो सुनना, तो मैं कमरे में जब रेडियो

0: जाती हूँ और वो टीवी चलाते हैं, मैं तो मैं दूसरे रूम में फ़ोन लेकर चली जाती हूँ। उनका कहना है कि रहो भी कमरे में, फिर भी मैं टीवी तो चलने देती हूँ, म्यूट कर देती हूँ और अपना रेडियो चलता रहता है। हम लोग दोनों रेडियो सुनते हैं और वो टीवी देखते हैं।
1: आप कान पे हेडफोन लगा लीजिए ना।
0: हाँ, वो भी एक तरीका
1: ये ऑप्शन अच्छा है।
0: हाँ, और ये भी तरीका है कि अपनी मतलब कि रेडियो सुनवा देती हैं जबरदस्ती मतलब चित्र दिख रहा है और रेडियो सुना जा रहा है, ये भी एक तरीका है। और
1: एक साथी ने लिखा है, क्षमा बड़न को चाहिए, चोटन को उत्पात, क्षमा बड़प्पन की निशानी है, क्षमाशीलता कमजोरों का नहीं बलवानों का गुण है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण यह है कि आत्मा को शुद्ध करती है और रिश्तों में जहर घोलने वाली नकारात्मकता को समाप्त करती है।
0: तो इनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और भी तो
1: जी,
0: कुछ
1: एक साथी
0: टिप्पणी
1: लिखते हैं कि क्षमा धरातल पर दो व्यक्तित्व उभरते हैं, एक आप और एक सामने वाला। अक्सर हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, गलती दूसरे पक्ष की ही मानते हैं, इसलिए क्षमा नहीं करना चाहते। हो सकता है हमें भी समय समय पर ग्लानि की अनुभूति होती हो, किंतु हमारा अहंकार इस तथ्य को उजागर होने से रोक देता है। हमारे घाव हरे के हरे रहते हैं, उसका दर्द भी हम यदा कदा महसूस करते हैं। सामने वाला भी कभी कभी सोचता होगा कि हम क्षमा मांगे, ये द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। क्षमा इस द्वंद्व का निराकरण कर देती है, रिश्ता बच जाता है और दोनों फिर से मित्र बन जाते हैं।
0: क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि क्षमा मांगने में और क्षमा करने में दोनों में ही सुख है। कभी गलती हो भी जाए तो क्षमा याचना में अपनी नम्रता ही रहती है और रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। उससे भी बढ़कर है क्षमा कर देना। कभी कभी क्षमा करने में ज्यादा जोर आता है, क्षमा मांगने से ज्यादा हिम्मत चाहिए क्षमा करने के लिए। दरअसल क्षमा करने वाला ज्यादा बड़ा कहलाता है क्षमा मांगने वाले से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्थिति ऐसी बन जाती है कि जहां माफी के लायक वो काम नहीं होता है, तो वहां पर जिसने माफ किया वो बड़ा हो जाता है।
1: पर एक बात ये भी है ममता जी, कि जो रिश्ता होता है ना, कांच की तरह होता है कि अगर कांच चटक जाए तो फिर उसे जुड़ता नहीं। इस रिश्ते में दरार हमेशा के लिए रहती है, बस कोशिश हो कि उसे टूटने से बिखरने से बचा दिया जाए। एक साथी कहते हैं कि सिर्फ दो अक्षरों का शब्द है, लेकिन उस दो अक्षरों के शब्द में अपार शक्ति है। क्षमा, जिसे विरास से भूषणम कहा जाता है, किसी से क्षमा मांगना ये अपनी निर्बलता नहीं है। क्षमा स्वतंत्र रूप से उपचार करने वाली, सुख और शांति के द्वार खोलने वाली कुंजी है, जो सबसे बड़ा उपहार है।
0: क्या बात है। अब सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हुए सुनते हैं ये गाना।

0: सोनाली जी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी बात बहुत छोटी होती है और हम ये सोचते हैं कि वो माफी माफी मांगे, और वो सोचते हैं पहले हम बोले, पर किसी को बढ़कर बात कर तो लेनी चाहिए।
1: यही तो
0: और
1: बात आपने कही थी ममता जी, कि उसके बीच में अहंकार की मोटी सी दीवार होती है, पर बात कर वो दीवार को तोड़ देना चाहिए।
0: बिल्कुल। और एक पल आपका आत्मसम्मान चोटिल होता है, लेकिन जैसे ही झगड़े खत्म होते हैं एकदम नॉर्मल सा हो जाता है माहौल। तो इसलिए वो नॉर्मल कर लेने में ही भलाई है।
1: सभी की और
0: अगर
1: खासकर बच्चों की भलाई
0: हाँ,
1: है।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता के कई श्रोता आज लिख रहे हैं कि आपका ये जो डिस्कशन है प्रोग्राम में वो बहुत अच्छा है, और जो विषय आपने चुना है बहुत अच्छा है, ऐसा लिखा है।
1: और एक
0: और
1: साथी ने लिखा है कि हमारी भी लड़ाई खत्म हो गई है और अब
0: अच्छा,
1: हम चाय पीने वाले
0: क्या बात है भाई। ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। और सोनाली, हमारे हमारा तो उद्देश्य यही होता है कि हमारी बात दूर तक पहुंचे और देर तक असर करे। तो अगर किसी श्रोता ने ये लिखा है तो हम सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप में से किसी से झगड़ा हुआ है, अनबन हुई है, तो बस एक प्याला चाय बनाइए एक दूसरे के लिए,
1: मिटा
0: और
1: दीजिए
0: हाँ,
1: दूरी।
0: माफी मांगिए और
1: जी
0: खत्म कर दीजिए झगड़ा।
1: जी
0: और
1: एक अब चटनी की ओर बढ़े,
0: हाँ, चटनी भी बना सकते हैं।
1: अमरूद की चटनी। इसके लिए एक मध्यम आकार का अमरूद है पका हुआ, 1 कप धनिया, 2-3 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, स्वादानुसार सफेद नमक, 1 नींबू का रस और 2-3 चम्मच पानी। चटनी बनाने की विधि, अमरूद को अच्छे से धोकर पोंछ ले, इसके आगे पीछे का हिस्सा काट दे, अमरूद के छोटे छोटे टुकड़े करे और इसके कड़े बीज बाहर निकाल कर रख दे। मिक्सी के जार में कटे हुए अमरूद, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक डाले। अब इसमें जीरा पाउडर, काला नमक, सफेद नमक और नींबू का रस मिलाए और जरूरत के अनुसार 2-3 चम्मच पानी डालकर इसे दरदरा या अपनी पसंद अनुसार पीस ले और आपकी स्वादिष्ट और चटपटी अमरूद की चटनी तैयार है। इसे पराठे या भोजन के साथ परोसे।
0: क्या बात है भाई, श्रोता हमारे ये आजमाएंगे। अब एक चटनी की रेसिपी बहुत लंबी सी लिखी है तो कहने को चटनी जो बहुत छोटे छोटी मात्रा में परोसी जाती है, लेकिन रेसिपी बहुत लंबी है। देखते हैं क्या लिखा है। तिल और सूखे धने की चटनी। ये चटनी मेरी नानी बनाया करती थी। सामग्री इस तरह से है कि सफेद तिल आधा कप, साबुत धनिया 2 बड़े चम्मच, सूखी लाल मिर्च 4 से 5, लहसुन की कलियां और जीरा 1 छोटा चम्मच, कड़ी पत्ता और हींग 1 चुटकी, नमक स्वाद के अनुसार। बनाने की विधि, एक भारी कढ़ाई में तिल को धीमी आंच पर हल्का चटकने तक भून लें। इसे एक प्लेट में निकाल लें। उसी कढ़ाई में साबुत धनिया, जीरा, सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डालें। इन्हें धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक कि मसालों से अच्छी खुशबू ना आने लगे। इन्हें भी तिल वाली प्लेट में निकाल लें। अब लहसुन को सूखा भून लें। सारी सामग्री को ठंडा होने दें, फिर इसमें नमक, हींग डालकर दरदरा पीस लें। स्वादिष्ट चटनी तैयार है। ये काफी समय तक खराब नहीं होती और इसे आप बाजरे या मक्के की रोटी, थेपला या गरम पराठे के साथ खा सकते हैं।
1: एक सखी ने करौंदे की चटनी लिखकर भेजी है। ये करौंदे को काटकर उसके बीज निकाल दीजिए, उसमें लहसुन, हरी मिर्च डालकर पीस ले, ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल मिला दे, स्वादिष्ट चटनी तैयार होती है। और कदम्ब को काटकर सूखी भुनी लाल मिर्च, भुना जीरा, धनिया, काला नमक और थोड़ा गुड़ के साथ पीस ले, इसमें लहसुन नहीं डालते, आपकी इच्छा हो तो आप डाल दें। ये खट्टी मीठी चटनी रोटी और पराठे के साथ अब बहुत अच्छी लगती है। करौंदी की चटनी में आप धनिया की पत्ती डाल सकते हैं, पर बरसात के दिनों में हम पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग कम करते हैं। करौंदा लहसुन मिर्च के साथ थोड़ा मोटा मोटा पीसा जाता है। ज्यादातर लोग इसे पकाए हुए भुट्टे के साथ खाते हैं। और एक ने लिखा है कि चटनी बोलते ही मुंह में पानी आ जाता है। चटनी खाने में आजकल प्रमुख है। चटनी कई प्रकार की बनाई जाती है। टमाटर की, हरी मिर्च, लहसुन की चटनी बहुत स्वादिष्ट बनती है। वैसे चटनी पुदीने की बनती है। धनिया, हरी मिर्च, थोड़ी अदरक, टमाटर, लहसुन सबको मिलाकर बारीक काटकर मिक्सी में पीस लिए, चटनी तैयार होगी। गरम गरम पराठे या रोटी के साथ खाओ तो बहुत मजा आएगा। सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जब भी सब्जी से बोर हो जाओ, घर में चटनी बना लो, मजा आ जाएगा।
0: क्या बात है। तो आज सोनाली जी, जो आज ये तकरार वाली चाय बनेगी उसके साथ थोड़े पकौड़े और ये चटनी,
1: चटनी हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना
1: क्या बात है।
0: जो
1: फिर तो ये ऐसी तकरार बार बार होनी चाहिए
0: कि उसके बाद चाय पकौड़े मिले
1: मिल जाए।
0: तो चलिए अब प्रोग्राम का आखिरी गाना सुनते हैं।
2: आपको हमारी पसंद लौट आई।

0: भाई इस प्रोग्राम से जाने का मन कभी नहीं करता है, और लगता है कि प्रोग्राम का समय कम पड़ गया है,
1: मुझे लगता है
0: और
1: श्रोताओं का भी यही हाल होगा, है ना
0: उन्हीं की बात पे कह रही हूँ
1: जी।
0: क्योंकि वही लिख रहे हैं कि जल्दी से बीत जाता है ये 1 घंटा। हमारे लिए भी ऐसा ही एहसास होता है, लेकिन अब बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: भिलाई में पला बढ़ा, औद्योगिक नगर है छत्तीसगढ़ का, पहले वो मध्य प्रदेश था। तो भिलाई में इंडो रशिया कोलैबोरेशन में ये स्टील प्लांट बना था, तो रूस और भारत के लोग वहां रहते थे शहर में।
1: बिल्कुल।
0: तो हमें बहुत सारी इंटरनेशनल कॉमिक्स भी मिल जाती थी, तो मार्वल, डीसी, एस्ट्रिक्स, ओबेलिक्स, टिनटिन, ये भी उपलब्ध थी हमें पढ़ने के लिए। बहुत लोग नहीं पढ़ते थे, लेकिन मुझे इनका भी चस्का उसी समय से लग गया था।
1: बल्कि रशियन किताबें भी जो लोक कथाएं में हिंदी अनुवाद आया करते थे वो भी मौजूद रहे होंगे।
0: हाँ, यूक्रेनी लोक कथाएं,
1: बिल्कुल,
0: रूसी लोक कथाएं, गोरकी की कहानियां,
1: बल्कि मुल्ला नसरुद्दीन,
0: मुल्ला नसरुद्दीन था एक बहुत अच्छा
1: राधुका प्रकाशन।
0: हाँ, राधुका प्रकाशन, और उसमें कैरेक्टर होता था नाजानू। हाँ, नाजानू की कहानियां, और एक मैगजीन आती थी मीशा। तो मीशा में एक कैरेक्टर होता था, उसका नाम मेरे दिमाग से उतर गया, वो दलिया खाता था और उसको ताकत आ जाती थी। तो ऑलमोस्ट पोपाई के जैसा था, मगर काफी मजेदार कैरेक्टर्स थे ये। तो इनकी भी उपलब्धता थी, और उस समय तो मेरे ख्याल से पूरे भारत में थी।
1: क्या बात
0: तो
1: है,
0: मतलब मीशा तो मेरे ख्याल से सबने पढ़ी है, मेरी
1: सबने पढ़ी। बिल्कुल जी, जी। तो इस दौर को याद करते हुए एक गाना सुनते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।
0: जी बिल्कुल।
1: तो कौन सा गाना होना चाहिए?
0: बचपन के दिन भी क्या दिन थे।
1: क्या बात है, सुनते हैं।
2: बच्चे

0: बचपन के दिनों की सैर कर रहे हैं और इतनी तरह की कॉमिक्स की हम बात करें, जब ये कॉमिक्स आप पढ़ते थे आलोक, तो कल्पनाओं की वो कौन सी दुनिया थी जिनमें आप सैर करते थे और क्या अपने लिए कुछ सोचते थे इन कॉमिक्स से जुड़ा हुआ?
1: तो इसकी एक बड़ी मजेदार कहानी है। हमारे घर में टीवी नहीं था। हमारे घर में पहला टीवी जब आया तो मैं 26 साल का था।
0: मतलब बहुत ही लेट आया।
1: बहुत ही लेट आया। तो ऐसा नहीं है कि टीवी पता नहीं था, टीवी पड़ोस में था, हम देख लेते थे वहां जाके। तो मेरे ख्याल से 1985 का साल था, टीवी पे संडे की फिल्म आ रही थी, कब क्यों और कहां। उसमें प्राण साहब का एक खतरनाक रोल था जिसमें वो मुर्दे का रोल करते हैं।

0: उनकी आंखें बल्ज होके बाहर निकली हुई हैं। तो वो देख के मैं बहुत बुरी तरह से डर गया।
1: अरे
0: हाँ, उसके बाद प्राण नाम से मुझे दहशत हो गई।
1: लेकिन ये प्राण नाम दो जगह चलता था।
0: हाँ, ये मैं वहीं आ रहा हूँ। तो मेरे पिताजी को ये लगा कि अगर मुझे मेरे मन से प्राण नाम की दहशत हटानी है तो उनको ये बताना पड़ेगा कि जो चाचा चौधरी है, मेरा सबसे प्रिय किरदार, उसके सर्जक भी प्राण हैं, उनका नाम भी प्राण है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो PRA-01 लिखा होता है कॉमिक्स के ऊपर में, वो प्राण है।
1: हाँ।
0: और जो चाचा चौधरी बनाते हैं उनका नाम भी प्राण है। मैं 4 या 5 साल का रहूंगा उस समय, तो मेरे दिमाग में ऐसा एक खांचा बन गया कि वो जो प्राण है फिल्मों में वही चाचा चौधरी भी बनाते हैं।
1: वाह,
0: बहुत
1: वाह,
0: लंबे
1: वाह।
0: समय तक, करीब 1-1.5 साल तक। और बाद में वो फोटो भी, जो प्राण की फोटो आती थी कॉमिक्स के पीछे, प्राण का जन्म कसूर ब्रैकेट में अब पाकिस्तान में,
1: अब पाकिस्तान
0: हाँ, में हुआ था। तो वो जो पूरा, तो मैं उस तरह से कॉमिक्स पढ़ता था, मैं वहां से पढ़ता था, प्रकाशक मुद्रक तक पढ़ता था मैं कॉमिक्स।
1: बिल्कुल।
0: तो वो उनका जो एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आता था 85 के आसपास, वो थोड़ा सा प्राण, जो अभिनेता प्राण है, उनके जैसा ही दिखता था वो।
1: नहीं,
0: मुझे मुझे ऐसा लगता था।
1: ये तो जैसा आप देख रहे हो वैसा,
0: हाँ,
1: दिख
0: जैसा
1: रहा
0: वो,
1: है।
0: हाँ, जैसी जिसकी नजर।
1: हाँ।
0: तो मुझे ऐसा लगता था कि ये वही है। दूसरी चीज, मेरे पिताजी ने मेरे जन्म के पहले कार्टूनिंग के कोर्सेज किए थे, वो कार्टून्स बनाते थे।
1: ओके।
0: हाँ, पारिवारिक व्यापार के क्षेत्र में वो आ गए थे, लेकिन उनका दिल जो था वो कार्टूनिंग में था। तो मुझे ये जरूर पता था कि ये कार्टून्स हैं और इनको कोई बनाता है। और ये जो प्राण वाली कहानी हुई, उसके बाद एक आदत बैठ गई कि अगर मैं कोई कॉमिक्स पढ़ रहा हूं तो मैं जानना चाहता था इसको लिखा किसने हैं, इसको बनाया किसने हैं। कल्पना की उड़ान जरूर थी, लेकिन मुझे ये भी पता था कि इन्हें कोई बनाते हैं, लोग बनाते हैं।
1: तो उस
0: और
1: दौर
0: ये
1: के
0: एक
1: कौन कौन
0: प्रोफेशन
1: से
0: है।
1: नामों से आप परिचित हुए?
0: अब बहुत सारे, असल में तो जैसे मुझे 5-6 साल की उम्र से पता था कि ली फॉक फैंटम लिखते हैं और साइबरी उसको ड्रॉ करते हैं, हालांकि उनसे पहले विल्सन मैकॉय और बहुत सारे लोग थे,
1: पहले ही
0: लेकिन
1: बॉक्स
0: उनका
1: में
0: था।
1: नाम आता था
0: हाँ,
1: ली
0: पहले
1: फॉक।
0: बॉक्स में नाम आता था ली फॉक साइबरी करके, फॉक एंड बेरी लिखा होता था। तो मुझे पता था ये फैंटम भी लिखते हैं, ये मैंड्रेक भी लिखते हैं। फ्लैश गॉर्डन जो है वो एलेक्स रेमंड बनाते हैं। रिप कर्बी बहुत सारा एलेक्स रेमंड बनाते हैं। बहादुर जो है वो आबिद सुरती लिखते हैं, गोविंद ब्राह्मणिया ड्रॉ करते हैं। ये उस 5-6 साल की उम्र में मैंने ये नाम रट लिए थे, क्योंकि मेरे लिए ये भी जरूरी था, चाहे जितनी भी किताबें उस समय आ रही हों, एक सीमा रहती थी इन किताबों की ना, आपको 3 मिलेगी 4 मिलेगी 5 मिलेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वो लोग हैं जिनका काम आपको बहुत पसंद है। तो बजाय एक किरदार को फॉलो करने के, आप उनके क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं, कि उनके जो सर्जक हैं, कि अगर मुझे आबिद सुरती का काम पसंद है तो मैं आबिद सुरती का और काम ढूंढूंगा, अगर मुझे प्राण का काम पसंद है तो फिर शायद मैं चाचा चौधरी बिल्लू पिंग की खत्म करने के बाद जाब और दाबू भी पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पर्टिकुलर एक क्वालिटी आ रही है उनके काम की। तो ये उस समय की ट्रेनिंग है मेरे ख्याल से, जो अभी तक है। मैं अभी भी कोई कैरेक्टर को फॉलो नहीं करता, मैं जनरली क्रिएटर फॉलो करता हूं।
1: बहुत बढ़िया बात है। तो कॉमिक्स की ये दुनिया आपको क्या करियर की किसी दुनिया की तरफ ले जा रही थी, या तब कुछ और सोच रखा था जब मम्मी पापा पूछते थे कि बड़े होके क्या बनना है?
0: नहीं, अच्छी चीज़ ये थी कि हमसे कभी पूछा ही नहीं गया बड़े होके क्या बनना है, तो वो प्रेशर था नहीं सर पे। दूसरी चीज़ ये थी कि मैं कार्टून्स बनाने लग गया था बहुत बहुत यंग एज में, 4-5 साल का रहूंगा। तो मैंने, जैसे सारे बच्चे करते हैं, तो ऐसा कुछ बहुत महान ड्राइंग्स नहीं कर रहा था मैं, लेकिन मुझे शेहाब की ड्राइंग्स बहुत पसंद आती थी। शेहाब साहब छोटू लंबू किया करते थे, और मुझे लगता है कि वो अपने समय की नहीं, अभी के भी सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में
1: बिल्कुल।
0: एक हैं। तो शेहाब साहब की जो कला थी वो मुझे बहुत पसंद थी, उनको मैं काफी कॉपी करता था। कार्टूनिस्ट प्राण को कॉपी करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत कम लाइंस में वो बहुत सारी चीजें निकाल लेते थे। तो मुझे ये था कि मैं कार्टून्स बनाना चाहता हूं, लेकिन ये प्रोफेशन बनेगा नहीं बनेगा उसकी कोई क्लैरिटी ऐसी थी नहीं मेरे मन में। कार्टून मैं स्वांता सुखाए अपने लिए बना रहा था। एक और चीज ये थी कि पिताजी का काम ऐसा था कि हमारे ट्रांसफर्स होते थे बहुत, एक शहर से दूसरे शहर, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता था कि हर बार नई स्कूल होगी, नई क्लासेस होंगी, नए सहपाठी होंगे, अब फिर से नए दोस्त बनाने हैं, फिर से नए दोस्त बनाने हैं, हर 2-3 साल में स्कूल बदल रहा है, फिर से नए दोस्त बनाने हैं। तो अपने आप में वो काफी प्रेशर वाला काम होता है उस उम्र में। और उस उम्र में अगर मैं अब वापस पलट के देखता हूं, तो ये जो कॉमिक्स के किरदार थे ये मेरे परमानेंट दोस्त थे, ये शहर दर शहर मेरे साथ चलते आ रहे थे। तो इनके साथ मेरा जो जुड़ाव था वो किसी असल दोस्त से ज्यादा हो चुका था, जब तक मैं अपने टीनेज में या किशोर वय जिसको बोलते हैं वहां पहुंचा। तो ये एक चीज थी जिससे मेरा जो अटैचमेंट बोलते हैं वो कॉमिक्स से बढ़ा दिया मेरे ख्याल।

0: 10 या 11 साल का रहूंगा तब मुझे लगा कि मैं कार्टून्स बना सकता हूँ और मैं ये भेज सकता हूँ छपने के लिए। तो वो
1: अच्छा।
0: कॉन्फिडेंस रैंडमली आ गया था, और घर में प्रेशर था पढ़ाई को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर भी, लेकिन ये मनाही नहीं थी कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो बस उसका फायदा मिला, मैंने कार्टून्स बना के भेजना शुरू किया, संपादक के खेत सहित सारे कार्टून्स वापस आने शुरू हुए।
1: लिफाफा भेजते थे आप?
0: लिफाफा भेजता था, वो तो भेजना पड़ता था, जवाबी लिफाफा टिकट लगा हुआ, वो तो नियम ही था।
1: जी।
0: तो शुरू में कार्टून्स नहीं बनाए थे, शुरू में मैंने सोचा कि मैं बहुत आलेख वगैरह लिखूंगा, मतलब वो उस उम्र में ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज्ञान है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ, तो वो
1: कुछ भी कर
0: मेरे,
1: सकते
0: आप कुछ
1: हैं।
0: भी कर सकते हैं, और वो रहना चाहिए, मुझे लगता है वो बाल सुलभ कॉन्फिडेंस सब में पूरी उम्र रहना चाहिए, ता उम्र रहना चाहिए। तो मुझे अभी भी याद है, पहला जो मैंने लेख लिखा था वो था डोडो पर, और वो मैंने भेजा था सुमन सौरभ में, और
1: अच्छा।
0: सुमन सौरभ से वो रिजेक्ट होके आ गया था, लेकिन मुझे उसमें कोई ऐसे संकोच शर्म नहीं आई थी। मैंने ठीक है, दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, चौथा लिखेंगे, क्योंकि खोने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास, तो आप लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं। फिर मुझे लगा कि शायद मैं ड्राइंग्स बेहतर करता हूँ लिखने से। तो हमारे शहर में एक कार्टून मैगजीन निकला करती थी, अभी भी निकलती है, 30 साल से निकल रही है वो मैगजीन, कार्टून वॉच नाम है उसका। तो कार्टून वॉच मेरे हाथ लगी किसी के दोस्त के घर पे, और मैंने उसमें कार्टून्स देखे, तो वही मैं कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अलग तरीके का था, तो वो देख के लगा ये अगर ये छप रहे हैं तो मैं तो छप ही जाऊंगा। हाँ, और वो जो संपादक थे त्रिम्बक शर्मा, उनको मैं त्रिम्बक भैया बोलता हूँ अब, तो त्रिम्बक भैया असल में सबको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ना, निहायत ही घटिया कार्टून हो तो छोड़ देंगे, नहीं तो छप जाते थे कार्टून्स। तो मुझे लगा ये तो मैं कर सकता हूँ, एंड बनाया मैंने कार्टून्स, दो तीन बनाए और दोनों तीनों छप गए पहली बार में। मतलब कार्टूनिंग में मेरा रिजेक्शन नहीं हुआ, कार्टूनिंग में मुझे लगा कि यहाँ तो
1: सही है।
0: चंडीगढ़ गए, पहले ही दिन पहले ही कार्टून्स गए, और 15 दिन में छप के आ गए, किताब आ गई घर पे, उस किताब को लेके मैं घूमता रहा कई महीनों तक, लेकिन हर महीने उसके बाद मैं नियम से कार्टून बनाता रहा। तो इस तरीके से कार्टूनिंग के करियर की शुरुआत हुई मेरी जब मैं शायद 13 या 14 साल का था,
1: और वो भी भिलाई में।
0: भिलाई में। तो उसके थोड़े से पैसे मिलते थे, 100 रुपये, चाहे जितने भी कार्टून हो, तो ऐसा नहीं था कि पर कार्टून मिलेगा, क्योंकि मैगजीन भी छोटी थी, तो 100 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होती थी, 100 रुपये में आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे। हाँ, तो और कॉमिक्स तो खरीद ही सकते थे, अब मतलब कॉमिक्स के लिए घर में बोलना या यहाँ वहां भागना
1: ये
0: दौड़ना
1: हर्डल
0: नहीं करना
1: खत्म
0: पड़ता था।
1: थी।
0: हाँ, मुझे याद है 56 रुपये का सेट आता था, तो दो सेट
1: हाँ,
0: में
1: और वो
0: खरीद
1: बड़ा महंगा
0: सकता
1: लगता था
0: था,
1: उस
0: छप्पन
1: वक्त।
0: रुपये बहुत महंगा था, लेकिन मुझे 100 रुपये मिल रहा था महीने का, तो मैं दो सेट खरीद सकता था महीने का। तो इस तरीके से मेरी पहली लाइब्रेरी की शुरुआत हुई कॉमिक्स की।
1: क्या बात है। लाइब्रेरी एज इन दूसरों को किराए से
0: हाँ
1: देने
0: हाँ हाँ
1: लगे?
0: मैं हमेशा, मेरा कभी ये विचार था ही नहीं कि मैं किराए पे कॉमिक्स पढ़ूंगा, मुझे मेरी
1: हाँ,
0: कॉमिक्स मेरे पास चाहिए थी।
1: अच्छा।
0: तो इसलिए मैं मतलब एक समय था 2-3 साल जब किराए से पढ़ी किताबें, मगर मुझे लगता था इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो मेरी होनी चाहिए, जितनी
1: अपनी
0: बड़ी,
1: होनी
0: हाँ,
1: चाहिए।
0: एक दशमेश लाइब्रेरी करके हमारे शहर में लाइब्रेरी हुआ करती थी भिलाई में, गोल मार्केट में, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। और मेरा लाइफ का, मेरे मतलब जीवन का एक ही लक्ष्य था कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो चाहिए, इससे छोटी नहीं चलेगी।
1: हाँ।
0: तो फिर मैंने मतलब दशमेश तो बंद हो गई, और हमने अपनी लाइब्रेरी शुरू की और बहुत अच्छी तरह से रन की, मतलब वो हमारे छत्तीसगढ़ में उसको बोलते हैं अंचल, हमारे अंचल की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक थी जो हम लोग रन कर रहे थे,
1: कितने साल चलाई? अच्छा।
0: वो हमने चलाई करीब 4 साल।
1: और किताबें सब वापस आई सही सलामत?
0: हाँ, मतलब देखिए जब ये व्यवसाय बन जाता है ना, तो थोड़ा नफा नुकसान तो होता है, तो नफा नुकसान होता था, लोग चुरा के ले जाते थे, फिर हमको ढूंढने जाते थे उनके मोहल्ले में, तो वो एक अपने आप में एक
1: अलग कहानी
0: अलग
1: है।
0: कहानियां हैं, वो एक अलग, मेरे ख्याल से वो हमारा मालगुड़ी डेज
1: बहुत
0: है।
1: सही बात है, बहुत मजेदार बात। लेकिन क्या कार्टूनिंग की कोई बाकायदा ट्रेनिंग लेने की जरूरत महसूस हुई या ऐसा कोई मौका आया?
0: अब लगता है कि ले लेनी चाहिए थी, लेकिन तब कॉन्फिडेंस उस जगह पे था कि कुछ भी रिजेक्ट नहीं हो रहा था, जो बना रहे हैं सब छप रहा है, और फिर उन मैगजीन्स में भी छपने लगा जो मैगजीन्स में पढ़ रहा था, तो मेरा काम चंपक में आने लग गया, बाल भारती में आने लग गया, बालहंस में आने लग गया, उस समय की करीब करीब हर मैगजीन में काम आने लग गया था और पैसे भी मिलते थे उसके।
1: हाँ,
0: तो मजे की बात ये थी कि पैसे भी आ रहे हैं और वो ठीक ठाक पैसे थे। मतलब उस समय में एक 15-16 साल का लड़का अगर 500 रुपए भी महीने के बना ले रहा है,
1: बहुत ज्यादा रकम,
0: बहुत
1: तो
0: बड़ी रकम हो जाती है वो।

0: तो वो पैसे भी आ रहे हैं, आपकी एक लाइब्रेरी भी चल रही है ठीक ठाक, और आप
1: हाँ
0: कार्टून्स भी बना रहे हैं, तो फिर
1: तो
0: पढ़ाई कौन
1: सेट था
0: करेगा,
1: मामला।
0: पढ़ाई कौन
1: अच्छा
0: करेगा।
1: फिर
0: फिर मैं 9वीं में फेल हो गया।
1: अरे बाप
0: हाँ,
1: मतलब ये तो बम गिर गया।
0: तबाह हो गया मैं।
1: अच्छा
0: तो 9वीं में मैं फेल हो गया, मुझे समझ
1: इसके
0: में
1: आगे
0: नहीं
1: की
0: आया।
1: कहानी सुनेंगे, आप ब्रेक लगाते हैं, एक गाना सुनते हैं, कहां तक ये मन
0: सोचना
1: को अंधेरे
0: पड़ेगा,
1: चलेंगे
0: चलिए कहाँ।

0: नवी में आप फेल हो गए।
1: नवी में मैं फेल हो गया।
0: ये इसकी उम्मीद थी कि नहीं थी?
1: उम्मीद तो कोई नहीं रखता है।
0: हाँ, कि फेल हो जाऊंगा।
1: फेल हो जाऊंगा
0: मतलब पढ़े नहीं थे कुछ?
1: नहीं, मुझे समझ में नहीं आया पूरा नवी कैसे गया, मुझे नहीं पता है।
0: वैसे नवी होता भी फिसलदार मैदानी है।
1: नवी को थोड़ा सा टफ बनाया जाता है ताकि बच्चा दसवीं में अच्छे स्कोर करे और स्कूल का एक स्कोर बना रहे, तो उसको स्कूल का स्कोर बनाने के लिए मुझे लगता है नवी को टफ बना दिया।
0: नहीं, और ये समझाना कि भाई मिडिल स्कूल पीछे छूट गया, होश में आ जाओ।
1: नहीं, वो तो आप हाफ पेंट से फुल पेंट पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा था कि मिडिल स्कूल तक हाफ पेंट था, फिर फुल पेंट आया, तो फुल पेंट आई मतलब आप जिम्मेदार हो जाओ। मैं नहीं हो पाया मेरे ख्याल से। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत थी ना, मतलब आप एक तरफ लाइब्रेरी भी चल रही है, आप कार्टून्स भी बना रहे हो, स्कूल में टीचर्स भी आपको एक अलग निगाह से देखते हैं कि इसके तो कार्टून्स छप रहे हैं। तब तक मेरे लेख वगैरह भी छपने लग गए थे। तो मतलब क्लास नाइन्थ का एक लड़का है जिसका हर महीने
0: कहीं ना कहीं
1: कुछ छप रहा है, तो वो अपने आप में एक अंदर से तो अपने आप में एक रॉकस्टार वाली फीलिंग रहती है कि हम ही हमें।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: भले बाकी सारी चीजों में आप शून्य हो, लेकिन एक वो जगह है जहां आमतौर पर कोई पहुंचता नहीं है, वहां जाके आपने अपना आसन जमा रखा है, तो डांट पड़ती थी।

0: स्कूल में कि ये सब करते रहोगे, तुम्हारे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, ये है वो है। मुझे लगा था निकल जाएगा, नहीं निकला। अब नहीं निकला तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मज़ेदार बात मैं बताऊंगा आपको कि जो 9वीं में मैं फेल हुआ, उस दिन तो मौत थी मेरी। मतलब लाइफ का, जीवन का सबसे बड़ा फेलियर है वो, क्योंकि आपके सारे दोस्त आपसे 1 साल आगे चले गए। अब आपके साथ बच्चे पढ़ेंगे, उस समय में तो ये लगता है 1 साल छोटा तो बच्चा ही है, अभी तो
1: बिल्कुल
0: 5 साल छोटे भी बराबर के लगते हैं। लेकिन वो था, मोहल्ले वालों को आप क्या जवाब देंगे? सबको पता है आप 9th में थे, पूरे मोहल्ले को अगर पता चला कि आप 10वीं नहीं गए, आप वापस 9th रिपीट कर रहे हो, तो क्या होगा? एक तरीके से सामूहिक बहिष्कार हो जाता है जो बच्चा फेल होता है उसका, उसमें बच्चे की गलती है नहीं है।
1: हमारे यहां वो तो सोचा ही नहीं जाता, वो
0: हाँ,
1: जो एक्सेप्टेंस
0: स्टिग्मा
1: वाली
0: जिसको
1: बात
0: बोलते हैं ना,
1: है।
0: तो स्टिग्मा आ जाता है वो, तो स्टिग्मा तो आ गया था। और आप अपनी नजरों में तो गिर ही चुके हो, तो एक आप अपनी नजरों में गिरे हो, एक आप अपने पेरेंट्स की नजर में गिरे हो, फिर छोटे भाई बहन है उनकी नजरों में भी गिरे हो, क्योंकि अभी तक आप रोल मॉडल थे और आपने मतलब काफी कुछ अच्छा किया हुआ है अभी तक, आप उनकी नजर में भी गिर गए हैं। मोहल्ले वालों को किसको सच बताएं किसको ना बताएं, पता तो सबको चलेगा, क्योंकि उसमें से कुछ बच्चे हमारे स्कूल में भी हैं। अब उनसे झूठ बोलेंगे आप या सच बोलेंगे? आप फेलियर को एक्सेप्ट कैसे करते हैं? फिर आपके जो दोस्त हैं वो 1 क्लास आगे चले गए हैं, तो आप उनके साथ स्कूल भी नहीं जाते
1: नजरें
0: हैं,
1: कैसे मिलाएंगे?
0: नजरें कैसे मिलाएंगे? उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि एक फेल होने वाले बच्चे के साथ उनके बच्चे खेलें। तो ये जो पूरा एक हमारे समाज ने इस पूरी चीज को जैसा स्टिग्मा बना दिया है, उससे मैं गुजरा पूरे 1 साल।
1: पूरे 1 साल।
0: देखिए, बाकी लोग तो बढ़ जाते हैं, लेकिन आप वो अपने अंदर लेके चल रहे होते हैं वो
1: बिल्कुल।
0: फेलियर को, और वो फेलियर ताजा ही है
1: घर
0: ना।
1: घर
0: एक साल
1: वालों का एटीट्यूड क्या था?
0: कुछ खास ऐसा, मतलब पिताजी ने बोला कि अब चलो मेरे साथ काम भी करना पड़ेगा शुरू तुमको, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई में तो लग नहीं रहा कि तुम्हारा कुछ होने वाला है। तो मैंने उनके साथ काम करना भी शुरू किया।
1: क्या काम था वो?
0: मेरे फादर चॉकलेट्स वगैरह ये करते थे, होलसेल में चॉकलेट्स किराने दुकान वालों को सप्लाई करते थे। तो फिर उन्होंने पूरा भिलाई शहर का जो सप्लाई है मुझे दे दिया। भिलाई शहर मतलब ऐसा बहुत शहर नहीं, कुछ 25-30 दुकानें जो हम रेगुलरली जहाँ सामान सप्लाई किया करते थे, तो वो मुझे दे दिया उन्होंने कि ये तुम करोगे अब। तो मैंने वो शुरू किया। लाइब्रेरी फिर भी चल रही थी, कार्टून फिर भी बन रहे थे।
1: अच्छा, ये
0: हाँ,
1: सब चल रहा था।
0: और ये सब चल रहा था। उसके साथ में मैंने फादर को हेल्प करना भी शुरू किया। वो भी मेरे ख्याल से मैं 48 साल के तो हो गए थे तब तक मेरे फादर, तो वो शुरू किया मैंने। मुझे ये लगा कि मुझे ये भी समझ में आया कि बिजनेस कैसे होता है। मैं आमतौर पे लोगों से बात करने में कतराता था, तो मेरी जो शर्म थी जो मोहल्ले में और लोगों के बीच थी, वो खत्म होने लगी, वो झिझक हटने लगी मेरी। मुझे पता नहीं अगर इसको हम स्ट्रीट स्मार्ट बोल सकते हैं या नहीं, मगर थोड़ा सा एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस बूस्ट आया मेरे अंदर उससे। बहुत बाद में, करीब मेरे ख्याल से उसके 30 साल बाद, मैंने एक शो लिखा, और उस शो को लिखते समय मैंने जो लीड कैरेक्टर है उसका, शो का, उसको क्लास 9th में फेल करवाया। इसलिए नहीं कि ये रेवेंज था, इसलिए कि मुझे बहुत मन था कि मैं दुनिया को बताऊं कि जब एक
1: फेल्योर
0: बच्चा फेल
1: का
0: होता है
1: उस
0: तो वो
1: बच्चे के ऊपर
0: अपने
1: क्या
0: अपने
1: असर पड़ता
0: आप में, वो एक मौत से गुजर रहा होता है,
1: है?
0: उसके
1: करेक्ट।
0: ऊपर नई चीजें मत ला दो, क्योंकि वो खुद अपनी नजरों में गिरा हुआ है। तो उसकी जितनी हेल्प कर सको कर दो, हेल्प नहीं कर सकते तो नया गड्ढा मत खोदो उसके लिए। तो ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए।
1: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: पता चला कि होते हैं,
1: होते हैं, होते हैं।
0: हाँ, जहां वो कहानी बेस्ड है वहां तो होते हैं। तो फिर उस चीज को लेके बहुत सारी चीजें जो मैंने झेली थी,
1: वो आ गई
0: बहुत
1: वहां।
0: सारी चीजें जो लोगों ने मुझे बोली थी, वो सब कुछ वहां मैंने उस कहानी में कहा। और बहुत सारे लोग उसके बाद, बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल्स आए, एक दो पॉडकास्ट में पॉडकास्टर्स ने मुझे बताया कि वो भी उस दौर से गुजरे हैं,
1: गुजरे
0: एक एक
1: हैं।
0: दो दो बार फेल होना या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगातार फेल हो जाना 3 बार, वो सब उस स्टिग्मा से बहुत लोग गुजरे हैं। उसको सही वॉइस नहीं मिली है अभी तक, वो निकल के नहीं आया, कैथारसिस नहीं हुई है लोगों की। तो मुझे लगा ठीक है, मेरी कैथारसिस के बहाने मतलब और बहुत सारे लोगों की कैथारसिस हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अनुभव हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कड़वे हैं, अगर अंदर रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक जगह
1: एक्सप्रेस
0: पाके
1: होते हैं।
0: निकल जाते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो इस पूरे दौर से निकले आप कैसे और फिर आगे चीजें कैसे बढ़ी?
0: ये बहुत मतलब फिक्शनल साउंड करेगा, लेकिन हम लोगों के वहां उसको सेकंड ईयर बोलते थे फेल होने के बाद।
1: अच्छा,
0: नाइन्थ सेकंड ईयर।
1: ये एक तरह की राहत,
0: ये एक तरीके की हाँ राहत थी।
1: हाँ,
0: तो मेरा जो सेकंड ईयर था उसमें पता नहीं कैसे मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बन के भी निकला, जबकि मैं पढ़ भी नहीं रहा था।
1: अच्छा,
0: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब अब खोने के लिए कुछ था ही नहीं ना,
1: हाँ बिल्कुल,
0: तो घबराहट नहीं थी।
1: हाँ
0: तो अब मैं ज्यादा खुल के मजे कर रहा था क्लास में,
1: हाँ
0: क्योंकि ये सब मेरे से छोटे थे मेरे क्लासमेट्स, दिमाग में तो यही था। तो अब मुझे जो घबराहट थी, जो बेचैनी थी पिछले साल अपने साथ के लोगों के साथ में, वो बेचैनी पता नहीं कहीं गायब हो गई। तो जैसे मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में सबसे कम मार्क्स आए थे मेरे सेकेंड ईयर में, इन तीनों में मैंने टॉप किया। और हमारे यहाँ 7-8 सेक्शंस होते थे, तो केमिस्ट्री की टीचर का तो मैं मतलब बहुत ऐसा प्रिय छात्र बन गया था, क्योंकि मोल थ्योरी ये वो पता नहीं कैसे मुझे समझ में आने लगी चीजें। तो नाइन्थ और टेंथ यूं करके निकल गए, मतलब छुटकी बजाते नाइन्थ और टेंथ निकल गए। मैं रैंक्स अच्छे ला रहा था, मेरी लाइब्रेरी बहुत बड़ी हो गई थी इस बीच में।
1: अच्छा,
0: हाँ, मेरी लाइब्रेरी हमारे शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक थी। मैं मतलब 14 साल के बाद जब मैं भिलाई एक बार गया था, मेरी लाइब्रेरी की सील लगी हुई किताबें मैंने रद्दी में खरीद के वापस लाए थे। इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि 14 साल तक वो किताबें सर्कुलेट हो रही
1: होती
0: थी
1: रही,
0: उसी शहर में।
1: क्या बात
0: हाँ,
1: है।
0: तो ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, मेरी लाइब्रेरी बड़ी हो गई। मेरे फादर का काम मैंने बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था, तो वो एक और बेशर्मी भी आ गई थी, चमड़ी मोटी हो गई ना आपकी, आप जितना सुन सकते थे, जितना झेल सकते थे आपने झेल लिया था। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत मददगार साबित हुआ मेरे लिए, कि वो फेलियर उस समय के लिए तो मौत थी, मगर अगले 1-8 साल के अंदर अंदर मुझे लगता है कि मेरे चरित्र निर्माण में बहुत बड़ा हाथ था उस चीज का। तो
1: एक
0: वो
1: नए सिरे से बनने की तैयारी थी।
0: जी, वो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रतिशोध की ज्वाला भी थी।
1: बिल्कुल। ये कॉमिक्स वाला वर्ड आ गया।
0: सुपर कमांडो दो
1: की
0: पहली किताब, हाँ, प्रतिशोध की ज्वाला थी वो। और वो सब मेरे लिए काम कर गई बेसिकली। तो
1: बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहां एक गाना सुनते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: मुंबई कैसे आ गए आप लोग?
1: हाँ, ये बहुत लंबी कहानी है।
0: अच्छा,
1: तो मैं कॉमिक्स में काम करना चाहता था, लेकिन जब तक मैं 20 का हुआ तब तक भारत में कॉमिक्स खत्म हो गई थी।
0: हाँ, धीरे धीरे धीरे धीरे करके, और
1: मेरी मेरी पीढ़ी, मेरे ख्याल
0: उनका
1: से कॉमिक्स पढ़ने वाली आखिरी पीढ़ी थी। अभी लोग आ रहे हैं वापस, लेकिन उस समय तो सब खत्म हो गया था। जब मैं 20 का हुआ और मैंने मेरा कॉलेज खत्म किया, कॉलेज भी मैंने मजबूरी में खत्म किया था, मेरा मन नहीं था कॉलेज करने का। मतलब 12वीं आते आते तक मुझे समझ में आ गया था कि ये शिक्षा प्रणाली मेरे लिए तो नहीं बनी है। बहुत लोगों के लिए बनी है, मैं शिक्षा प्रणाली के खिलाफ नहीं हूँ, मगर मेरे लिए नहीं थी वो। क्योंकि अब मैं जब स्कूल के बारे में सोचता हूँ तो मुझे उनकी कहानियां याद है, मुझे कुछ भी याद नहीं उन्होंने मुझे क्या पढ़ाया। तो वो शिक्षा प्रणाली से मेरा थोड़ा सा, मैं उखड़ चुका था 12वीं करते करते तक, और मुझे लगा कि मैं खुद पढ़ सकता हूँ। मेरे लिए जब तक मैं कोई चीज़ को खुद करके ना देखूँ, मेरे लिए सीखना बहुत मुश्किल है। तो मैं घर आके किताबों को पढ़ के खुद से अपनी थ्योरीज बना के किया करता था चीज़ें। कार्टून्स छप रहे थे लेकिन मुझे मज़ा आना बंद हो गया था कार्टून्स में। मुझे एक अवार्ड मिला था आर के लक्ष्मण से।
0: अच्छा,
1: तो हाँ, ये उसी स्कूल और कॉलेज के बीच में दो बार मिले थे नेशनल अवार्ड्स। तो उसमें एक बार आर के लक्ष्मण ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा प्लान बी क्या है। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा प्लान बी क्या होता है। तो उन्होंने बोला अगर कार्टूनिंग में नहीं हुआ तो क्या करोगे। तब तक मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है, तब तक मुझे पता था मुझे यही करना है। तो ये बड़ा कठिन सवाल मेरे सामने है, और वही आर के लक्ष्मण अगर फेंक रहे हैं वो सवाल आप पे, तो आपको उसको सीरियसली लेना पड़ेगा।
0: बिल्कुल
1: तो बहुत गंभीरता से मैंने इस पे विचार किया। मुझे ये समझ में आया कि पॉलिटिकल कार्टून्स की उम्र नहीं होती, सुबह छपता है शाम तक बासी हो जाता है, खत्म हो जाता है। और मेरे बहुत सारे दोस्त ये कर रहे थे, मैं ये करना चाहता था। मैं अखबारों के ऑफिसेज जाता था, कार्टून्स देख के आता था, कभी छप जाते थे कभी नहीं छपते थे, कभी कोई अखबार वाला कॉल कर देता था कि इतना 3 कॉलम बचा हुआ है कुछ ड्रॉ करके दे दे जल्दी से,
0: अरे
1: तो 3 कॉलम का फटाफट कुछ ड्रॉ करके दिया, उन्होंने 50-60 रुपए दे दिए। तो ये चल रहा था, इसको बहुत लोग संघर्ष बोलते हैं, हमारे लिए बहुत मजे का काम था। क्योंकि एक ही सड़क पे सारे अखबारों के ऑफिसेज होते थे, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, कहीं ना कहीं छप जाता था।
0: वाह,
1: और कुछ दोस्त थे जो परमानेंट जॉब में लग गए थे इन अखबारों में, वो अभी भी उन अखबारों के साथ काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे पत्रकारिता करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं, मेरा मन नहीं लगता था, मेरा मन उन शहरों में नहीं लग रहा था जहां मैं बड़ा हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहां से निकलना होगा और मैं कार्टून नहीं बनाऊंगा। मैं बहुत क्लियर था इस मामले को लेकर कि मैं पॉलिटिकल कार्टून्स नहीं करूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे उससे कोई दिक्कत है, इसलिए कि 1999 सन 2000 का साल था वो, और देश की हवा बड़ी विचित्र सी थी। दूसरी चीज ये थी कि मैंने देखा कार्टूनिस्ट प्रांत की एक लेगेसी है, अनुपम सिन्हा की एक लेगेसी है, ली फॉक की एक लेगेसी है, ये मेरे हीरोज हैं। तो अगर मैं लेगेसी नहीं क्रिएट कर रहा हूं तो मुझे आर के लक्ष्मण बनना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे 50 साल कार्टून बनाने पड़ेंगे। और मुझे ऐसा, इतना पेशेंस मेरे में नहीं था, अभी भी नहीं है। हाँ, मतलब मैं लगातार काम कर सकता हूं, लेकिन वो एक शिद्दत के साथ एक ही चीज करते रहना और फिर उसमें किसी दिन जाके एक लेगेसी क्रिएट करना, वो बहुत दूर की कौड़ी है। तो ये बड़ा गलत भी साउंड कर सकता है, मगर मुझे मेरे काम पे बहुत गर्व है। जो भी मैं कुछ करता हूं उससे अटैच भी हूं और डिटैच भी हूं। अटैच हूं जब तक मैं उसको बना रहा हूं, डिटैच हूं द मोमेंट ये मेरे हाथ से मैंने बाहर भेज दिया, उसके बाद मैं उसको पलट के भी नहीं देखूंगा। लेकिन जब तक मैं उसके साथ हूं तब तक मैं उसके साथ पूरी तरह से हूं। तो वो पॉलिटिकल कार्टूनिंग में पॉसिबल नहीं था, वो सोशल कार्टूनिंग में पॉसिबल नहीं था, कॉमिक्स बंद हो चुकी थी। तो उस दौर में मुझे ऐसा लगा एनिमेशन मेरे लिए सबसे मुफीद करियर होगा, और एनिमेशन कुछ नहीं पता था मुझे उसके बारे में। तो मुझे ऐसा लगा कि एनिमेशन सीखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घर से पैसे मांग नहीं सकता हूँ। तो अब मुझे कहीं जाके स्टूडियो में किसी जगह पे जाके नौकरी मांगनी पड़ेगी, और वहां जाके मैं एनिमेशन सीख भी लूंगा और मैं एक एनिमेटर बन भी जाऊंगा। तब तो मुझे नहीं पता था कि एनिमेटर कौन होता है, इन बिटवीनर कौन होता है, डायरेक्टर कोई और होता है। मेरे दिमाग में मैं डायरेक्टर था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसको डायरेक्टर बोलते हैं। तो उसकी भी बड़ी लंबी सी कहानी है कि मुझे नहीं पता था लाइट बॉक्स क्या होता है। तो मैं जेरोक्स मशीन वाले के वहां खड़े होकर दुकान में मैं लगातार जेरोक्स करके उसको मूवमेंट देता था ड्रॉइंग्स को। अदनान सामी का एक गाना आया था लिफ्ट करा दे, लिफ्ट करा दे पूरा एनिमेट किया था जेरोक्स कर करके।
0: अरे
1: वो कहीं मेरे पास रखा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वो उसके इजी तरीके भी हैं। मुझे डिफिकल्ट तरीके पता थे क्योंकि मैं आर्टिकल्स पढ़े थे। तो मैं उस तरीके से ही काम कर रहा था। तो एनिमेशन के लिए भी बहुत हाथ पैर मारे मैंने। भारत में एनिमेशन का कोई
0: सिस्टमैटिक मामला नहीं था,
1: स्कोप ही नहीं था, कुछ था ही नहीं। एक फिल्म बन रही थी जो मैं क्लास नाइन्थ में था तब से बन रही थी, वो अभी तक बनी नहीं थी, उसका नाम भागमती है। भागमती फाइनली उन्होंने लाइव एक्शन और एनिमेशन मिला के कुछ बना दिया था बाद में। मैं तब मेरे ख्याल से ऑलरेडी एनिमेशन में आ गया था तब तक। तो इस तरीके की चीजें हो रही थी और जो कोर्सेज थे वो बहुत महंगे थे, तो मैं वो नहीं कर सकता था वो कोर्सेज। तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले तो मुझे मेरा गांव छोड़ना पड़ेगा। तब तक हम उड़ीसा शिफ्ट हो चुके थे भिलाई से, और ये बहुत छोटा सा गांव था, इसका नाम आताबिरा है। मतलब वहां पर आलोक शर्मा आताबिरा लिख के चिट्ठी डालिए मेरे घर आ जाती थी, इतना छोटा गाँव था वो। तो उसके लिए उस गाँव से निकलना बहुत जरूरी था। उस बीच में गौतम कॉमिक्स नाम की कंपनी शुरू हुई थी जिसने मार्वल और डीसी पब्लिश करना शुरू किया था। तो मैंने अपना बहुत सारा काम उनको भेजा। उन्होंने बोला ये सब कचरा है मेरे पिछले 6-7-8 साल की मेहनत को। उन्होंने बोला ये क्वालिटी हमें चाहिए नहीं। तो अब मेरे मन में ये हुआ कि इनको, मतलब अभी तक तो मैं तुरम खां था, जो भी भेज रहा था सब छप रहा था, ये अचानक एक कौन आ गया है जो मुझे बोल रहा है कि सारा खराब है, हमको ये कुछ चाहिए ही नहीं। तो मैं उनको मिलने गया बैंगलोर, वहां मैंने जाके टेस्ट दिए। तो वो भी एक चीज है कि मुझे टेस्ट वगैरह देने से कोई गुरेज नहीं है, मैं अभी भी देने को तैयार होता हूँ। सैंपल कोई मांगे मुझसे मैं अभी भी सैंपल करने को रेडी रहता हूँ। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट आपका ऑडिशन है ही हमारा।
0: बिल्कुल,
1: बड़े बड़े एक्टर्स अगर माइंड नहीं करते ऑडिशन देना, तो मतलब मुझे क्यों इस बात से गुरेज हो कि मुझे ऑडिशन देना पड़ रहा है। तो मैंने वहां जाके फिर फाइनली ऑडिशन दिया। बहुत खींचतान के बाद मेरा काम उनको समझ में आया, उन्होंने मुझे बैंगलोर बुला लिया और मेरा पहला पब्लिश्ड काम मार्वल कॉमिक्स में आया।
0: वाह वाह वाह।
1: तो पहली कॉमिक्स जो मैंने की वो मार्वल कॉमिक्स थी। मैं अनक्रेडिटेड था, मैं इंकर था स्पाइडरमैन इंडिया में। तो स्पाइडरमैन इंडिया अब तो बहुत बड़ा कैरेक्टर बन गया है, 2004 में वो नया नया कैरेक्टर आया था, अब तो स्पाइडरवर्स वगैरह आ गया है। तो वहां से मेरी कॉमिक्स की जर्नी शुरू हुई, लेकिन तब तक मैं समझ गया था कि कॉमिक्स बहुत मेहनत का काम है। मैं लिखना ज्यादा पसंद करूंगा ड्रॉ करने से, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे चित्र बनाते हैं। उस जगह तो मेरे ख्याल से भारत के और विश्व के सबसे बेहतरीन कलाकार स्टूडियो में थे, तो उनके बीच में जाके 12th प्लेयर बनने का कोई फायदा नहीं है, तो क्यों ना मैं लिखना शुरू करूं। और मैं उनको कहानियां सुनाता था, क्योंकि मुझे कहानियों का शौक बचपन से रहा है।

0: तो उनको कहानियां पसंद आने लगी। उन्होंने कहा कि तू लिखना क्यों नहीं शुरू करता है, तू लिखेगा तो हम चाहेंगे कि उन कहानियों पर हम लोग ड्राइंग करें। वहां से थोड़ा सा लिखने की तरफ मेरा रुझान बढ़ना शुरू हुआ। तब तक मैं
1: मार्वल
0: लिखता
1: के
0: नहीं था,
1: साथ।
0: गॉथम कॉमिक्स था, गॉथम मार्वल के साथ कर रहा था ये चीजें। तो ये आर्टिस्ट ने मुझे बोला, लेकिन तब तक ये हो गया था कि मैं ब्रेक चाहता था उस चीज से, ड्राइंग से। क्योंकि क्या होता है कि किसी चीज को आप बहुत प्यार करते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी डेडलाइंस हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे उसमें से ना जो उसका जो आनंद है ना, वो पूरा रस
1: निकल जाता
0: निकल
1: है।
0: जाता है। अब वो काम बन जाता है कि
1: यस
0: आप बैंक में हैं या कॉमिक्स बना रहे हैं, दोनों एक काम हो गया है। तो जब ये हो गया है तो, और बैंक का काम इनफैक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप बहुत लोगों से मिलते हैं, ये तो बहुत एकाकी काम है। तो ये बड़ा अजीब सा माहौल हो गया था कि जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी, जिसमें मैंने 6-7 साल अपने दिए थे, उसमें से आनंद थोड़ा थोड़ा निकलने लगा था। और मुझे उस बीच में जापानी कॉमिक्स मांगा, जिनको बोलते हैं मांगा, मुझे बहुत पसंद आने लगी। तो मैंने चाणक्य पे एक मांगा बनाना शुरू किया खुद से, और मुझे बोला गया कि मांगा का भारत में कोई भविष्य नहीं है, तो इसको तुम बंद कर दो। तो मैंने कुछ 30-40 पन्ने उसके बना लिए थे, मैंने उसको बंद किया। मैं एक रेडियो स्टेशन गया, FM रेडियो तब नए नए आए थे, जीवन का मेरा पहला अनुभव था कि मैं एक रेडियो स्टेशन के अंदर गया। और उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया, मैंने जस्ट एक मेल भेजी थी उनको कि मैं आना चाहता हूँ, ऑडिशन देना चाहता हूँ। उन्होंने ऑडिशन में बुला लिया। मैंने जीवन में उससे पहले कभी कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा था। मैंने वहां जाके विभत्स ऑडिशन दिया, एक बहुत ही भयानक, मैं अभी भी सोचता हूँ तो मैं सिहर जाता हूँ। मैं एक किरण श्रीधर नाम के RJ हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो मैं अभी भी मतलब कभी कभी किरण को नतमस्तक हो जाता हूँ कि उसने मुझे आधे घंटे कैसे झेला था उस स्टूडियो के अंदर। मैं तो नहीं झेल सकता था अगर कोई मेरे जैसी हरकतें करता वहां पे। तो मैंने बहुत खराब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज्यादा खराब। मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की। तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं 9वीं में फेल हुआ था उसके बाद, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे। थोड़े सुकून वाले गाने होते थे क्योंकि
1: बिल्कुल
0: रात में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था, क्योंकि तपता हुआ दिन निकाला है सारे
1: बिल्कुल
0: स्कूल से लेके पड़ोस तक। तो वहां मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया, जहां मैं आप सबको सुनता था। कमल शर्मा थे, आप हैं और बहुत सारे उद्घोषक। मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मजेदार था। मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में, तो मैं बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता था। अमीन सयानी साहब को मैं मिमिक किया करता था। तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा, फिर जैसे कार्टूनिंग में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन खराब कर दिया, खराब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था, तो जो RJ थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इंफॉर्मेशन गई एकदम फट करके ऑन एयर। और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं ये मन्ना दे की आवाज है। तो उनके जो क्रेडिट्स थे उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था। तो उन्होंने बोला पक्का, मैंने कहा आप चेक कर लीजिए, इंटरनेट था, उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया। और उसके बाद वो मन्ना दे पर कार्यक्रम था और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया, वो प्रोग्राम ठीक हो गया। और उनको लगा कि ये तो ठीक है, आया था
1: काम
0: ऑडिशन
1: का
0: देने
1: आदमी
0: लेकिन
1: है।
0: आदमी काम का है। लेकिन वो 6 महीने तक मुझे हायर नहीं कर सकते थे ऑडिशन में, अगर आपने गड़बड़ कर दी, उनका कुछ तो रूल था, वो 6 महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। तो मैंने 6 महीने से उंगलियों पे गिने, 6 महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिने। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि 6 महीने ऐसे नहीं होता है, 6 महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। मैंने 6 महीने डेट टू डेट लगा के
1: और दिन बढ़ गए इसके बाद।
0: नहीं नहीं कम हुए, क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो 6 महीना अगर काउंट करेंगे तो वो 7 महीना हो जाता है, सैटरडे संडे हटा के, नेशनल हॉलीडेज हटा के।

0: हमसे, मैं वेट कर रहा था रेडियो स्टेशन से कॉल आएगी, लेकिन ये किसी एड एजेंसी से कॉल थी। वो रेडियो से किसी एड एजेंसी को चला गया था मेरा, मेरी कॉमिक। तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। वो
1: वाह।
0: फ्रीलांस निपटाते निपटाते तक मुझे रेडियो से कॉल आया कि अभी 6 महीने पूरे हुए तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो का मिला, और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर मैंने रेडियो शोज भी किए। फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है, वो
1: करेक्ट।
0: हाँ चमड़ी मोटी हो गई। तो रेडियो शोज भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ, वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी झिझक भी चली गई माइक के
1: बिल्कुल।
0: सामने की। तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा।
1: यहां एक गाना सुनते हैं
0: लिफ्ट करा दे।
1: अदनान समी गया बस।

0: ये था इस कार्यक्रम का पहला भाग। इसका दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले।
1: आज के

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा। सत्र के सफल, सुचारू और गरिमापूर्ण संचालन को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। बैठक में सदन की कार्यवाही लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप संचालित करने पर चर्चा हुई तथा सभी दलों से सकारात्मक सहयोग का आग्रह किया गया। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में जेपीएससी में कथित अनियमितता को लेकर छात्र संगठनों ने आज प्रदर्शन किया। राजधानी के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 12वें दिन भी विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी रहा। आंदोलन को धार देने के लिए कई अभ्यर्थी और विद्यार्थी भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज लोकभवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुलाकात की। इस दौरान श्री सोरेन ने राज्यपाल को जेपीएससी और जेएसएससी की नियुक्ति प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं तथा इसके विरोध में रांची में चल रहे छात्र आंदोलन से अवगत कराया। इस मौके पर श्री सोरेन ने राज्यपाल को आश्वस्त किया कि सरकार छात्रों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में आज मानव श्रृंखला बनाकर आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन के तहत संघ के सभी सदस्य कल काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। संघ की मांगों में कैडर रिव्यू और प्रोन्नति का मुद्दा शामिल है। और हजारीबाग में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने 30 नए चार पहिया वाहन उपलब्ध कराए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि इन वाहनों के जरिए सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहयोग मिलेगा। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाश में जैसे हरा रंग घुल मिल गया है। नदी लयबद्ध होकर गुनगुना रही है। आज चिनार के पेड़ पर बैठी चिड़िया महीन महीन आवाज में कुछ नई बोली बोल रही है। पहाड़ों पर जब गिरी बर्फ तो मन उठ चला बर्फीली वादियों में। वादी में गूंजा प्यार का तराना लहरों में जैसे जादुई संगीत है।
1: छलके तेरी आंखों से

तुम्हारी तरह और कोई प्यारा नहीं लगता। तुम्हारे होने से जिंदगी के तमाम लम्हे खुशगवार हो जाते हैं। तुम्हारे इंतजार में बगीचे में गिरी पत्तियों को हथेली पर लेकर हवा में उड़ाया है कई बार। खिलते फूलों को देखकर मुस्कुराकर अपनी हथेली पर लिखा है तुम्हारा नाम। गिरी हुई पत्तियों और फूलों को बटोरकर बनाया है गलीचा और उस पर बैठकर गिनी है घड़ियां तुम्हारे आने की।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। दिल ढूंढता है वो लाल फूल जिसे देखकर तुम्हारा चेहरा लाल हो जाए। दिल वो नगमा ढूंढता है जो तुम्हारे लिए गाया जा सके। दिल ढूंढता है वो नदी जिस पर प्यार की कश्ती तिरा दो। दिल ढूंढता है संसार का वो कोना जहां सिर्फ तुम्हारा साथ हो। दिल ढूंढता है वो लम्हा जो सिर्फ तुम्हारे साथ बीते।

0: जहां तक है धरती आसमान का विस्तार, वहां तक प्यार का है आलम। प्यार का रंग बड़ा चटक होता है, मुश्किल है इस रंग को फीका करना। मन के झील में ठहर गया एक चेहरा, तब से पानी की सतह पर प्रेम का गुलाबी रंग झिलमिला रहा है लगातार।
1: मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता।

0: जीवन की इस आपाधापी में बस थोड़ी मोहलत मिल जाए जरा से प्यार के लिए, थोड़ा सा साथ मिल जाए, थोड़ी सी हो गुफ्तगू, थोड़ी सी हो नोक झोंक, थोड़ी हो छेड़छाड़, थोड़ी सी खिलाए मुस्कान, दरकार है मुस्कान की, दरकार है प्यार की, दरकार है फुर्सत के लम्हात की।
1: चला

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर।

सायंकालीन सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर में यानी शाम 5:35 से आप सुनेंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। शाम 6:02 पर ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम होगा खेती बारी। चर्चा होगी खेतों को परती ना छोड़ें किसान। साथ ही चर्चा में सुनिएगा मधुमक्खी पालन आय का उत्तम स्रोत। भेंट वार्ता आप सुनेंगे नवजात बछड़ों की देखभाल पर। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, आदर्श ग्राम पदाधिकारी पलामू। भेंट करता हैं संतोष कुमार। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे ग्रामीण सभा कार्यक्रम, ग्रामीण कृषक महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम। चर्चा होगी कुटीर उद्योग में महिलाओं का योगदान पर। साथ ही चर्चा में सुनिएगा स्वयं सहायता समूह से ग्रामीण महिलाओं का विकास। भेंट वार्ता आप सुनेंगे पशुओं के स्वास्थ्य में हरे चारे का महत्व। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, आदर्श ग्राम पदाधिकारी पलामू। भेंट करता हैं संतोष कुमार।

शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार 7:10 पर जिले में आजकल प्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 7:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग का आनंद आप लेंगे। शाम 7:45 पर स्वास्थ्य कार्यक्रम कल्याणी के अंतर्गत आज आप सुनेंगे भेंटवार्ता विवाह की सही उम्र। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर निर्मला सिंह रांची, भेंटकर्ता हैं श्री संजीव कुमार लाल। शाम 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से हम प्रस्तुत करेंगे। 8:45 पर हिंदी में समाचार, 9 बजे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 पर उर्दू खबरें आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

रात 9:30 पर हम पुनः शामिल होंगे विविध भारती की प्रसारण सेवा में आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। रात 10:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा को हम पेश करेंगे। रात 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारी ये सभा समाप्त होगी हमेशा की तरह रात 11:10 पर। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन।

0: घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली तमाम महिला बहनों को रागिनी कुमारी का प्यार भरा नमस्कार
1: और साथ ही प्रतिमा वर्मा का भी प्यार भरा नमस्कार।
0: स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम घर आंगन में।
1: बहनों, कल हिरोशिमा दिवस है और हिरोशिमा दिवस हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा नगर पर गिराए गए परमाणु बम की भयानक घटना और उससे हुई तबाही की याद दिलाता है। क्यों इसका महत्व है? यह दिन दुनिया भर में शांति और अहिंसा का संदेश फैलाता है। यह परमाणु युद्ध के बुरे प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करता है और इस दिन लोग बमबारी में जान गंवाने वाले मासूम नागरिकों को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था
0: और इस भीषण विस्फोट में एक ही झटके में लगभग बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी और इसके बुरे प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक देखे गए। बमबारी में अपनी जान गंवाने वाले मासूम नागरिकों और सैनिकों की याद में प्रार्थना सभाएं भी की जाती हैं। यह दिन दुनिया को परमाणु युद्ध के भयानक परिणामों से आगाह करता है। इसका मुख्य उद्देश्य देशों को परमाणु हथियारों को खत्म करने और वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है।

0: बहनों, इस प्यारे से गीत के बाद आइए आपको सुनवाते हैं वार्ता स्वरोजगार अपनाएं और सशक्त बने। सचमुच बहनों, स्वरोजगार महिलाओं के सशक्तिकरण का एक प्रभावी माध्यम है। यह उन्हें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और समाज में सम्मानजनक पहचान दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपना स्वयं का काम या व्यवसाय करके आजीविका कमाना, न कि किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के लिए नौकरी करना। हमारी बहनें कई सारे काम कर सकती हैं। आइए इसी विषय पर आपको वार्ता सुनवाते हैं। वार्ताकार है स्वाति सहाय।
1: तमाम श्रोताओं को आपकी बहन स्वाति सहाय की तरफ से नमस्कार। आज का मेरा विषय है स्वरोजगार अपनाएं और सशक्त बने, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त कदम। आज का युग परिवर्तन, अवसर और आत्मनिर्भरता का युग है, जहां हर व्यक्ति अपनी पहचान स्वयं गढ़ने की क्षमता रखता है। इस बदलते परिदृश्य में महिलाओं की भागीदारी केवल आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य बन चुकी है। भारत जैसे विकासशील देशों में महिलाओं की भूमिका केवल परिवार तक सीमित नहीं रही है, बल्कि वे आज समाज, अर्थव्यवस्था और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। फिर भी अनेक महिलाएं आज भी आर्थिक निर्भरता, सामाजिक बंधनों और अवसरों की कमी के कारण अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाती। ऐसे में स्वरोजगार, जिसे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, एक ऐसा माध्यम बनकर उभरता है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और आत्मविश्वासी

बना सकता है। सदियों से महिलाओं ने अपने परिवार और समाज की आधारशिला को मजबूती दी है, परंतु अब समय आ गया है कि वे अपने सपनों को भी उतनी ही प्राथमिकता दें। स्वरोजगार इसी देश में एक सशक्त माध्यम है जो महिलाओं को अपनी प्रतिभा, कौशल और इच्छा शक्ति के बल पर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। स्वरोजगार केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि यह आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से सक्षम बनाता है, बल्कि उन्हें अपने निर्णय स्वयं लेने की शक्ति भी देता है। जब एक महिला अपने प्रयासों से कुछ हासिल करती है, तो वह अपने भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानती है और समाज में एक नई पहचान स्थापित करती है। स्वरोजगार का अर्थ है अपने कौशल, ज्ञान और संसाधनों का उपयोग कर स्वयं के लिए रोजगार उत्पन्न करना। यह न केवल आय का स्रोत है, बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का भी प्रतीक है। जब महिलाएं स्वरोजगार अपनाती हैं, तो वे न केवल अपने जीवन को बदलती हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी सकारात्मक दिशा देती हैं। सबसे पहले, स्वरोजगार महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिला अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होती है। उसे किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए, आज कई महिलाएं सिलाई, ब्यूटी पार्लर, ऑनलाइन व्यवसाय, हस्तशिल्प, खाद उत्पाद जैसे अचार, पापड़ आदि के माध्यम से अच्छी आय अर्जित कर रही हैं। यह न केवल उनकी आय बढ़ाता है, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है आत्मविश्वास का विकास। जब एक महिला अपने प्रयासों से कुछ हासिल करती है, तो उसमें आत्मविश्वास स्वतः बढ़ता है। वह समाज में अपनी पहचान बनाती है और अपने अस्तित्व को महसूस करती है। स्वरोजगार महिलाओं को यह अवसर देता है कि वे अपनी प्रतिभा को पहचाने और उसे निखारे। तीसरा, स्वरोजगार सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम। जब एक महिला सफल होती है, तो वह अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बनती है। इसमें समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदलता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह, जिसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहते हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण है, जहां महिलाएं मिलकर छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करती हैं और सामूहिक रूप से आगे बढ़ती है। वर्तमान समय में सरकार भी महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, जैसे स्टैंड अप इंडिया योजना, मुद्रा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपने व्यवसाय को शुरू और विस्तार कर सके। स्वरोजगार के क्षेत्र में कुटीर उद्योग महिलाओं के लिए एक अत्यंत सुलभ और प्रभावी विकल्प है। कुटीर उद्योग ऐसे छोटे स्तर के उद्योग होते हैं, जिन्हें महिलाएं अपने घर से ही सीमित संसाधनों के साथ आसानी से शुरू कर सकती, जैसे सिलाई कढ़ाई, अगरबत्ती निर्माण, अचार पापड़ बनाना, हस्तशिल्प, बुनाई, मिट्टी के बर्तन या सजावटी वस्तुएं तैयार करना आदि। इन कार्यों में अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती और स्थानीय बाजारों के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी इन उत्पादों की बिक्री की जा सकती है। कुटीर उद्योग महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उनके कौशल को पहचान दिलाने का माध्यम भी बनते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में यह उद्योग महिलाओं के लिए रोजगार का एक अस्थायी साधन प्रदान करते हैं, जिससे वे अपने परिवार की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे पाती हैं और समाज में अपनी एक सशक्त पहचान स्थापित करती हैं। डिजिटल युग ने भी महिलाओं के लिए नए अवसर खोले हैं। आज महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ई कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न, मीशो, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से अपने उत्पादों और सेवाओं को देश विदेश तक पहुँचा सकती। इससे उन्हें बाजार की सीमाओं से बाहर निकलने का अवसर मिलता है। श्रोता मित्रों, हम आपको बताते चले, विश्व भर में ग्रामीण महिलाओं को अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों की सीमित पहुंच जैसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि कई गैर सरकारी संगठन कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से आजीविका के अवसर प्रदान करके इस स्थिति को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। ये प्रयास महिलाओं को अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य बनाने में मदद करते हैं और ग्रामीण समुदायों में अस्थायी बदलाव ला रहे हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के पास अपने जीवन को बेहतर बनाने के सीमित अवसर होते हैं। शिक्षा,
कौशल या आय के अवसर

की कमी के कारण कई महिलाएं गरीबी में फंसी रहती हैं। उनसे आम तौर पर घरेलू कामकाज, बच्चों की देखभाल और पारिवारिक खेती में मदद करने की अपेक्षा की जाती है, जिससे उनके पास व्यक्तिगत विकास या रोजगार के लिए बहुत कम समय बचता है। कई मामलों में ग्रामीण लड़कियों और

0: अर्जित करने के अवसरों के अभाव में ये महिलाएं अक्सर गरीबी के दुष्चक्र में फंसी रहती हैं। कौशल विकास इस दुष्चक्र को तोड़ने का सबसे कारगर तरीका है। जब महिलाओं को कृषि, स्वास्थ्य, सेवा, डिजिटल साक्षरता या उद्यमिता जैसे नए कौशल सिखाए जाते हैं, तो वे बेहतर तरीके से आजीविका कमा पाती हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाती हैं। ये कौशल न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाते हैं, बल्कि उनके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाते हैं। नए कौशल सीखकर ग्रामीण महिलाएं अपने खुद का व्यवसाय शुरू कर सकती हैं, कार्यबल में शामिल हो सकती हैं या अपने समुदायों में नेतृत्व कर सकती हैं। इससे न केवल महिलाओं के लिए बल्कि उनके परिवारों और समुदायों के लिए भी दीर्घकालिक सकारात्मक बदलाव आते हैं। कौशल विकास के लाभ केवल व्यक्तिगत महिलाओं तक ही सीमित नहीं हैं। यह ग्रामीण महिलाएं कौशल प्राप्त करती हैं तो वे अपने समुदायों में आदर्श बन जाती हैं। वे अपने परिवारों का बेहतर भरण पोषण कर सकती हैं, अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश कर सकती हैं और अपने जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार कर सकती हैं। कुशल महिलाएं स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। उदाहरण के लिए कृषि या खाद्य प्रसंस्करण में प्रशिक्षित महिलाएं अपनी उत्पादकता बढ़ा सकती हैं और अपने समुदायों को भोजन और सामान उपलब्ध करा सकती हैं। छोटे व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाएं दूसरों के लिए रोजगार सृजित कर सकती हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिलता है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, तो उनके पास अपने जीवन और विकल्पों पर अधिक नियंत्रण होता है। वे अपने स्वास्थ्य, आवागमन और व्यक्तिगत विकास के बारे में निर्णय ले सकते, जिसे मजबूत और स्वस्थ समुदाय बनते हैं। बेशक इस प्रकार हम पाते हैं कि कौशल विकास कार्यक्रम स्वरोजगार के विकल्प का सशक्त माध्यम है। वहीं हम मानते हैं कि स्वरोजगार अपनाते समय महिलाओं को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या पूंजी, पैसे की कमी होती है, क्योंकि व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रारंभिक निवेश आवश्यक होता है। इसके अलावा पारिवारिक जिम्मेदारियां जैसे बच्चों की देखभाल और घर का काम महिलाओं के समय और ऊर्जा को सीमित कर देती हैं। कई बार समाज की संकीर्ण सोच और सहयोग की कमी भी उनके आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। उचित प्रशिक्षण, व्यावसायिक ज्ञान और बाजार की जानकारी का अभाव भी एक बड़ी बाधा बनता है। डिजिटल तकनीक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जानकारी न होना भी आज के समय में पीछे कर सकता है। इन सब के बावजूद यदि महिलाओं को सही मार्गदर्शन, परिवार का सहयोग और आत्मविश्वास मिले, तो वह इन चुनौतियों को पार कर स्वरोजगार में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। शिक्षा भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि महिलाओं को सही शिक्षा और प्रशिक्षण मिले, तो वे किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकती हैं। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम महिलाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार करते हैं। अंततः यह कहा जा सकता है कि स्वरोजगार महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का एक प्रभावी और अस्थायी माध्यम है। यह उन्हें आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब महिलाएं सशक्त होंगी, तभी समाज और राष्ट्र का समग्र विकास संभव है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हर महिला अपने भीतर की क्षमता को पहचाने, आत्मनिर्भर बने और यह संकल्प ले कि हम सदैव आत्मनिर्भर रहेंगे और स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाए। साथ ही समाज को यह भी समझना होगा कि महिलाओं का सशक्तिकरण केवल एक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता है। जब महिला सशक्त होती है, तो परिवार सशक्त होता है, और जब परिवार सशक्त होता है, तो राष्ट्र सशक्त बनता है। धन्यवाद।
1: जी हाँ बहनों, स्वरोजगार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर तो बनाता ही है, आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, परिवार की आय में सहयोग करती हैं महिलाएं, रोजगार के अवसर महिलाओं को मिलते हैं, कौशल का उपयोग होता है उनका, और सामाजिक सम्मान और निर्णय लेने की क्षमता और बेहतर भविष्य तो बनता ही है। अभी आप स्वाति सहाय की वार्ता सुन रहे थे, स्वरोजगार अपनाएं और सशक्त बने। और अब बात करते हैं कि अंधविश्वास से कैसे बचें। बहनों, महिलाएं परिवार और समाज की महत्वपूर्ण आधारशिला होती हैं। वे घर की देखभाल करने के साथ साथ बच्चों के संस्कार और परिवार के भविष्य को भी दिशा देती हैं। इसलिए महिलाओं का शिक्षित, जागरूक और वैज्ञानिक सोच वाला होना बहुत आवश्यक है। अंधविश्वास महिलाओं की प्रगति में बाधा बनता है और कई बार उन्हें शोषण और धोखे का शिकार ही बना देता है। कई दुष्परिणाम हैं इसके। अंधविश्वास के कारण महिलाएं कई बार झाड़ फूंक, टोए टोटके, अफवाहों पर

0: श्वास कर लेती हैं।
1: और बीमारी होने पर सही से इलाज कराने के बजाय गलत उपाय अपनाने से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। कुछ लोग अंधविश्वास का लाभ उठाकर महिलाओं को डराते हैं और उनका आर्थिक तथा मानसिक शोषण करते हैं। इससे परिवार का समय, धन और सुख शांति भी प्रभावित होती है। महिलाओं को शिक्षा और वैज्ञानिक सोच को अपनाना चाहिए। किसी भी बात पर बिना प्रमाण के विश्वास नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर योग्य डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। बच्चों को भी तर्क और विज्ञान का महत्व समझाना चाहिए और समाज में फैली गलत अवधारणाओं को भी विरोध करना चाहिए। जागरूक महिला न केवल स्वयं सुरक्षित रहती है बल्कि पूरे परिवार को सही दिशा निर्देश देती है। अंधविश्वास से दूर रहकर महिलाएं आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सशक्त बन सकती हैं।

0: शिक्षा, जागरूकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही उनके उज्जवल भविष्य की कुंजी है। अंधविश्वास को त्याग कर ज्ञान, तर्क और विज्ञान पर विश्वास करें और एक जागरूक और प्रगतिशील समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। तो बहनों, इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम घर आंगन से अब दीजिए रागनी कुमारी और
1: प्रतिमा वर्मा को
0: अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा। सत्र के सफल, सुचारू और गरिमापूर्ण संचालन को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। बैठक में सदन की कार्यवाही लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप संचालित करने पर चर्चा हुई तथा सभी दलों से सकारात्मक सहयोग का आग्रह किया गया। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में जेपीएससी में कथित अनियमितता को लेकर छात्र संगठनों ने आज प्रदर्शन किया। राजधानी के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 12वें दिन भी विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी रहा। आंदोलन को धार देने के लिए कई अभ्यर्थियों और विद्यार्थियों ने भूख हड़ताल रखी है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। रांची सदर अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से जारी नोटिस के विरोध में आज दूसरे दिन सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से दूर रहने का निर्णय लिया। इससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला बार एसोसिएशन के महासचिव संजय विद्रोही ने बताया कि कल आम सभा में लिए गए निर्णय का पालन करेंगे। बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल अंतर्गत नवाडीह प्रखंड में आज एक दिल दहला देने वाली ट्रिपल मर्डर की घटना सामने आई। इसमें एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में आज मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाली स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा हुई। इस दौरान संबंधित विभागों को समारोह की सफलतापूर्वक तैयारी और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम ग्रामीण भाइयों को रागनी कुमारी का प्यार भरा नमस्कार
1: और साथ ही प्रतिमा वर्मा का भी नमस्कार।
0: स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम खेतीबाड़ी में।
1: ग्रामीण भाइयों, बात करते हैं कि खेतों को परती ना छोड़ें। ग्रामीण भाइयों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ अधिकांश लोगों की आजीविका खेती पर निर्भर है। हम सब जानते हैं खेत किसानों की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि खेतों को परती छोड़ दिया जाए तो भूमि की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आती है। इसलिए किसानों को अपने खेतों को परती नहीं छोड़ना चाहिए। खेतों में नियमित खेती करने से अनाज, दालें, सब्जियां और अन्य फसलें अधिक मात्रा में पैदा होते हैं।
0: इससे किसानों की आय बढ़ती है और देश की खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होती है। खाली खेतों में अक्सर खरपतवार उग जाते हैं जो भूमि की उर्वरता को प्रभावित करते हैं। यदि किसान भाई फसल चक्र अपनाकर या मौसम के अनुसार अलग अलग फसलें उगाएं तो मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। सिंचाई, उन्नत बीज, जैविक खाद और संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। यदि किसी मौसम में मुख्य फसल नहीं बोई जा सकती है तो दलहन, तिलहन, चारा या हरी खाद वाली फसलें उगानी चाहिए ताकि खेत खाली ना रहे।
1: जी हाँ, किसान देश का अन्नदाता है। उसके मेहनत से ही हमारे घरों तक अन्न पहुंचता है। खेत किसान की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। ग्रामीण भाइयों, यदि खेत लंबे समय तक पड़ी रहे तो उनका सही उपयोग नहीं हो पाता और किसान को आर्थिक नुकसान सहना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक किसान को अपने खेतों को परती नहीं छोड़ना चाहिए। परती खेतों में खरपतवार और जंगली पौधे उगाते हैं जिससे मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। भूमि का उपयोग ना होने से उत्पादन रुक जाता है और किसान की आय घट जाती है। देश में खाद्यान्न उत्पादन भी कम हो सकता है जिसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। किसानों को मौसम और भूमि के अनुसार फसलों का चयन करना चाहिए। मुख्य फसल के बाद दलहन, तिलहन, सब्जियां, चारा फसलें उगाई जा सकती हैं। फसल चक्र अपनाने, जैविक खाद के उपयोग, आधुनिक सिंचाई व्यवस्था और उन्नत बीजों के उपयोग से भूमि की उर्वरता बनी रहती है और उत्पादन भी बढ़ता है। सरकार किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों, सिंचाई सुविधाओं और कृषि योजनाओं का जानकारी देकर उनकी सहायता कर रही है। किसानों को इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी खेती को अधिक लाभदायक बनाना चाहिए और खेत कभी भी बेकार नहीं रहने चाहिए। हर मौसम में भूमि का उचित उपयोग करके किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं और देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इसलिए प्रत्येक किसान का यह संकल्प होना चाहिए कि खेतों को परती नहीं छोड़ेंगे, हर खेत को हरा भरा बनाएंगे और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। आइए इसके बाद आपको एक भेंटवार्ता सुनवाते हैं। नवजात बछड़ों की देखभाल। भेंटवार्ताकार हैं आदर्श ग्राम पदाधिकारी पलामू के डॉक्टर प्रमोद कुमार। बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
2: ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे पशुधन की और पशुधन में हम बातें करेंगे जो नवजात बछड़े होते हैं, बछिया होती हैं, मेमने होते हैं, सूकर के बच्चे होते हैं। इन सभी पशुओं के जो छौना छौनी हैं उनको किस तरह से हम देखभाल करें कि बाढ़ बियान अनुकूल रहे, कोई बुरा असर उस पर ना पड़े, और इन तमाम बातों पे जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सर।
3: नमस्कार
2: सर। सबसे पहले तो हमारे ग्रामीण भाइयों को ये बताया जाए कि नवजात बछड़े बछड़ियाँ, मेमने, सूकर के बच्चे जो होते हैं उनकी देखभाल हमारे किसान भाई किस प्रकार करें।
3: पशुपालन का भविष्य जो है

0: उनके बच्चे पर ही निर्भर करता है। बच्चे जितने स्वस्थ होंगे
1: जी
0: तो भविष्य के पशु उतने ही अच्छे होंगे और उनकी उत्पादकता बहुत अच्छी रहेगी। तो इस अगर दिमाग में बात को रख कर करके कि बच्चे कैसे हमारे स्वस्थ रहें, इसके लिए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी उनके पास गाय भैंस बकरी भेड़ ये सुकर रखे हुए हैं और वो गर्भावस्था से अगर गुजर रहे हैं तो उनको 2 माह पूर्व से ही उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 2 माह पूर्व तैयारी शुरू करने का मतलब ये हुआ कि उनको अलग से हम अनाज खिलाना शुरू कर दें। ये अनाज गायों में कितना खिलाएं, भैंसों को कितना दें, बकरियों को कितना दें, भेड़ों को कितना दें, सुकरी को कितना दें, ये
1: अच्छा
0: किसान भाइयों के लिए आवश्यक हो जाता है। तो इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा किसान भाइयों को कि अगर उनके पास अंदाज है कि ये गाय या भैंस हमको बच्चा देने के बाद 10 किलो दूध देगी या 5 किलो दूध देगी, अगर ये अंदाज वो कर लेते हैं तो इसके हिसाब से वो स्वयं जोड़ सकते हैं कि 1 किलो दूध उत्पादन के लिए गायों को प्रति 1 किलो दूध के लिए 400 ग्राम आना चाहिए और भैंस को प्रति 1 किलो दूध के लिए 500 ग्राम आना चाहिए और इसके अतिरिक्त 1.5 से 2 किलो उसके शरीर के लिए भी चाहिए। यानी कि लगभग 5 से 6 किलो अगर 10 किलो दूध देने वाली गाय को अगर अनाज को खिलाते हैं तो वो गाय आपको 10 किलो दूध देगी या भैंस भी आपको दूध देगी। तो उनको इतना अनाज 3 किलो सुबह 3 किलो शाम प्लस और 6 किलो भूसा अगर खिलाते हैं तो वो गाय आपको 2 महीने के बाद जब बच्चा देगी तो वो पूरी तरह स्वस्थ होगी और स्वस्थ पशु के थन का विकास पूरा पूरा होता है। और जब पूरा पूरा थन का विकास होगा तो आपको वो पूरा पूरा दूध देगी। साथ में जो खनिज लवण होते हैं, मिनरल मिक्स अंग्रेजी में कहते हैं, वो बाजार में पाउडर उपलब्ध है, कुछ जगह अस्पतालों में भी उपलब्ध है। तो आप जहाँ कहीं से भी हो, बाजार से हो या पशु अस्पताल से हो, आप ले करके 50 ग्राम मिनरल गाय एवं भैंस को प्रतिदिन दें। और अब बात ये आती है कि बकरियों और भेड़ों को, तो बकरियों और भेड़ों को चूंकि इनकी गर्भावस्था कम दिन की होती है, 5 महीने की होती है, तो इन्हें भी 2 महीने पहले से 150-200 ग्राम अनाज कुछ भी आप उसको दीजिए। और मिनरल मिक्सर जो है 1 चम्मच से 2 चम्मच मतलब 5 से 10 ग्राम प्रति पशु रोज देना चाहिए। सुकरियों को करीब उनको 1.5 से 2 किलो अनाज की ज़रूरत है और उन्हें भी मिनरल मिक्सर 20 से 25 ग्राम अगर देते हैं तो उनके बछड़े और सुकर दोनों ही स्वस्थ होंगे। अब इसके बाद बात आती है कि इन पशुओं जो गर्भवती पशु हमारे हैं उनको 2 माह पूर्व से ही हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो भीड़ में न रहें ताकि दूसरे पशु उनको चोट ना पहुंचाएंगे। चोट पहुंचाने पर उनका गर्भपात हो सकता है। तो ऐसे में पशुपालक भाई, ये ऐसे तो गायें या पशु स्वयं ही जो गर्भावस्था से गुजर रही होती हैं उन्हें देखा गया है कि या तो वो पशु सबसे आगे होते हैं या झुंड में सबसे पीछे होते हैं। इस तरह से वो अपना बचाव खुद करते हैं लेकिन कभी कभी हमारी नासमझी से भी नुकसान होता है। तो पशुपालक भाइयों को चाहिए कि उन्हें भीड़ से अलग कर रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो आराम कर सकें और उनका समय पूर्व गर्भपात ना हो। इसके बाद पशुपालक भाइयों को चाहिए कि बछड़े जो हमारे पैदा होने वाले हैं या छौने छौनी पैदा होने वाले हैं या सुकर के बच्चे पैदा होने वाले हैं तो उनको कैसे बचाएं कृमि से। पेट में जो कीड़े होते हैं उसको बचाने के लिए हमें गर्भवती पशु को ही 15 दिन पूर्व पशु चिकित्सा सलाह से उनको कृमि नाशक दवा दे देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो उसके पेट में बच्चे पल रहे हैं उनमें भी जो कृमि होगा वो बाहर आ जाएगा। इस तरह से जन्म से पूर्व ही उनके पेट में कृमि नहीं होने पर वो बच्चे ज़्यादा स्वस्थ होंगे। इसके बाद पशुपालक भाइयों को चाहिए कि जो पशु गर्भावस्था में हैं उनको जरूर निश्चित रूप से जब पाल दिलाए हैं आप प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से, दोनों स्थिति में उसका आपको समय नोट करके रखना चाहिए। इससे फायदा यह होगा कि आप देख लीजिए कि गाय अगर है तो 280 दिन पूरा हो गया है तो आप पूरी तरह से निगरानी करेंगे क्योंकि गायों में 280 प्लस माइनस 5 में 275 से 285 दिन के बाद बीच में बच्चा देती है। इसी तरह से भैंस लगभग 310 दिन पर बच्चा देती है, बकरी और भेड़ 148 से 151 दिन पर बच्चा देती है, सुकरी 114 दिन पर बच्चे देती है। तो अगर आप ये समय जोड़ कर रखे हुए हैं तो आप इस समय से 3 से 4 दिन पूर्व आप उसका निगरानी बढ़ा दें और देखें कि अगर ये पशु बच्चा देने की स्थिति में है तो उसके क्या लक्षण आएंगे। तो सबसे पहले पशुपालक भाइयों को ये देखना चाहिए कि कोई भी गर्भवती पशु अगर पूंछ खड़ा कर दे रहा है और उसके थन में लग रहा है कि अब दूध निकल जाएगा तो आप ये मान के चलें कि अब ये पशु 24 घंटे के अंदर हमको बच्चा देगी तो उसे हम घर में ही रखें और उसे के पास भीड़ ना लगाएं। क्योंकि जब हम पशु के पास भीड़ लगाते हैं तो गर्भवती पशु बच्चा देने में शर्माती है और नतीजा के वो बच्चा नहीं दे पाती है।
1: अच्छा।
0: दूसरा, वहाँ पर

0: कुत्ते या दूसरे जानवरों को नहीं रखना चाहिए। उससे भी गर्भवती पशु हिंसक पशुओं के डर से भी बच्चे नहीं देती हैं। तो इनसे पशुपालकों को चाहिए कि भीड़ और हिंसक पशु को उसके नज़दीक ना जाने दें,
1: ये
0: उन्हें
1: बहुत बड़ी
0: सुरक्षित
1: बात सामने आई।
0: सुरक्षित महसूस कराएं।
1: अच्छा
0: साथ में पशुपालक भाई ये बात का ध्यान रखें कि हमारे देहात में कहावत भी है और घाघ कवि ने बहुत हजारों साल पहले ये बात बोली है कि अगर सावन में गधी अगर बच्चा देती है और गाय अगर भादों में बच्चा देती है और भैंस माघ में बच्चा देती है तो उसके बछड़े के बचने की संभावना या गाय के बचने की संभावना कम होती है। तो ऐसे में पशुपालक भाई इस तरह से अपने गाय का प्लानिंग करें कि वो गाय भादों में बच्चा न दे और भैंस माघ महीने में बच्चा न दे, क्योंकि बच्चा बचाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये मौसम जो है बछड़ों के लिए प्रतिकूल होता है। तो ये काम पहले से लोगों को करना चाहिए। इसके बाद अगर आप देख लिए कि गाय या भैंस बच्चा देने लगी तो आपने अब बच्चा देगी, तो बच्चा देने पर क्या करना चाहिए? बच्चा देने पर ये आप ध्यान रखें कि गाय 2 से 8 घंटे में या भैंस झाड़ गिराती है तो आप 2 से 8 घंटे तक उसका इंतजार करें।
1: अच्छा
0: तत्पश्चात अगर न गिराती है तो पशुपालक भाइयों को चाहिए घबराना नहीं, उन्हें चाहिए कि उसको 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम सौंठ, 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम खाने वाला सोडा, 100 ग्राम सरसों तेल में पका करके और 250 ग्राम गुड़ मिला करके उसको 15 से 16 दिन दें ताकि उसके बैदाने की सफाई पूरी पूरी हो सके।
1: अच्छा
0: और पशु चिकित्सक सलाह से कोई भी एक एंटीबायोटिक 3 दिन चलवा देंगे तो नहीं भी जहर गिराने पर उनको निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गाय की तरफ हुआ। दूसरी तरफ आता है कि बछड़ा जो बाहर आया है उसे क्या करें? जब गाय या भैंस या बकरी बच्चा दे रही है तो आप ये जरूर ध्यान दें कि जो बच्चा होता है वो पानी की थैली में होता है। पानी की थैली फूटने के बाद उसका ऑक्सीजन सप्लाई जो नाभि के द्वारा बच्चे को मिलता रहता है वो खत्म हो जाता है। तो 2 घंटे के अंदर अगर गर्भवती गाय भैंस बकरी शुक्र अगर बच्चा नहीं दे रहे हैं तो आप तुरंत पशु चिकित्सक से परामर्श
1: संपर्क
0: करें
1: करें।
0: कि क्या परेशानी है,
1: जी
0: और उस परेशानी को 2 घंटे के अंदर दूर करेंगे तो उससे 2 फायदा होगा। एक तो बछड़े के बचने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होगी और दूसरा कि गाय या भैंस या बकरी कम थकेगी तो वो जल्दी से जल्दी भोजन पर लौट जाएगी। तो पशुपालक भाई जब बछड़ा बाहर आ जाता है तो अब क्या करें? बछड़ा बाहर आ गया तो आप यस बकरी के मेमने आ गए हैं बाहर में, छौने आ गए हैं सुकरी के, तो इनको अब आपको करना चाहिए क्या कि नाभि जो उनका है वो लंबा है उसे 2 इंच शरीर से छोड़ करके उसे साफ धागे से बांध लें और साफ ब्लेड से उसको काट दें।
1: अच्छा
0: इसके बाद अगर दवा आपको बीटाडीन उपलब्ध है तो बीटाडीन लगाएं, नहीं है तो न्यूनतम कम से कम हल्दी और सरसों तेल उस पर लगा दें।
1: अच्छा
0: इससे एक एंटीसेप्टिक कवर चढ़ जाएगा तो वो पकेगा नहीं। नहीं तो आए दिन हम लोग देखते हैं अस्पताल में कि नाभि पका हुआ है, फिर उसे ऑपरेशन करना पड़ता है और उसे अनावश्यक रूप से पशुपालकों को
1: खर्चे में।
0: खर्च करना पड़ता है, उससे बच सकते हैं। दूसरी बात ये कि गाय और भैंस जब बच्चे देते हैं तो वो अपने से जीभ से चाट कर करके उसको साफ करने की कोशिश करते हैं। उसमें ये जरूर पशुपालक भाई ध्यान रखें कि पशु का जीभ जो है काफ़ी खुरदरा होता है, गाय का और भैंस का। वो क्या करते हैं कि नाभि को भी नोच देते हैं या चाटने के क्रम में कवर जाता है तो उसे
1: अच्छा
0: इन्फेक्शन होना निश्चित होता है। तो बच्चा देते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो नाभि ना चाटें जैसे या
1: अच्छा
0: बाहर उसको ना नोचें जैसे। तीसरी बात ये कि जब बछड़ा बाहर आ गया है तो उसे अब दूध की जरूरत है, क्योंकि जो देहात में अंग्रेजी में हम लोग क्लस्टम बोलते हैं, देहात में फेनुस कहते हैं, वो उसका जीवन का वरदान है, भगवान के द्वारा गया एक अमृत है जिसे उसको 4 घंटे के अंदर ही पिलाना है।
1: अच्छा
0: अगर 4 घंटे के अंदर नहीं पिलाते हैं तो आप अपने बछड़े बछड़ियों बकरियों के बच्चे जो हैं सुकरी के जो छौने हैं उनको आप निमोनिया से और डायरिया से नहीं बचा सकते हैं। तो इनको 4 घंटे के अंदर झार गाय गिराए या ना गिराए आप इसको 4 घंटे के अंदर
1: पिला
0: दूध
1: दीजिए।
0: फेनुस जरूर पिलाइए। अब बात आती है कितना फेनुस पिलाएं। तो ये बछड़े का वजन आप करिए और उसको देखिए, अगर आपका बछड़ा 20 किलो का है तो उसे लगभग 2 किलो यानी 1 किलो सुबह 1 किलो शाम, इसी तरह से 30 किलो का अगर बछड़ा है तो 1.5 किलो सुबह 1.5 किलो शाम वो फेनुस पिलाएं।
1: अच्छा
0: और बकरियों में तो इतना दूध होता नहीं है, जो भी दूध होता है उसे आप पिलाएं, शुक्र के ही बच्चे में है कि जितना वो दूध पी सकता है उसको पिलाएं। इसके पिलाने से 4 घंटे के अंदर आपको ये समस्या जो हमने बताया पूर्व में कि पतला दस्त और निमोनिया ये दोनों से वो नहीं मरेंगे। तत्पश्चात आता है कि ये जो हमारे गाय के बच्चे हैं भैंस के बच्चे हैं उनको 1 सप्ताह के अंदर

0: कृमि की दवा निश्चित रूप से
1: पिलाना चाहिए,
0: प्रथम खुराक एक सप्ताह के अंदर दे देना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो पूरे जो एक हाथ डेढ़ हाथ का आप देखते हैं होंगे फीता कृमि रहती है, एस्केरियोसिस हम बोलते हैं, वो नहीं होगा। और दूसरी खुराक पुनः 20 दिन पर दें, तीसरी खुराक भी 20 दिन पर दें। इस तरह से आपका बछड़े 2 महीने के हो जाएंगे और 2 महीने के बाद प्रत्येक 3 महीने पर आप उसको कृमिनाशक दवा दे सकते हैं। इसी तरह से अगर आप शुक्र के बच्चे को रखे हुए हैं तो आप उसको 3रा दिन और 14वां दिन, चूंकि उसमें आयरन की कमी होती है, तो उनको निश्चित रूप से आयरन का इंजेक्शन 3रा दिन और 14वां दिन अगर लगवा देते हैं तो शुक्र के बच्चे में मृत्यु काफी कम हो जाती है।
1: बछड़े में
0: शुक्र के जो बच्चे हैं छौना छौनी कहते हैं
1: जी,
0: उनमें पिगलेट एनीमिया लोहे की कमी से उनमें खून की कमी हो जाती है। तो इस एनीमिया को रोकने के लिए आप आयरन का इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध है फेरिटास नाम का, आप उसको 1 ml इंजेक्शन उसको दे सकते हैं। इसके बाद जो हमारे गाय के बछड़े आते हैं बाहर में, वो चूंकि अभी नस्ल सुधार का कार्यक्रम चल रहा है, आप जितने अच्छे नस्ल की सांड से पाल दिलवाते हैं या सीमेन का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे दूध देने वाली गायों की चमड़ी पतली होती है, तो उनके बच्चे की भी चमड़ी पतली होती है। तो उन पर वायु परजीवी जो आपके गांव देहात में चमोकन अठैल उफरा कहते हैं, इससे उसको बचाना जरूरी है, क्योंकि ये उसे खून चूस लेंगे तो वो पूरी मजबूती से वो बड़े नहीं हो सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए मैं पशुपालकों को ये सलाह दूंगा कि अपने पशु चिकित्सक से मिल करके या तो दवा लगाने की आ रही है उसे लगाएं 10-12 दिन पर। दूसरी उपाय है कि मुंह से दवा खिलाने की भी आ रही है, वो आइवरमेक्टिन का टैबलेट आता है, तो उसके वजन के हिसाब से कितनी टैबलेट की जरूरत है ये पशु आपको बताएंगे। तीसरी चीज ये है कि उसका वजन कितना है तो उसके ऊपर पीठ के ऊपर भी दवाई डाल सकते हैं, वो 1 ml दवा 10 किलो वजन पर पीठ पर डाली जाती है। तीसरा है आप सुई दे सकते हैं कि वजन कितना है, तो उसके हिसाब से आप 1 ml पर 50 kg के हिसाब से 50 किलो वजन पर 1 ml चमड़ी में सुई दी जाती है। तो ये आप कोई भी चीजें जो है अपने पशु से सलाह कर करके उसको दें ताकि वायु परजीवी का उस पर असर नहीं हो। इसके बाद मैं ये कहूंगा कि 2 महीने के बाद जैसे ही आपका ये गाय का जो बच्चा है बछड़ा या बछड़ी भैंस का बच्चा, उसे दूध की मात्रा घटा दें, क्योंकि जब जानवर जुगाली करने लगता है तो उसके लिए दूध का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा नहीं रह जाता है। उसके बजाय उसको दूध कम करके आप अनाज की मात्रा बढ़ाएं ताकि उसका बढ़वार पूरा बना रहे। दूसरा कि अगर उसको मिनरल मिक्सर पाउडर देते रहेंगे और ये कृमिनाशक दवा देंगे तो उसका पेट जो बाहर निकलता है वो नहीं निकलेगा, क्योंकि बच्चे जो बढ़ने लगते हैं तो उनको कैल्शियम कमी होने लगती है। इसीलिए भगवान ने उनको माताओं के थन में या स्तन में दूध जो है वो पूरा आया रहता है, और उससे चूंकि वो आदमी को ही ज़रूरत है तो ऐसी स्थिति में उनको घटा करके आप अनाज दे करके और मिनरल मिक्सर दे करके उसको इस पेट निकलने की बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो ऐसे 2 महीने के बाद अगर दूध कम कर देते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और बछड़े का बढ़वार भी बहुत अच्छा रहेगा।
1: आप थे लातेहार जिला के बरवाड़ी प्रखंड के प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी। नवजात बछड़े बछड़ियाँ मेमने सुकर के छौना छौनी भैंस के काड़ा काड़ी के बारे में जानकारियाँ दी, किस प्रकार उनकी देख रेख करनी चाहिए नवजात बछड़े की, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।

ग्रामीण भाइयों, अभी आप सुन रहे थे आदर्श ग्राम पदाधिकारी पलामू के डॉक्टर प्रमोद कुमार से ली गई भेंटवार्ता। विषय था नवजात बछड़ों की देखभाल। बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। आइए सुनते हैं एक लोकगीत।

इस लोकगीत के बाद आइए सुनते हैं मधुमक्खी पालन आय का उत्तम स्रोत कैसे है। ग्रामीण भाइयों, मधुमक्खी पालन एक ऐसा स्वरोजगार है जिससे कम लागत में अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों के लिए लाभदायक व्यवसाय है। किसान, महिलाएं और युवा इसे अपने मुख्य व्यवसाय के साथ साथ अतिरिक्त आय के साधन के रूप में भी अपना सकते हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से रस एकत्र करके शहद तैयार करती हैं। शहद के साथ साथ मोम, पराकण, रॉयल जेली और प्रोपोलिस जैसे मूल्यवान उत्पाद भी प्राप्त होते हैं जिनकी बाजार में अच्छी मांग रहती है। इसके अलावा मधुमक्खियाँ फसलों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इससे कृषि उत्पादन भी बढ़ता है।

मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए बहुत अधिक भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़े से प्रशिक्षण और उचित देखभाल से इस व्यवसाय को सफल बनाया जा सकता है। सरकार भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण, अनुदान और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। आज के समय में शुद्ध और प्राकृतिक शहद की बढ़ती मांग के कारण मधुमक्खी पालन एक लाभदायक व्यवसाय बन गया है। यह रोजगार के नए अवसर पैदा करता है और किसानों की आय भी बढ़ाता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। मधुमक्खी पालन वास्तव में आय का एक उत्तम स्रोत है।

यदि इसे वैज्ञानिक तरीके और सही प्रशिक्षण के साथ किया जाए तो यह आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकता है।

आज के समय में शुद्ध और प्राकृतिक शहद की बढ़ती मांग के कारण मधुमक्खी पालन एक लाभदायक व्यवसाय बन गया है। ये रोजगार के नए अवसर तो पैदा करता ही है, किसानों की आय बढ़ाता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। साथ ही यह पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक है, क्योंकि मधुमक्खियाँ जैव विविधता को बढ़ावा देती हैं। जी हाँ किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन वास्तव में आय का उत्तम स्रोत है। इसलिए यदि इसे वैज्ञानिक तरीके और सही प्रशिक्षण के साथ किया जाए तो यह आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकता है। यह कम निवेश में अधिक लाभ देने वाला टिकाऊ व्यवसाय है, जिसे अपनाकर लोग अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकते हैं।

0: तो इसी चर्चा के साथ कार्यक्रम खेतीबाड़ी से अब दीजिए रागिनी कुमारी और
1: प्रतिमा वर्मा को
0: अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे ग्रामीण सभा, ग्रामीण कृषक महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: ग्रामीण सभा सुनने वाली तमाम कृषक महिला बहनों को हमार प्रतिमा वर्मा का प्यार भरा नमस्कार
1: और साथ ही रागनी कुमारी का भी नमस्कार।
0: आज बहनों इस कार्यक्रम में सबसे पहले चर्चा करेंगे कुटीर उद्योग में महिलाओं का योगदान। ग्रामीण महिलाओं की मेहनत और लगन परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गांव की आर्थिक उन्नति का आधार है। खेती के साथ साथ महिलाएं अनेक कुटीर उद्योगों से जुड़कर परिवार की आय बढ़ा रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं।
1: बहनों, कुटीर उद्योग ऐसे छोटे छोटे व्यवसाय हैं जिन्हें कम पूंजी और सीमित संसाधनों से घर या गांव में ही शुरू किया जा सकता है। जैसे मधुमक्खी पालन, डेयरी, मशरूम उत्पादन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, अचार, पापड़ और मसाला निर्माण, अगरबत्ती, मोमबत्ती, सिलाई कढ़ाई, बुनाई और हस्तशिल्प। इन उद्योगों से न केवल अतिरिक्त आय होती है बल्कि महिलाओं में आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आज स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं मिलकर उत्पादन कर रही हैं, अपने उत्पादों की बिक्री कर रही हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बना रही हैं। सरकार भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण, ऋण और विपणन की सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं, इसलिए प्रत्येक महिला को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार किसी न किसी कुटीर उद्योग से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए।
0: बहनों, याद रखिए कि जब महिला आत्मनिर्भर बनती है तो

0: बहनों, आज का समय आत्मनिर्भर बनने का समय है। खेती के साथ यदि हम कोई छोटा कुटीर उद्योग अपनाएं तो परिवार की आय में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। कुटीर उद्योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे कम पूंजी, कम जगह और परिवार के सहयोग से शुरू किया जा सकता है। आज हमारे गांव की महिलाएं मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, अचार, पापड़, मसाले, अगरबत्ती, सिलाई कढ़ाई और हस्तशिल्प जैसे अनेक कार्यों से जुड़कर अपनी अलग पहचान बना रही हैं। उनके बजाय उत्पाद स्थानीय बाजारों के साथ साथ मेलों और ऑनलाइन माध्यमों से भी बिक रहे हैं। बहनों, एक समय था जब महिलाओं का कार्य केवल घर तक सीमित माना जाता था, लेकिन आज वही महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक शक्ति बन रही हैं। उनकी कमाई से बच्चों की पढ़ाई, परिवार का स्वास्थ्य और भविष्य अधिक सुरक्षित हो रहा है। यदि हम स्वयं सहायता समूह से जुड़कर मिलकर काम करें तो कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। हमारी बहनें अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य भी प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही सरकारी प्रशिक्षण और योजनाओं का लाभ लेकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा सकता है। बहनों, जरूर इस बात को ध्यान रखें कि मेहनत आपकी पहचान है, आत्मनिर्भरता आपका सम्मान है और कुटीर उद्योग आपकी नई उड़ान है। आइए आपको भेंटवार्ता सुनवाते हैं, पशुओं के स्वास्थ्य में हरे चारे का महत्व। भेंटवार्ताकार हैं आदर्श ग्राम पदाधिकारी पलामू के डॉक्टर प्रमोद कुमार।
1: किसान भाइयों, कार्यक्रम के अंतर्गत आज सर्वप्रथम हम बातें करेंगे आपसे हरे चारे की, और हरे चारे हम किस प्रकार उगाएं, कौन कौन से हरे चारे हमारे पशुओं के लिए काफ़ी उपयुक्त हैं और उससे क्या लाभ है, इन तमाम बातों पर जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: सर्वप्रथम तो सर ये बताया जाए कि पशुओं के लिए हरा चारा का क्या महत्व है।
2: मैं पशुपालक भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि हरा चारा जो है वो प्राकृतिक चारा है। हमारे पशुओं को जो पेट है, जो जुगाली करते हैं, उनका इसी के लिए बना हुआ है। हम अपने फायदे के दृष्टिकोण से जरूर उनको अनाज खिलाते हैं, लेकिन मैं पशुपालकों को ये कहूँगा कि हरा चारा उससे काफ़ी सस्ता होता है, उससे मुनाफा बढ़ता है। दूसरा ये फ़ायदा है कि हरे चारे में जो हरा रंग होता है वही विटामिन ए का पैदा करती है गाय खुद से, और उससे अपने बछड़े को विटामिन ए सप्लाई करती है, तो बछड़ा जो है उसका अंधा नहीं होता है। अगर हरा चारा शहर में नहीं देने पर पशुओं को देखा गया है कि जो गायें जन्म देती हैं अपने बछड़े को, उनके बछड़े अंधे होते हैं और वो आधे बछड़े 10 दिनों के अंदर मर जाते हैं। दूसरा ये देखते हैं कि शहर में जो गायें रहती हैं वो 6 बार 7 बार पाल दिलाने पर भी नहीं गर्भवती होती है, उन्हें गाँवों पर भेजने पर देखा गया है कि वो वहाँ पर गर्भवती हो जाती हैं। तो दूसरे फायदे ये हैं। तीसरा ये कि आप हरा चारा देते हैं तो आपका आपकी गाय जो है वो 90 दिन के अंदर गर्म हो जाती है, तो सालों साल बच्चा देती है, तो आपकी गाय बहुत कम बिस्की रहती है और आपको ज़्यादा दूध उत्पादन होता है और ज़्यादा फायदा होता है। तीन सभी दृष्टिकोण से देखें तो हमको पशुओं के लिए कम से कम जितना भी उसकी आवश्यकता है उसका 40% या 35 से 40 किलो ग्रास अगर हम किसी तरह से भी उसको उपलब्ध कराते हैं तो हमारी गाय स्वस्थ रहेगी और अधिक दूध देगी, हमको अधिक मुनाफा होगा। तो अब आते हैं हम लोग कि कौन सा हरा चारा हम लगाएं। तो मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि हरा चारा जो है हमारे पास झारखंड में पलामू जिले में 3 ऋतुएं होती हैं, उन्हीं के हिसाब से हम लोगों को काम करना होता है। तो हमारे यहाँ रब्बी है, भदई है और गर्मा है। तो आप अभी हमारा रबी का सीजन शुरू हो रहा है, इसमें आप जो हरे चारे का राजा कहा जाता है बरसीम घास को, तो आप उसे अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में लगा सकते हैं। और अगर लेट होता है धान के काटने में, खेत खाली होने में, तो आप लूसर्न का इस्तेमाल नवंबर में वो कर सकते हैं। दूसरी बात कि जब आप हरे चारे लगाते हैं तो आप सभी को जानकारी है पशुपालक भाइयों को कि झारखंड की भूमि में फॉस्फोरस की कमी है, तो आप लगाने के पहले निश्चित रूप से अपने खेत में सिंगल सुपर फॉस्फेट या डायमोनियम फॉस्फेट का इस्तेमाल करें। दूसरा कि यहाँ पर कार्बनिक रसायन की कमी है, तो निश्चित रूप से किसान भाइयों के पास खुद की गाय है तो वो कंपोस्ट या गोबर गैस प्लांट से जो निकलता है सलरी हम लोग बोलते हैं उसे, या केचुआ खाद का इस्तेमाल जरूर करें। यहाँ की झारखंड की जमीन में ये आम्लीय होती है, इनका पीएच जो है वो 7 से नीचे है, तो उस आम्लीय पीएच को सही करने के

0: और पोटास की कमी को दूर करने के लिए आप पोटेशियम की कमी को दूर करने के लिए पोटास जरूर डालें। इन तीनों चीज को डाल को खेत को तैयार करने के बाद अगर लूसन और बरसीम लगाते हैं तो ये आपको 50 से 55 दिन के बाद ये तैयार हो जाते हैं। कहीं कहीं पर पौधे जो है फूल देने लगते हैं तो आप उनको 50 से 55 दिन के बाद काट करके अपने पशुओं को खिलाएं। पशुओं को खिलाने में एक सावधानी जरूर किसान भाइयों को बरतनी चाहिए कि ये जो बरसीम या लूसन घास है इसमें पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है और आप इसकी कटिंग करने जा रहे हैं दिसंबर जनवरी माह में, तो उस समय आप एक दिन अगर उसको खेत में काट के छोड़ देते हैं तो धूप में रह करके इसका 10 से 15% तक इसका वजन घट जाएगा, मतलब पानी सूख जाएगा। पानी सूख जाने के बाद अगर पशुओं को आप देते हैं तो उन्हें पतला दस्त नहीं होगा। दूसरी बात कि कभी भी पशु को एक दिन में आप 50 किलो 60 किलो बरसीम नहीं दें, धीरे धीरे पहले 5 किलो, दूसरे दिन 7 किलो, फिर 10 किलो, इस तरह से 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर उन्हें पूरा का पूरा दे सकते हैं। बरसीम एक ऐसा हरा चारा है कि आप अगर 70-80 किलो बरसीम काट कर करके और एक दिन खेत में छोड़ देते हैं और दूसरे दिन अपने पशुओं को खिलाते हैं, मात्र 1 किलो खल्ली अगर खिलाएंगे सरसों की खल्ली तो आपको गाय 10 किलो दूध देगी। तो आप जोड़ के देखिए कहाँ 6 किलो अनाज और कहाँ 1 किलो अनाज, तो आप 5 किलो अनाज का जो पैसा है आप देखेंगे तो जितना लगता है उसका 20% भी हमको हरा चारा उगाने में नहीं लगता है। लेकिन हमारी एक धारणा बन गई है कि सभी लोग गाय को मकई गेहूँ बादाम की खल्ली सरसों की खल्ली खिलाते हैं, उससे मेरा कॉस्ट बढ़ने लगता है। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इस तरह से खिलाएं तो उनको अच्छा होगा। दूसरा, जब आप बरसीम का बीज खरीदने जा रहे हैं बाजार में तो कभी भी सस्ता बीज ना खरीदें या किसी किसान से उधार बीज ना लें।
1: अच्छा,
0: क्योंकि वो हाइब्रिड बीज जब आप थोड़ा महंगा होता है लेकिन आपका उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा। आपने खुद और चीज़ों में भी देखा होगा कि धान वगैरह में कि हाइब्रिड धान लगाइएगा तो दूसरे साल अगर उस हाइब्रिड धान को घर का बीज लगाइएगा तो आपको वो उत्पादन नहीं होता है। तो ये बरसी में भी देखा गया है। तो ये में सबसे बढ़िया है कि आप बरदान नाम का एक वेराइटीज है उसे आप खरीद सकते हैं। बुंदेल बरसीम 3 भी है, JHB 17-1 भी है, JHB 17-2 है। अगर इन वेराइटीज का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। साथ में पशुपालक इसके बाद रबी के बाद जो है हमारा गर्मा शुरू होगा तो गर्मा में आप सुडान ग्रास MP चेरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में हम किसान भाइयों को देख रहे हैं पाटन इलाके में कि वो MP चेरी और सुडान ग्रास को लगा रहे हैं। उसमें सिर्फ आपको सावधानी ये बरतना चाहिए कि 50 से 55 दिन के पहले सुडान MP चेरी को न खिलाएं और 50 से 55 दिन के बाद ही तब खिलाने लगे तो एक बार जरूर खेत में जाएं और देख लें कि आपका जो पैर है अगर उसे जमीन में धस रहा है तो यानी कि पानी की मात्रा सही है तो आप उसको काट खिलाएं। अगर जमीन पूरा सूख गया है या किसी कारण पानी की कमी हो रही है तो पशुओं को वो चारे न खिलाएं, क्योंकि उनके ऊपर हाइड्रोसाइनिक एसिड पौधे के ऊपर टॉप्स में आ जाते हैं जो आपको खिलाने पर पशुओं के लिए ये जहर का काम करता है और पशुओं की तत्काल मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में पशुपालक भाइयों को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर MP चेरी और सुडान ग्रास का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी की मात्रा को सही बनाए रखें। इसके बाद आपका भदई आता है तो वही जो गर्मा में MP चेरी और सुडान है उसको लगाने का तो वो आप लगा सकते हैं। जैसे अभी वर्तमान में सभी किसान भाई जो हैं अपने घर खेतों में जो लगाए हुए हैं MP चेरी उसे खिला रहे हैं पशुपालकों को और दूध ले रहे हैं। इसके बाद एक तीसरा चारा भी है जिसको सालों साल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे चारे में सबसे आसान आपके लिए है मूंगा का पौधा, आप लोगों ने देखा होगा या सहजन भी उसको कहते हैं, तो उसकी पत्तियों को भी पशुओं को खिलाने के लिए। लेकिन ये जब आप 50-100 की संख्या में पौधे लगाएंगे तब भी आपको फायदा होगा। दूसरा सुबबुल भी है किसान भाइयों के पास, उसे लगाएं और उसे खिलाएं। तीसरा एक अभी जो है कैक्टस, जो कांटा होता है जो आपने देखा होगा मोटा मोटा पत्ती उसकी, तो अभी एक ऐसे कैक्टस प्लांट का वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया जिसमें कांटे नहीं है। आप लाल मिट्टी में जहाँ आपका खेत खाली है वहाँ उस पौधे को लगाइएगा तो उस कैक्टस को भी आप चारा मशीन में काट करके अपने पशुओं को खिला सकते हैं
1: जी।
0: इसके बाद एक और है एजोला घास। शहर में जिनके पास जमीन नहीं है अगर वो चाहते हैं कि हम अपने पशुओं को खिलाएं तो एजोला घास एक काई है जो कि आप तालाब में देखते हैं जमा हुआ रहता है
1: जी।
0: उसी टाइप से एक एजोला होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि जमीन में गोबर का घोल बना दिया, उसमें DAP डाल दिया, पोटास डाल दिया, यूरिया डाल दिया और उस कोल में उस घास को डाल देते हैं, वो पानी

0: पछालते रहता है और वो 3 दिन में दुगना हो जाता है।
1: वाह,
0: तो आप जितना एरिया में चाहें तो एजोला घास डाल्टनगंज शहर में, गढ़वा में भी, लातेहार में भी, और गव्य विकास जहाँ भी दूध कलेक्शन सेंटर्स है वहाँ पर आप संपर्क करें, ये एजोला घास आपको मिल जाएगा। इसको नीचे प्लास्टिक लगा करके आप ऐसा कर सकते हैं, और उसमें थोड़ा गोबर कंस होने के कारण घास को अच्छी तरह से धो करके तभी पशुपालकों को दें, तो पशुओं को दें तो आपको पशु खाएंगे चाव से, नहीं तो अथवा गोबर कंस होने के कारण वो नहीं खाते हैं।
1: जी,
0: तो इस तरह से आप शहर में हैं तो एजोला घास का इस्तेमाल करें, गांव देहात में हैं तो आप हमारा मुनगा है या हाथी घास है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: ये तो दुग्ध उत्पादन के लिए बातें हुई, और इससे हमारे पशु के स्वास्थ्य पर, उसके बाढ़ बयान पर क्या असर पड़ता है?
0: आप अगर पशुपालक भाई अपने पशुओं को हरा चारा दे रहे हैं तो सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा आपको कि जो क्रॉसब्रेड नस्ल की हमारी बाछी है, जो अभी हम लोग शहर में देख रहे हैं कि 5-3 साल 4 साल लग जाता है उसे गर्म होने में, उन्हें 12 से 13 महीने में निश्चित रूप से गर्म होना चाहिए। तो हरा चारा देंगे तो वो गर्म होगी, जितना जल्दी गर्म होगी तभी उसका उत्पादन शुरू होगा। गायों में इसी तरह से है कि आप अगर हरा चारा खिलाते हैं तो 3 महीने के अंदर आपकी गाय गर्म हो जाती है तो सालों साल बच्चा देगी। तो ये
1: जी
0: काफ ईयर प्रोग्राम जो है हमारा सक्सेसफुल होगा, तो गाय कम बिछ खेगी तो हमको कम खर्च करना पड़ेगा और ज़्यादा मुनाफा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप हरा चारा देते हैं तो गायों की रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत अधिक रहती है, तो उनसे कोई बीमारी नहीं होती है, तो हमारा वहाँ भी जो बीमारी खत्म होने पर, जो इलाज करने पर खर्च है उसकी भी कमी आती है। तो इस तरह से पशुपालन में हरे चारे के बिना पशुओं को रखना हमारे समझ से बहुत फायदे का सौदा नहीं हो सकता है। इसी तरह से बकरी अगर कोई रखे हुए हैं तो उनके लिए भी हरा चारा, तो ये सभी चारे बकरियों के लिए भी है कि अगर हम किसी कारण से उन्हें ग्रेजिंग पर नहीं ले जा पा रहे चराने के लिए, तो
1: जी
0: उन्हें
1: जी
0: घर में ही हम हरा चारा दे कर करके उनको रखें, तो उससे भी हमारा मांस उत्पादन बढ़ सकता है। सुअर में भी हम बरसीम घास का, या थोड़े पौधे छोटे होते हैं तो उनको भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि आंशिक रूप से हरे चारे पर, आंशिक रूप से अनाज के ऊपर सुअर पालन को किया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है।
1: सर, एक सवाल हमारे सामने आता है कि जहाँ पर हरा चारा प्राप्त करना मुश्किल सा कार्य है, नगण्य स्थिति है, तो उस परिस्थिति में हमारे किसान भाई पशुओं को किस तरह का स्वादिष्ट चारा दें जिससे कि ज्यादा लाभ?
0: अब अगर हरा चारा उपलब्ध नहीं हो रहा तो इसके लिए हमारे समझ में सलाह ये है कि कुछ किसान भाई जो गांव में रहते हैं वो हरे चारा का उत्पादन करें और शहरों में लाकर बेचें, तो उससे उनको शहर वाले को, जो गायें हैं या जो पशुपालक हैं उनको हरा चारा मिल जाएगा, उनको बेचने से मुनाफा हो जाएगा। और दूसरा ये कि आप सभी जानते हैं या कुछ किसान भाई इस्तेमाल भी करते होंगे मिनरल मिक्सर।
1: अच्छा,
0: आप सभी किसान भाई को, पशुपालकों को ये जानकारी है कि 16 तरह के खनिज होते हैं और 3-4 टाइप के विटामिन्स होते हैं जो गायों के लिए जो आवश्यक है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। ये 4 विटामिन जो हैं ये उनके प्रजनन क्षमता को सुधार के लिए ये जरूरत है। साथ में दूध बढ़ाने के लिए सभी पशुपालक भाइयों को मालूम रहता है कि कैल्शियम के साथ अगर फॉस्फोरस और विटामिन डी न दिया जाए, सिर्फ कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो मिनरल मिक्सर अगर 50 से 100 ग्राम दे रहे हैं तो इसके आंशिक रूप से पूर्ति हो सकती है।
1: और हमारे ग्रामीण भाई बहन को आप क्या कहना चाहेंगे संदेश?
0: संदेश के रूप में मैं किसान भाइयों को यही कहूंगा कि आप जहाँ कहीं से भी हो, अगर आप पशु रखे हुए हैं तो हरे चारे जरूर लगाएं और अपना मुनाफा बढ़ाएं, और इस तरह से देश, जो हमारे झारखंड में दूध का उत्पादन कम है, वो राष्ट्र का जो औसत है उसके स्तर तक पहुंच सके, और इस तरह से झारखंड का विकास देश का विकास है और आपका विकास साथ में निहित है। तो मैं ये कहूँगा अंतिम में कि आप हरा चारा जरूर लगाएं, ऐसी कोई कठिनाई होती है तो आप अपने प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी से, जिला पशुपालन पदाधिकारी से पता कर सकते हैं कि हरे चारे के उपलब्ध सीड कहाँ पर उपलब्ध है, हमें क्या करना चाहिए, तो आपको अच्छी जानकारी मिल सकती है।
1: और ये मुफ्त वितरण भी होता?
0: अभी कुछ चारे जो आ रहे हैं वो दूध संग्रहण केंद्र जो आपका है, जहाँ पर आप दूध मेधा डेयरी को आप दे रहे हैं, वहाँ से संपर्क करने पर आपको इसकी भी उपलब्धता है। बट विभाग में अभी, जिला पशुपालन कार्यालय में इसकी उपलब्धता अभी नहीं है। ये डाल्टनगंज में किसी भी खाद दुकान, बीज दुकान में आप संपर्क करें, लेकिन ब्रांडेड वेराइटीज जब भी लें तो ब्रांडेड वेराइटीज लें, अधिक उत्पादन होगा, यही मैं कहना चाहता हूँ।
1: आप थे डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, पशु चारा से संबंधित विस्तृत जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
2: हमारे ग्रामीण कृषक महिलाएं बहनें सुन रही थी भेंट वार्ता, पशुओं के स्वास्थ्य में हरे चारे का महत्व। भेंट वार्ताकार थे आदर्श ग्राम पदाधिकारी पलामू के डॉक्टर

0: प्रमोद कुमार, बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और अब आइए सुनते हैं और फिर चर्चा आइए आपको बात करते हैं स्वयं सहायता समूह में ग्रामीण महिलाओं का विकास। बहनों कहते हैं कि एकता में शक्ति होती है और यही बात स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप पर पूरी तरह लागू होती है। जब 10 से 20 महिलाएं मिलकर एक समूह बनाती हैं, नियमित बचत करती हैं और मिलकर छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करती हैं तो यही समूह उनके जीवन में बदलाव की नई कहानी लिखता है।
1: बहनों स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाता है। समूह की नियमित बचत से महिलाएं आवश्यकता पड़ने पर कम ब्याज पर ऋण ले सकती हैं। इससे वे मधुमक्खी पालन, डेयरी, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन, अचार पापड़, मसाला निर्माण, सिलाई कढ़ाई, अगरबत्ती निर्माण जैसे छोटे छोटे उद्योग शुरू कर सकती हैं। इससे केवल आय ही नहीं बढ़ती बल्कि महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। वे अपने बच्चों की शिक्षा, परिवार के स्वास्थ्य और घर की आर्थिक ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर पाती हैं। स्वयं सहायता समूह महिलाओं को प्रशिक्षण, बैंक से जुड़ने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और अपने उत्पादों को बाजार तक पहुँचाने में भी सहायता करता है। आज अनेक ग्रामीण महिलाएं अपने समूहों के माध्यम से सफल उद्यमी बन चुकी हैं और अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं। बहनों यदि आपके गांव में स्वयं सहायता समूह है तो उसे अवश्य जुड़िए और यदि नहीं है तो मिलकर नया समूह बनाइए। छोटी छोटी बचत, आपसी सहयोग और दृढ़ संकल्प से बड़ा परिवर्तन संभव है। सशक्त महिला, सशक्त समूह समृद्ध गांव और विकसित भारत की पहचान है।
0: बहनों स्वयं सहायता समूह केवल एक बचत समूह नहीं है बल्कि यह आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और सामूहिक विकास का मजबूत माध्यम भी है। जब गांव की महिलाएं एक साथ जुड़ती हैं, नियमित बचत करती हैं और मिलकर निर्णय लेती हैं तो वे अपनी आर्थिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक पहचान भी मजबूत करती हैं। छोटी छोटी बचत से शुरू यात्रा आज अनेक महिलाओं को सफल उद्यमी बना चुकी हैं। स्वयं सहायता समूह महिलाओं को केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाता है। समूह की बैठकों में महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, बालिका शिक्षा, जल संरक्षण और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करती हैं। इससे उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित होती है और वे गाँव के विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने लगती हैं। बहनों सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है एकता, अनुशासन और निरंतर प्रयास। यदि समूह की प्रत्येक सदस्य ईमानदारी से बचत करें, समय पर बैठक में भाग ले और मिलकर निर्णय ले तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं रहता। आज आवश्यकता है कि हर ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़े, नए कौशल सीखे, आधुनिक तकनीक बनाए और अपने उत्पादों को बेहतर गुणवत्ता के साथ बाजार तक पहुँचाए। इससे न केवल परिवार की आय बढ़ेगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी उज्जवल होगा। हम बचत करेंगे, संगठित रहेंगे, स्वरोजगार अपनाएंगे और अपने गांव को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाएंगे। यह संकल्प हर महिला को लेना चाहिए।

0: और अब बातें अगस्त माह के कृषि कार्य के लिए ग्रामीण कृषक महिलाएं क्या करें, इस विषय पर बात करते हैं। कृषक महिलाएं बहनों, अगस्त का महीना खरीफ फसलों की देखभाल का महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय थोड़ी सावधानी और समय पर किए कार्य अच्छी पैदावार सुनिश्चित कर सकते हैं। आप खेती से भी जुड़ी रहती हैं तो कुछ बातों का खास ध्यान रखें, जैसे धान, मक्का, बाजरा, अरहर और अन्य खरीफ फसलों में समय पर निराई गुड़ाई करें ताकि खरपतवार फसल का पोषण ना छीन सके। वर्षा के अनुसार खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था जरूर रखें, खेत में अधिक पानी भरने से फसलों को नुकसान हो सकता है।
1: और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। फसलों में कीट और रोग के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेकर उचित उपचार करें।

रसोई बगीचे यानी किचन गार्डन में पालक, मेथी, धनिया और अन्य मौसमी सब्जियों की बुआई करें। पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था करें और उनके स्वास्थ्य और टीकाकरण का ध्यान रखें। वर्षा जल का संरक्षण करें और खेतों की मेड़ों को मजबूत बनाएं।

0: हम अपनी मेहनत का बेहतर उत्पादन कर सकते हैं। धान की फसल में नियमित रूप से खेत का निरीक्षण करें। जहां पौधों की संख्या कम हो वहां खाली स्थानों पर रोपाई पूरी करें। खेत में पानी का स्तर संतुलित रखें। लगातार वर्षा होने पर अतिरिक्त पानी की निकासी अवश्य करें। खरपतवार फसल के पोषक तत्व को कम कर देते हैं, इसलिए समय पर निराई गुड़ाई करना बहुत ही आवश्यक है। और कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उर्वरकों का उपयोग करें और बिना आवश्यकता के रासायनिक दवाओं का उपयोग ना करें।
1: बहनों, कुछ बात और भी ज़रूरी है, जैसे फसल में पत्तियां पीली पड़ रही हों, कीट दिखाई दे या किसी रोग के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह लें। समय पर उपचार करने से फसल को बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है। बहनों, इस मौसम में रसोई बगीचे पर भी ध्यान दें। घर के आसपास पालक, मेथी, धनिया, मूली, सेम और अन्य मौसमी सब्जियां लगाएं। इससे परिवार को ताजी और पौष्टिक सब्जियां मिलेंगी और खर्च भी कम होगा। साथ ही पशुओं के रहने का स्थान साफ रखें, उन्हें स्वच्छ पानी और पौष्टिक चारा दें और समय पर टीकाकरण करवाएं। स्वस्थ पशु ही किसानों की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। यदि समय मिले तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, अचार, पापड़ या अन्य कुटीर उद्योगों से जुड़कर अतिरिक्त आय भी अर्जित करें। याद रखिए बहनों, समय पर किया गया कृषि कार्य अच्छी फसल की असली पहली पहचान है। मेहनती महिला किसान ही समृद्ध परिवार और समृद्ध गाँव की आधारशिला है।
0: तो ग्रामीण महिला बहनों, इसी चर्चा के बाद अब हमारा समय भी आपसे विदा लेने का हो चला है, इसलिए बातें आज बस यहीं तक। तो इसी के साथ कार्यक्रम ग्रामीण सभा से अब दीजिए रागनी कुमारी और
1: प्रतिमा वर्मा को
0: अनुमति।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण सभा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और ज़िले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
1: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
0: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। रांची में छात्रों के आंदोलन के बीच राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री। युवाओं के साथ न्याय का राज्यपाल को दिलाया भरोसा। विधानसभा के मॉनसून सत्र कल से। रांची में हुई सर्वदलीय बैठक। अध्यक्ष का सदन के सुचारू संचालन पर जोर। राज्य में SIR के तहत प्रारूप मतदाता प्रकाशित। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया 4 सितंबर तक मतदाता दर्ज करा सकते हैं दावा और आपत्ति। राज्य के कई इलाकों में 8 अगस्त तक भारी बारिश का पूर्वानुमान। आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी। और जूनियर राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम का दमदार प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश को पराजित कर सेमीफाइनल में बनाई जगह। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज लोक भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने JPSC और JSSA की नियुक्ति प्रक्रियाओं में

0: कथित अनियमितताओं तथा रांची में चल रहे छात्र आंदोलन की जानकारी दी। श्री सोरेन ने राज्यपाल को आश्वस्त किया कि सरकार छात्रों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। श्री सोरेन ने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और सरकार सभी पहलुओं को देखकर आगे फैसला लेगी। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं।
1: आज राज्यपाल महोदय से मुलाकात किया और वर्तमान परिस्थिति पर हम लोगों ने चर्चा की। ये राष्ट्रीय समस्या का रूप दिख रहा है। कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं, कई लोग यहाँ जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है और कुल मिला जुला करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपनी कामों में लगा हुआ है।
0: इधर राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में जेपीएससी में कथित अनियमितता को लेकर छात्र संगठनों ने आज प्रदर्शन किया। राजधानी के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 12वें दिन भी विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी रहा। आंदोलन को धार देने के लिए कई अभ्यर्थियों और विद्यार्थियों ने भूख हड़ताल की है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका अनशन जारी रहेगा।
2: हम लोग को जब तक सरकार हम लोग की मांगे क्यों नहीं पूरी कर लेती तब तक हम लोग यहाँ पे अड़ी रहेंगे, अन्न त्याग देंगे। जिस दिन हम हमारी मांगे को पूरी हो जाएगी उस दिन हम अन्न ग्रहण करने का कोशिश करेंगे।
0: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर रांची में जोरदार प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी नेताओं ने राज्य सरकार पर युवाओं की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि छात्रों की मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
3: झारखंड में 14वें जेपीएससी को लेकर जो धांधली झारखंड सरकार के द्वारा की गई है उसको लेकर आज यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज हम लोग ने एक आक्रोश मार्च को निकाला है। और अगर जल्द से जल्द अगर झारखंड सरकार अगर राज्य में यहाँ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए जो स्टूडेंट हैं अगर आके वहाँ नहीं बात करेंगे तो हम लोग बहुत जल्द एक बहुत बड़ा आक्रोश मार्च निकालेंगे और हो सकता है कि सीएम आवास में भी हम लोग घुसने का काम करें।
0: झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा। सत्र के सफल, सुचारू और गरिमापूर्ण संचालन को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के दौरान सदन के सुचारू संचालन में सभी दलों से सकारात्मक सहयोग का आग्रह किया।
4: विधानसभा के सफल और सार्थक संचालन के लिए जो जो आवश्यक तैयारियां है उन तमाम आवश्यक तैयारियां विधानसभा की ओर से कर ली गई है ताकि विधानसभा के सफल संचालन में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न न हो उसका तमाम व्यवस्था वो अपने स्तर से करेंगे।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रिम्स की स्थिति पर राज्य सरकार पर हमला बोला है। श्री मरांडी ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि रिम्स की दुर्दशा मरीजों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द साबित हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री को घेरते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जो सरकार मौजूदा रिम्स की व्यवस्था तक नहीं संभाल पा रही है वह आदिवासियों की जमीन छीन कर रिम्स 2 बनाने की बात कर रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
5: सेवा जोहार, तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े सांस्कृतिक महाकुंभ का गवाह बनने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार लेकर आ रही है झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026। आगामी 9 और 10 अगस्त को रांची का मोराबादी मैदान गूंजेगा 5000 से अधिक लोक कलाकारों, झूमर, छऊ और पारंपरिक जनजातीय प्रस्तुतियों से। महोत्सव में होंगे भव्य उद्घाटन एवं सम्मान समारोह, कला एवं शिल्प प्रदर्शनी।

0: पुस्तक मेला, स्वतंत्रता सेनानी विरासत प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी, ट्राइबल फैशन शो, रॉक बैंड की शानदार प्रस्तुतियाँ, इमर्सिव जोन और 700 ड्रोन का भव्य शो, आधुनिक 5D थिएटर और AI तकनीक इस अनुभव को और भी यादगार बनाएंगे।
1: यहाँ मिलेगा पारंपरिक जनजातीय खान पान, आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता, आकर्षक हस्तशिल्प, नॉलेज पार्टनर्स और लेखकों से संवाद का अवसर। सब परिवार आइए और अपनी संस्कृति के रंग में घुल जाइए, अपनी परंपरा और अपनी पहचान का उत्सव गर्व के साथ मनाइए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: राज्य में आज SIR अभियान के तहत प्रारूप मतदाता और ASDD सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि मतदाता 4 सितंबर तक दावा आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।
3: सभी पोलिंग स्टेशन पर ड्राफ्ट रोल का पब्लिश की गई, साथ साथ में ASDD सूची है, किसका अनकलेक्टेबल इनमरेशन फॉर्म का कैटेगरी है, उनका भी सूचना सभी बूथों पर दिया हुआ। इसी में किसी का भी कोई ऑब्जेक्शन होगा, कोई क्लेम होगा, अपने फाइल कर सकते हैं। 4 सितंबर तक उनका समय है। आपका कोई भी ऑब्जेक्शन है, क्लेम है, आपका फॉर्म 6A, 7A, 8A में कर सकते हैं।
2: इधर राज्य में नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए आज सोशल मीडिया पर न्यू वोटर्स हैशटैग चलाया गया और सभी पात्र वोटरों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि इस वर्ष 1 अक्टूबर को जिन युवाओं की उम्र 18 वर्ष पूरी हो जाएगी, वे अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करा सकते हैं। मौसम। राज्य के कई क्षेत्रों में 8 अगस्त तक बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और सरायकेला खरसावां तथा पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज भारी बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु में आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने उत्तर प्रदेश को 4-3 से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। आज के क्वार्टर फाइनल मैच में झारखंड की टीम बराबरी पर रही, लेकिन टाई ब्रेकर में मैच जीत लिया। कोयला प्रक्षेत्र का 3 दिवसीय क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट आज से धनबाद पुलिस केंद्र में शुरू हुआ। 7 अगस्त तक चलने वाले इस पुलिस ड्यूटी मीट का उद्घाटन बोकारो प्रक्षेत्र के IG शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने किया। इस प्रतियोगिता में चयनित पुलिसकर्मी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होंगे। मुख्य समाचार। रांची में छात्रों के आंदोलन के बीच राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री। युवाओं के साथ न्याय का राज्यपाल को दिलाया भरोसा। विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से। रांची में हुई सर्वदलीय बैठक। अध्यक्ष का सदन के सुचारू संचालन पर जोर। राज्य में SIR के तहत प्रारूप मतदाता प्रकाशित। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया 4 सितंबर तक मतदाता दर्ज करा सकते हैं दावा और आपत्ति। राज्य के कई इलाकों में 8 अगस्त तक भारी बारिश का पूर्वानुमान। आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी। और जूनियर राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम का दमदार प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश को पराजित कर सेमीफाइनल में बनाई जगह। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत तारावत, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
6: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन। रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस, RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पलामू जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे पलामू संवाददाता।
1: पलामू के परवा प्रखंड के सिक्का गांव में रहस्यमयी बीमारी से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने खुलासा कर दिया है। उन्होंने बताया कि ऑर्जीमोन मिला सरसों तेल खाने से ये घटना हुई है।
2: वो सरसों तेल उनके खेत में ही उगाया हुआ था और उनको घर में ही करवाए थे हम लोग, तो हो सकता है कि जहाँ पर सरसों की खेती कर रहे हैं वहीं पर यह जो मोन बायल प्लांट भी होगा और उसमें कटाई करते हैं तो एक दो पौधा चलती से या उसका दाना चीड़ में मिल गया होगा।
1: पलामू के चैनपुर प्रखंड के रामपुर गोलीकांड में हुई सिकंदर चौधरी की हत्या मामले में कथित प्रशासनिक विफलता को लेकर शरणालय में प्रदर्शन हुआ। विकासशील इंसाफ पार्टी ने प्रदर्शन आयोजित किया। यहां वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सह बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी उपस्थित थे। यहां उन्होंने कहा कि न्याय और अधिकार के लिए लगातार संघर्ष करना होगा।
3: बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जब वोट लेने का समय आता है तो गरीब पिछड़ा दलित के दरवाजे पे लोग जाते हैं और जब उनके घर पे घटना होता है, हत्या होता है, मर्डर होता है तो उसके घर पे नहीं जाते हैं। तो ये तो यहाँ के स्थानीय जो वोटर है उनको समझने की आवश्यकता है कि आप कैसे जनप्रतिनिधि को जिताए हैं, सांसद बनाए, विधायक बनाए, जो आपके दुख सुख में आपके बीच में नहीं आ रहे। तो इससे उन सभी को सीखने की आवश्यकता है, उनको किसी जात को देख के नहीं काम करना चाहिए। समाज के चाहे जिस जाति धर्म का कोई अपराधी जो है वो उसका कोई जाति नहीं होता।
1: पलामू पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में करीब 320 किलो गांजा लदा ट्रक जब्त किया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 1.5 लाख करोड़ बताई जा रही है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिव्यांश शुक्ल ने बताया कि
4: करीब रात को 12:30 के आसपास हम लोग चेकिंग लगवाए गमरिया गांव के सामने छतरपुर मेन रोड पर, जहां एक ट्रक की जो जिसका नंबर संदिग्ध था उसको रोका गया। पूछताछ करके क्रम में पता चला कि उसमें बड़ी मात्रा में गांजा लेके जाया जा रहा है छतरपुर की तरफ।
1: नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री रोकने को लेकर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पलामू पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। इसी क्रम में पंजाब तस्करी से पहले डाल्टनगंज रेलवे कॉलोनी से 3 तस्करों को 3 किलो अफीम के साथ दबोच लिया गया। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने पूरी जानकारी दी।
5: पलामू पुलिस का ऑपरेशन प्रहार अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाया जा रहा है। हमारी जो पहल है इसके तहत कल डाउन थाना अंतर्गत 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि तीनों व्यक्ति मनातू थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से लगभग 3.25 केजी अफीम जब्त हुई है। ये तीनों व्यक्ति अफीम की तस्करी करने के लिए अपने क्षेत्र से लेके ट्रेन के माध्यम से पंजाब लेने की इनकी योजना थी। पुलिस को प्राप्त हुई गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है।
1: झारखंड लोक सेवा आयोग मेघा घोटाले की जांच अब पलामू तक पहुंच गई है। सोमवार को सीआईडी और पलामू पुलिस के संयुक्त टीम ने जिले के 2 आरोपितों संतोष कुमार सिंह एवं रविशंकर कुमार के ठिकानों पर छापामारी की और कई दस्तावेज साक्ष्य के साथ जब्त किए। फॉरेंसिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू।
0: अभी आप सुन रहे थे पलामू जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। पेशे खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। एक रंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल आवाजों में गाए कुछ फिल्म नगमे। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं वक्त की आवाज फिल्म के इस नगमे से। आवाजें हैं जी हाँ किशोर कुमार और आशा भोसले की। शब्द रचना इंदिवर की है और इसकी तर्ज बनाई है बप्पी लाहिरी ने।

आज के एक रंग कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल आवाजों में कुछ फिल्म नगमे। अभी आपने वक्त की आवाज फिल्म का गीत सुना। गीतकार थे इंदीवर और संगीतकार बप्पी लाहिरी। अगला गीत हत्या फिल्म से।

हत्या फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की, गीतकार थे इंदिवर और संगीतकार बप्पी लहरी। अगला गीत आई सुनते हैं दिल जला फिल्म से, आवाज़ें हैं जी हाँ किशोर कुमार और आशा भोसले की, शब्द रचना इंदिवर की है और तर्ज बप्पी लहरी की।

मजाल फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। गीतकार थे इंदिवर और संगीतकार बप्पी लाहिरी। आज के एक रंग कार्यक्रम में आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल आवाज़ों में कुछ फिल्म नगमे। इसी नगमे के साथ ही अब आज का एक रंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है स्वास्थ्य कार्यक्रम कल्याणी के अंतर्गत भेंट वार्ता विवाह की सही उम्र। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर निर्मला सिंह रांची, भेंट करता हैं श्री संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों नमस्कार। मित्रों आजकल जिंदगी तेजी से बदल रही है, सभी यही चाहते हैं कि एक अच्छा और मोटी तनख्वाह वाला कैरियर चुने। कैरियर चुनने की राह में शादी भी एक बहुत बड़ा फैसला होता है और ये जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू भी है, इसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कैरियर संवारने के चक्कर में लोग शादी में विलंब करने लग जाते हैं और एकाकी जीवन जीने लगते हैं। आखिर विवाह कब और किस उम्र में किया जाए? हालांकि सरकार की गाइडलाइन 18 और 21 वर्ष है, और यदि विवाह विलंब से हो तो क्या परेशानियां उत्पन्न होने लग जाती है? इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निर्मला सिंह। मैडम स्वागत है। आजकल शादी की उम्र बढ़ती जा रही है, क्या कारण मान रहे हैं आज के बदलते दौर में इसका?
2: यही बात है जो अभी आपने प्रस्तावना में कहा कि लोग सोच रहे हैं कि शादी तब करें जब हम बिल्कुल अपने करियर में सेटल हो जाएं, पढ़ाई ख़त्म कर लें, नौकरी चाकरी करने लगे, जो भी करियर के एक हाइट पहुंचना है, अच्छी कमाई करने लगे, ताकि हम अपने परिवार को, खुद को

0: सब तरह से इकोनॉमिकली सक्षम पाएं, सारे शौक पूरे कर सकें। अब इसमें शादी की उम्र भागती चली जा रही है, तो जो भी है जितना कंफर्टेबल हो एटलीस्ट 30 आने तक उनको फैमिली बनाने की कोशिश करनी चाहिए। 30 के बाद मुश्किल आने लगती है।
1: मुश्किलें क्या आ जाती हैं यदि 30 के बाद विवाह के लोग करते हैं?
0: 30 के बाद अगर विवाह करते हैं, 30 के बाद आपको नहीं पता कि वो 31 में कर रहे हैं कि 32 में कर
1: जी
0: रहे हैं, ठीक है। 30 के बाद अगर वो विवाह करते हैं तो है कि वो उनको पता है कि लेट मैं शादी कर रही हूँ। शादी करते के साथ उनको चाहिए कि अभी मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। मैरिज का मतलब है कि हम अपना करियर का काम कर लिए हैं और अब हमको बच्चा ही करना है, इसलिए वो शादी किए, लेट किए और अब तुरंत हमको बच्चा चाहिए। ये चीज़ उनके अंदर एक स्ट्रेस भी देता है कि तुरंत आप जो जब चाहेंगे तब हार्मोन का लेवल उस टाइप से नहीं हो जाएगा ना, और जो सिस्टम है आपके हिसाब से नहीं काम करेंगे। अब एक तरह का ये स्ट्रेस उनके अंदर आ जाता है कि हमको तुरंत प्रेग्नेंट होना। नेचुरली वो बहुत जल्दी डॉक्टर के पास भी चले आते हैं, अगर जल्दी नहीं भी आते हैं तो किसी को भी हम लोग तब इलाज के लिए लेते हैं, जबकि 1 साल कम से कम अनप्रोटेक्टेड कोई सुरक्षा का ये मापदंड लिए हुए पति पत्नी अगर साथ रहता है फिजिकली, तब अगर बच्चा नहीं होता है तब उसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इलाज करते हैं, अगर कुछ निकलता है तो उसका इलाज करते हैं।
1: कैरियर की राह पर चलते चलते जब एक मुकाम आता है तो ये सोचने लग जाते हैं कि अब शादी कर लें और जल्द से जल्द परिवार भी हमारा बन जाए,
0: बिल्कुल।
1: तो इसमें मानसिक तनाव भी होने लग जाता है, लोग अवसाद से घिर जाते हैं। आपके हिसाब से, आप वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, शादी की एक सही उम्र आज के समय में क्या होनी चाहिए ताकि यदि उसके बाद करते हैं तो जटिलताएँ उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है?
0: देखिए न्यूमेरिकली आप पूछेगा कि कितने उम्र में हो जानी चाहिए, ऐसे तो हर किसी का सिस्टम एक अपनी तरह से भी होता है और बहुत सी बातों पे भी डिपेंड करता है। अगर शादी हम कर रहे हैं नेचुरली परिवार को आगे बढ़ाना है तो क्या है कि किसका किस तरह का बनावट भी है। बहुत लेट से करने से क्या होता है कि ऐसे भी आप देखेंगे कि 25 के बाद जनरली बॉडी में ओबेसिटी भी आने लगती है ना, और मेंस्ट्रुएशन हो सकता है कि अभी जो ठीक आ रहा हो वो इतना स्ट्रेस लेकर के जो भी करियर का या जो भी कही और एज सब मिला करके हो सकता है कि बहुत अच्छे से हमारा साइकिल बढ़िया से ना हो और हमारे अंडे अच्छे ना निकले। तो नहीं अच्छे निकलेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी भी आप जब चाहेंगे तब होगा भी नहीं, और अगर होता भी है तो अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए अगर नंबर में आप पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि एक लड़की को 25 साल तक शादी कर लेनी चाहिए।
1: लेकिन आज देखा जाए तो 25 साल कैरियर संवारते संवारते में ही निकल जाता है।
0: बिल्कुल, और इसलिए मैं 25 कह रही हूँ कि 25 और जो भी मतलब 30 के पहले शादी हो जाए, पहला मतलब बेबी जो है वो 30 तक में कोशिश करे, आदमी के परिवार बढ़ाना है तो 30 तक में वो कर ले।
1: एक जो पुराने समय परिवार के बीच में जो अपनत्व की भावना होती थी वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। आज के लड़के लड़कियाँ चाहते हैं कि पहले हम अच्छा रोजगार प्राप्त कर लें, अच्छे तनख्वाह वाले हम कैरियर अपना लें, और ऐसे में वो परिवार से दूरियाँ उनकी बढ़ती जाती है।
0: हाँ बिल्कुल, एक क्या है कि स्ट्रगल किया, उन्होंने अचीव किया, जो भी एजुकेशन कंप्लीट किया, नौकरी में आए, नौकरी में भी अच्छा कर रहे हैं, तरह तरह के पीयर प्रेशर है उनके ऊपर, एज भी हो गई है, एक उनकी अपनी मतलब मानसिकता डेवलप हो गई है दोनों की, लड़का हो लड़की हो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि न्यूक्लियर फैमिली का चलन भी इसीलिए हुआ क्योंकि दोनों को ही कमाना है, लड़का लड़की दोनों को कमाना है, और जब कमाई करने लगे हैं अच्छी कमाई तभी शादी भी कर रहे हैं। नेचुरली परिवार के इसमें नहीं है, वो कहीं और हैं, अपने इसकी जगह में है, जहाँ पे भी उनकी पोस्टिंग है वहाँ पर हैं वो, और परिवार से उनका संबंध भी नहीं है। प्लस कि पहले जो कम उम्र में होती थी शादी, इकोनॉमिकली भी परिवार पे डिपेंडेंट होते थे, या जल्दी शादी हुई बच्चे हो गए उनको पालना है सब तरह से मिला करके, तो इसलिए परिवार में बड़े बुजुर्गों का जो भी माता पिता हुए या और लोग भी हुए उन सबका रोल था, तो हमें स्ट्रेस भी कम होता था। अब क्या है कि दोनों की पर्सनालिटी बनी हुई है, दोनों एक अपनी मानसिकता के साथ है, दोनों खुद भी न्यूक्लियर फैमिली में और कोई घर में भी नहीं है, अब दोनों अपने काम से आए हैं, अपने अपने से जूझ रहे हैं, और कोई भी बात होता है कि थोड़ा सा कोई मन लायक नहीं बात किया, दोनों एक दूसरे से झगड़ भी पड़ते हैं। प्लस लेट से शादी किए करते हैं अगर, तो ये भी बात है कि वो तुरंत तुरंत मतलब सब कुछ उनको चाहिए होता है, और उस पर्सनालिटी के साथ में एक दूसरे को सुनने का भी टाइम नहीं है उनके पास। देखिए डिवोर्स रेट आज क्या हालत है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट तो हो गए हैं, अच्छा कमा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या है स्वास्थ्य भी नहीं रह जाता है धीरे धीरे, इतना स्ट्रेस लीजिएगा तो स्वास्थ्य का क्या होगा।
1: जब आप काफ़ी विलंब से विवाह के लिए तैयार होते हैं तो आप मानसिक रूप से काफ़ी परिपक्व होते हैं और आप फिर अपने हिसाब से सोचने लग जाते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, वो हमारे हिसाब से ही हो, एक मैच आप करने लग जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो इसमें एक तारतम्य नहीं बैठता है, फिर समस्याएं शुरू।
0: वही बात हो, मतलब

0: काटना चाहता है ना, अकेले तो झेल नहीं सकेगा लाइफ में, तो उसके लिए आपके पास नहीं है, क्योंकि आप हर चीज़ में डिले कर। बच्चा भी कोशिश करिए, अगर शादी आपने कर ली है तो बच्चा भी कोशिश करिए कि 30 तक में कम से कम एक फर्स्ट बेबी तो आपका ही जाना चाहिए, ज़्यादा डिले ना हो। मैंने देखा है कि लोग 5 साल 10 साल डिले करते हैं, लगता है कि पता नहीं वो क्या बन जाएंगे उस समय। ऐसा कुछ नहीं, कभी कभी नेगेटिव भी जाता है, वो स्ट्रेस आपको बहुत फ्रूटफुल नहीं बना पाता है। मैं एक डॉक्टर की तरह बात करूं तो लड़की का तो है ही कि भाई उसको हर महीने एक अंडा निकलता है जो कि वही फर्टिलाइज करता है तो बच्चे पैदा होते हैं। अब क्या है कि जब आपका पीरियड शुरू हुआ, जैसे वो मैच्योर हुआ आपका सिस्टम हार्मोन का, हर महीने आपका एक एक निकल रहा है, तो हर महीने तो डिप्लीट हो रहे, जो अच्छे होते हैं, जो बढ़िया सब तरह से अच्छे अंडे होते हैं, वो आपको शुरू में निकलते जाते हैं, बाद में जो बच जाते हैं वो आपके वो बेकार वाले, ख़राब वाले होते हैं, सब क्वालिटी वाले होते हैं। उसी तरह से पुरुषों में भी है, डिले करते हैं, ज़्यादातर पुरुष बाहर रहे, मोटरसाइकिल चलाए, जींस जैसे कपड़े पहने, ये सब मिला के उनमें भी इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा इन दिनों हो गई है। स्पर्म का काउंट देखते हैं हम लोग, उसकी क्वालिटी देखते हैं, बहुत ही बेकार होने लगा।
1: तो इसका असर भ्रूण पर भी पड़ेगा मैडम?
0: भ्रूण पे ही पड़ेगा, इसलिए इसकी बातें हो रही हैं। सेक्सुअल लाइफ पे ना भी पड़े तो भ्रूण पे ही इसका असर पड़ता है, क्योंकि तो लेट से भी शादी हो रही है, अच्छे आपके पास अंडे स्पर्म्स भी नहीं है, और ऊपर ये सब भी फैक्टर्स हो जा रहे हैं। प्लस 35 के बाद ऐसे भी देखिएगा कि सिस्टमिक डिसऑर्डर आ जाता है, लड़का हो या लड़की हो, ब्लड प्रेशर जैसा चीज़, डायबिटीज़ जैसा चीज़, या लड़कियों की जब बच्चा भी जब करने जाती है तो तरह तरह की बीमारियाँ। ये सब अगर प्रॉब्लम पहले से नहीं है, और एक एल्डरली लड़की अगर प्रेग्नेंट होती है, नेचुरल से हो, टेस्ट ट्यूब बेबी से हो, जैसे भी हो, उसमें तरह तरह की बीमारियाँ आने का डर रहता है। तो ब्लड प्रेशर हो जाता है प्रेगनेंसी में आकर के, पहले से नहीं भी है तो डायबिटीज़ हो जाता है। अब उसमें संभालना, आपकी बच्चा को भी ठीक ठीक से एकदम 9 महीने तक पहुँचाना, और माँ का भी स्वास्थ्य, दोनों का स्वास्थ्य, जच्चा बच्चा दोनों को देखना, वो डॉक्टर को पानी पिलाने वाली बात हो जाती है,
1: चुनौती हो जाती है डॉक्टर,
0: बहुत चुनौती हो जाती है। कभी कभी पेशेंट सकम भी कर जाता है। बस कंक्लूजन यही है, टेक होम मैसेज कहिए यही है कि करियर बनाइए, शादी की उम्र को बहुत

0: शादी कर लें और करियर बनाएं, दोनों मिलके ये करें, परिवार का भी इम्पोर्टेंस समझें, अपनी प्रोजनी को भी आगे बढ़ाएं।
1: और परिवार एक बहुत बड़ी संस्था है, यदि आप परिवार में रहते हैं तो एक खुशहाल जिंदगी आप व्यतीत करेंगे और आप खुश रहेंगे, परिवार भी खुश रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निर्मला सिंह, आज आप इस कार्यक्रम में आए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, आज का दिन आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य कार्यक्रम कल्याणी के अंतर्गत भेंट वार्ता, विवाह की सही उम्र। भेंट वार्ताकार थी डॉक्टर निर्मला सिंह रांची, भेंट करता थे श्री संजीव कुमार लाल।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। पेश खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत।

अग्नि साक्षी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की। गीत लिखा था समीर ने और इसकी धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। अगला गीत आइए सुनते हैं दरार फिल्म से।

दरार फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थीं अभिजीत और साधना सरगम की। राहत इंदौरी ने इस गीत को लिखा था और संगीत से सवारा था अनु मलिक ने। अकेले हम अकेले तुम, लीजिए सुनिए इस फिल्म से अगला गीत।

बाजीगर फिल्म का नगमा भी आपने सुना, आवाज़ विनोद राठौर की थी। रानी मलिक ने इस गीत को लिखा था और संगीत से संवारा था अनु मलिक ने। अगला गीत आइए सुनते हैं खिलाड़ी।

चालबाज फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की, आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और यह है चित्रपट से कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म दीवाना से। आवाज कुमार सानू की है, शब्द रचना समीर की है और तर्ज नदीम श्रवण की।

इसी नगमे के साथ ही अब आज का चित्रपट से कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। समाचारों के लिए अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया बने रहें हमारे साथ।

0: भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
2: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है।
3: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से

0: लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग का भी आग्रह किया।
1: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों से अवगत है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित वैश्विक घटनाक्रमों और विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय नियामक दृष्टिकोणों से अवगत रहती है। इसमें डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों की ओर से अपनाए गए उपाय भी शामिल हैं। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए केंद्र सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प तथा गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश ने आज अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को भी अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने के बाद राज्य में बहुत विकास हुआ है।
2: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहाँ के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा तो नागरिक तो वहाँ खुश है।
0: जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।
3: जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौम ए इस्तेहसाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार के 2 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी लोग नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।
4: जो दूसरा मॉड्यूल है पेट्रोल बम फेंकने का और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई आईएसआई के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा और

उनको बताया गया कि आप पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी की एस्टेब्लिशमेंट या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रेकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहां भी ये जाके आए 8 लोग और वहां इनको लोकल एक

0: घेराव करने की घोषणा की है। इस बीच भाजपा ने इन प्रदर्शनों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की चुप्पी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने झारखंड का दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस राज्य में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। श्री पात्रा ने राहुल गांधी की आलोचना की है कि उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मासूम बच्चों को संवाददाता सम्मेलन में घसीटा।
1: जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नरेटिव यहाँ एक्सपोज करना चाहते हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। हैदराबाद में आज ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हुई दो दिन की बैठक का विषय था सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह ने कहा कि भारत की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का उल्लेख इस दौरान किया गया। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, सुशासन और सतत विकास की नींव है। बैठक में ब्रिक्स के सदस्यों ने कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों के ब्रिक्स नेटवर्क के लिए भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की। यह नेटवर्क भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित भगोड़ों का पता लगाने में सहायता करेगा और प्रत्यर्पण में सहयोग भी करेगा जो वर्तमान कानूनी प्रक्रियाओं का पूरक होगा। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। ये ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात पर सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। ये भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार तथा फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय योजना लागू की है। केंद्र सरकार पत्रकार कल्याण योजना लागू करती है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार ने 2014-15 से 2025-26 तक 456 मीडिया कर्मियों या उनके परिवारों को 19 करोड़ 41 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% तक रखा गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.13 रुपए पर बंद हुआ।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया और श्रियांशी वलीशेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठक्कर तथा मिक्स्ड डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त

किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ushered in development and empowerment in Jammu and Kashmir and Ladakh. New Delhi asked Islamabad to end bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, and at Korea Masters Badminton Tournament, Tanvi Sharma and Anmol Kharbamang, seven Indians to enter second round of women's singles. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाकर 37 करने का बिल मंजूर कर लिया है। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड्स को कानूनी हैसियत देने वाले बिल को भी मंजूरी दी। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल से मुतालिक मवाद, डीप फेक मवाद और प्लेटफॉर्म की खामियों पर भारत सरकार से माजरत का इजहार किया है। दफा 370 और 35A की मनसूखी के 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आजम ने मोदी ने कहा कि इन आईनी तब्दीलियों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्की और आवाम को बाख्तियार बनाने के अमल को फरोग मिला है। भारत ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में खूनरेजी बंद करे, दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा करे और भारत के उन इलाकों से दस्तबरदार हो जाए जिन पर उसने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब समेत भारत के 7 खिलाड़ी खवातीन सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। राज्यसभा में बहस के बाद इस बिल को वापस लोकसभा भेज दिया गया। लोकसभा ने इस बिल को पीर के रोज मंजूर किया था। ये बिल सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक कानून 1956 में तरमीम करेगा, जिसके तहत भारत के चीफ जस्टिस के अलावा अदालत आलिया में जजों की मौजूदा तादाद 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में बिल पेश किया। राज्यसभा में बहस का जवाब देते हुए जनाब मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मकसद के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अदलिया पर बढ़ते काम के बोझ और उभरते हुए आईनी और कानूनी मामलात के पेश नजर सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद में इजाफा वक्त की जरूरत और एक बर वक्त इसलाह है। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी एक्ट 2019 के जरिए असल कानून में तरमीम करते हुए पिछली मरतबा चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-तवा मामलात के बोझ से निपटने के लिए जजों की तादाद में इजाफा एक मौसर हल है। इस साल 1 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से ज्यादा मुकदमात जेर इल्तवा थे। अगरचे 2019 से सुप्रीम कोर्ट तकरीबन अपनी मंजूर शुदा मुकम्मल तादाद यानी चीफ जस्टिस समेत 34 जजों के साथ काम कर रही है, फिर भी पिछले साल 75,410 नए मुकदमात दर्ज किए गए और 65,000 से ज्यादा मुकदमात निपटाए गए। सुप्रीम कोर्ट में केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ रही है क्योंकि नए केसेस के इंदराज और उनके हतमी फैसलों के दरमियान एक मुस्तकिल फर्क मौजूद है। तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाने से मुकदमात के जल्द फैसले होंगे और अवाम को बरवक्त इंसाफ मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: लोकसभा ने बैंकर्स बुक्स के शवाहिद से मुतालिक बिल 2026 को मंजूरी दी। इस बिल का मकसद बैंकों के रिकॉर्ड से मुतालिक शवाहिद के कवानीन को जदीद तकाजों से हमाहंग करना है और उन्हें मौजूदा डिजिटल बैंकारी निजाम के मुताबिक बनाना है। इस बिल के जरिए कानूनी फ्रेमवर्क को जदीद बनाया जाएगा ताकि मौजूदा बैंकारी निजाम की जरूरियात पूरी की जा सकें। इसमें यह भी इल्तिजाम है कि बैंक के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल नकल अदालत में बतौर सबूत काबिल कबूल, कानूनी तौर पर दुरुस्त और नाफिजुल अमल होगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने दोपहर 2 बजे ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर यह बिल पेश किया। अपोजिशन अरकान की जानिब से तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर मुसलसल हंगामा आरई के बावजूद लोकसभा ने बगैर किसी बहस के इस बिल को मंजूर कर लिया। बिल की मंजूरी के बाद लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि हुकूमत बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों से वाबस्ता खतरात से वाकिफ है जिनमें नुकसानदेह मवाद

0: रसाई, साइबर तरीके से डराना धमकाना, ऑनलाइन इस्तेहसाल और डिजिटल दश शामिल हैं। आज लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में जनाब वैष्णव ने कहा कि हुकूमत आलमी वाकयात और ऑनलाइन सेफ्टी से मुतालिक बदलते हुए बैन अक्वामी इंजिबाती तरीक़ेकार से आगाह रहती है, जिनमें डिजिटल माहौल में बच्चों के तहफ्फुज़ के सिलसिले में मुख्तलिफ कानूनी इख्तियारात के तहत किए गए इकदाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल जाती डेटा के तहफ्फुज़ से मुतालिक कानून 2023 नाफिज किया जा चुका है, जो डिजिटल जाती डेटा की खातिर एक कानूनी तरीक़ेकार कायम करता है। डीपी एक्ट बच्चों की ऑनलाइन राजदारी के तहफ्फुज़ के लिए एक कानूनी तरीक़ेकार भी फ्राहम करता है। मेटा, जो दुनिया के कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की असल मालिक है, के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने आज भारत सरकार से बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल से मुतालिक मवाद, इससे मुतालिक दिगर मवाद, डीप फेक और प्लेटफॉर्म के कामकाज में खामियों पर माजरत का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक मेटा ने यह भी तस्लीम किया कि मखसूस किस्म के मवाद को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ी रकम अदा की जाती रही। भारत सरकार ने मेटा को वाजे किया कि वो सिर्फ सालिस प्लेटफॉर्म की तारीफ के तहत नहीं आती, बल्कि वो खुद फैसला करती है कि कौन सा मवाद किस तारीफ को दिखाया जाए। इस पर मेटा ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए माजरत का इजहार किया। आज दफा 370 और 35A को तारीखी तौर पर मंसूख किए जाने को 7 बरस मुकम्मल हो गए। इस मौके पर अपने पैगाम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2019 में आज के दिन ही दफा 370 और 35A को मंसूख किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम की जिंदगियों में काया पलट कर देने वाली तब्दीलियां आई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि मरकज के ज़ेर इंतज़ाम दोनों इलाकों में बुनियादी ढांचों में तौसी हुई है और तालीम, हिफ्ज़ान सेहत, सनतकारी और खेलकूद जैसे शोबों में मौके में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि ख्वातीन और हाशिए पर रह रही बिरादरियों और उन अफराद को जिन्हें दहाइयों से बुनियादी आईनी हकूक नहीं दिए गए, उन्हें आईन के मुकम्मल नफाज से बाख्तियार बनाया गया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख की तरक्की के हुकूमत के अज़्म का यादा किया, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर शहरी को विकसित भारत के लिए बड़े ख्वाब देखने, उन्हें शर्मिंदे ताबीर करने और इस सिलसिले में ताउन करने का मौका हासिल हो। दफा 370 को मंसूख किए जाने के 7 बरस मुकम्मल होने के मौके पर कानून इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस तारीखी कदम से जम्मू कश्मीर में तरक्की में तेजी आई है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी, जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहां खुश है।
0: दफा 370 को मंसूख किए जाने के 7 बरस बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, हुक्मरानी, सियाहत, सरमायाकारी और सिक्योरिटी में खातिर खा तरक्की हुई है। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में बेहतर बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, अवामी खिदमात और इक्तसादी तरक्की के जरिए यकसर तब्दीली आई है, जिससे हुक्मरानी और मेयार जिंदगी बेहतर हुए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पंजाब पुलिस ने तलबा के हालिया एहतजाज के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर को निशाना बनाने के सिलसिले में दहशतगर्दी के एक सरहद पार ग्रुप के मंसूबे का पर्दाफाश किया है। अमृतसर पुलिस की जानिब से पता लगाए गए आईएसआई के हामी सरहद पार दहशतगर्दी के दो ग्रुपों ने तहकीकात के दौरान इंकशाफ किया कि वो पेट्रोल बमों के साथ एहतजाज के मकाम पर हमला करने के इरादे से दिल्ली गए थे। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि हिरासत में लिए गए 9 अफराद में से 4 कम उम्र के हैं और उन्हें आईएसआई के आकाओं ने तरबियत दी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मालियाती पॉलिसी कमेटी ने आज अपनी पॉलिसी मीटिंग के अख्तिताम पर अहम पॉलिसी रेपो रेट में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया है और इसे 5.25% बरकरार रखा है। फैसलों का ऐलान करते हुए आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि एमपीसी ने अपने रुख में भी कोई तब्दीली न करने का फैसला किया, जबकि मौजूदा माली बरस में तरक्की की शरह के तखमीनों को 6.6% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने आज मगरबी एशिया और दीगर खित्तों में बदलती हुई सूरत हाल के दरमियान भारतीय मल्लाहों की सलामती

और सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए सीनियर अहदेदारान के साथ आला सतह की जायजा मीटिंग की सदारत की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब सोनवान ने कहा कि मरकज ने मुसलसल मल्लाह पहले का तरीक़ेकार इख्तियार किया है, जिसके सबब दुनिया भर में मल्लाहों की खिदमात फराहम करने वाला भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बना है। उन्होंने कहा कि डीजीकॉम सेंटर मुसीबत के वक्त अलर्ट की निगरानी करने और बचाव कार्रवाइयों में तालमेल की खातिर हर वक्त काम कर रहा है। जारी बहरान के दौरान फंसे हुए 4000 से ज्यादा भारतीय मल्लाहों को बहफाजत वापस लाया गया है, जबकि हंगामी सूरतहाल में कार्रवाई करने वाले वसीलों ने 16000 से ज्यादा कॉल्स और 40000 ईमेल का जवाब दिया है। भारत ने आज पाकिस्तान को मशवरा दिया कि वो अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में खूनरेजी बंद करे, अपनी सरजमीन से सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ काबिल एतमाद, काबिल तस्दीक और ठोस कार्रवाई करे, नीज भारत के उन तमाम इलाकों से फौरी तौर पर दस्तबरदार हो जाए जिन पर उसने गैर कानूनी तौर पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल पाकिस्तान के वजीर खारजा की जानिब से नाम नहाद योम इस्तेहसाल से मुतालिक दिए गए बयान पर सहाफियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान की जानिब से नाम नहाद योम इस्तेहसाल मनाने की कोशिशों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा से भारत का अटूट और नाकाबिले तनसीख हिस्सा रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे। 5 अगस्त 2019 को किए गए आईनी इकदाम भारत का अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान को इन इकदाम पर तबसरा करने का कोई हक हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी इस वक्त पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर POJK में बुनियादी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का मुशाहदा कर रही है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल उत्तराखंड, झारखंड, मगरबी बंगाल के गंगा के मैदानी इलाके, उड़ीसा वस्ती, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने कल अंडमान व निकोबार जजायर, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक के साहिली इलाके, मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। मध्य प्रदेश से शिमाल मशरक के कुछ हिस्सों, जुनूबी कर्नाटक, जैली हिमालयी इलाके, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में इसी तरह की सूरत हाल की पेशगोई की गई है। जुनूबी कोरिया के आसन में जारी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी मिलीजुली रही। खवातीन के सिंगल्स में सभी 7 खिलाड़ी दूसरे राउंड में पहुंचने में कामयाब रहीं। वहीं मर्दों के सिंगल्स में सभी 6 खिलाड़ी इफ्तिताही राउंड में ही बाहर हो गए। खवातीन सिंगल्स में अनमोल खर्ब, मानसी सिंह, रक्षिता रामराज, अश्मिता चलिहा, ईशा रानी बरवा, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वैलिशेट्टी ने शानदार जीत के साथ दूसरे राउंड में जगह बना ली। अनमोल खर्ब ने हांगकांग चीन की लोसिन यान को हराया, जबकि मानसी सिंह ने कोरिया की किम जू योन को शिकस्त दी। रक्षा रामराज ने कोरिया की यून यू को, जबकि अश्मिता चलिया ने जापान की रेरिना हिरामोतो को हराया। ईशा रानी बरवा ने कोरिया की ली सो ही को, वहीं तन्वी शर्मा ने चीन की एंग की युआन को शिकस्त दी। श्रियांशी वेलिशेट्टी भी चीनी ताइपे की यूपो पी को शिकस्त देकर दूसरे राउंड में पहुंच गईं। हालांकि आकर्षी कश्यप को राउंड ऑफ 32 में कोरिया की और रितिका ठाकर कोरिया की जोड़ी को हराकर दूसरे राउंड में पहुंच गईं। मिक्स डबल्स में 6 दर्जे की शरुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अपने हमवतन खिलाड़ी सत्विक रेड्डी कनापुरम और राधिका शर्मा को शिकस्त देकर अगले राउंड में दाखिल हो गए। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाकर 37 करने का बिल मंजूर कर लिया है। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड्स को कानूनी हैसियत देने वाले बिल को भी मंजूरी दी। मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग ने बच्चों के जिंसी इस्तेमाल से मुतालिक मवाद, डीप फेक और प्लेटफॉर्म की खामियों पर भारत सरकार से माजरत का इजहार किया है। दफा 370 और

0: 35 ए की मंसूखी के 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आजम ने मोदी ने कहा कि इन आईनी तब्दीलियों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्की और आवाम को बाख्तियार बनाने के अमल को फरोग मिला है। भारत ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में खूनरेजी बंद करे, दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा करे। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

उनके अभिनय उनकी खूबसूरती पर भंवरे भी गुनगुनाने लगते हैं। फिल्मी पर्दे पर इनकी अदाएं और अभिनय की तारीफ के लिए चांद सितारों के उपमान भी फीके पड़ जाते हैं।

5 अगस्त 1974 को जन्मी काजोल हिंदी सिनेमा की सफलतम अभिनेत्रियों में से एक हैं। उनके कुशल अभिनय के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था।

काजोल को अभिनय की तालीम तो विरासत में मिली। काजोल की नानी शोभना समर्थ मूक फिल्मों के जमाने से समर्थ अभिनेत्री थीं। बाद के दिनों में उन्होंने कई सशक्त फिल्मों में उत्कृष्ट भूमिका निभाई। शोभना समर्थ की दोनों बेटियां तनुजा और नूतन अपने अभिनय कौशल में माहिर थीं और उन्होंने अपने अभिनय कौशल से लोगों को मोहित किया। माँ तनुजा और मौसी नूतन से काजोल को अभिनय की बारीकियां खुद ब खुद सीखने को मिल गईं।

काजोल की नानी, उनकी माँ और मौसी तो फिल्मी दुनिया की विशिष्ट अदाकारा तो थी ही, उनके चाचा जॉय मुखर्जी और देव मुखर्जी गजब के कलाकार थे। उनके खानदान में और भी एक्टर्स थे, रानी मुखर्जी, मुनीश बहल, ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्म बनाने वाले अयान मुखर्जी। परिवार में इतने सारे फिल्मी कलाकारों का जमावड़ा। फिल्मी परिवार के बीच बड़ी चुलबुली और शरारती सी काजोल पढ़ाई में अपना मन लगा रही थी। दोस्तों, काजोल के माता पिता ने पहाड़ों के गोद में बसी जगह पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉलेज में उन्हें दाखिला दिलवा दिया, जहां उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। लेकिन कॉलेज के दिनों में ही उन्हें अभिनय का चस्का लग गया। पढ़ाई के दिनों में ही काजोल को साहित्य में गहरी दिलचस्पी थी। वे साहित्य किताबें पढ़ती थी और बहुत सारी कहानियां पढ़ती थी। एक बार वे कॉलेज से, पंचगनी से मुंबई आई, वहाँ राहुल रवेल की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वहाँ उन्होंने कैमरे के सामने कुछ परफॉर्म किया, बस वहीं से उनके अभिनय की शुरुआत हुई। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। 1992 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म बेखुदी में उन्हें एक बड़ा ही सुंदर किरदार मिल गया निभाने के लिए।

उनके साथ थे नवोदित अभिनेता कमल सदाना और उनकी माँ तनुजा भी इस फिल्म में साथ थीं। काजोल ने इस फिल्म में राधिका का किरदार निभाया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास साबित नहीं हुई, लेकिन काजोल के अभिनय की बहुत बहुत सराहना हुई। और उसके बाद अब्बास मस्तान की क्राइम थ्रिलर फिल्म बाजीगर में उन्हें रोल मिला, जिसमें उनके साथी कलाकार थे शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी।

अभिनय की बारीकियों के कारण काजल को बहुत जल्द बेहतरीन रोल मिलने लगे और काजोल ने अभिनय की चुनौतियों को स्वीकार करना शुरू कर दिया और खुद को साबित किया। काजोल ने यूं तो बहुत सारे कलाकारों के साथ काम करके अपने अभिनय का जलवा दिखाया, लेकिन शाहरुख खान के साथ उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी।

सन 1995 में शाहरुख खान के साथ एक बेमिसाल शानदार और जबरदस्त हिट फिल्म आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में इतिहास का एक खास पन्ना लिख दिया। एक सिनेमा घर में 1000 हफ्ते से भी ज्यादा चलने का रिकॉर्ड बनाया है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म ने।

मुंबई के एक सिनेमा घर में आप अभी भी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये फिल्म देख सकते हैं। सन 1998 में शाहरुख खान के साथ काजोल की एक और हिट फिल्म आई, कुछ कुछ होता है।

शाहरुख खान और काजोल की एक और हिट फिल्म आई माय नेम इज खान। दोस्तों काजोल ने सिर्फ बेस्ट हीरोइन का ही रोल नहीं किया बल्कि नेगेटिव रोल में भी काजोल बेस्ट एक्ट्रेस कहलाई। उन्होंने फिल्म गुप्त में रोल किया नेगेटिव लेकिन रिजल्ट रहा पॉजिटिव। इस तरह काजोल ने साबित कर दिया कि काजोल हीरोइन का रोल करें या खलनायिका का रोल करें रहेंगी वे उत्कृष्ट अदाकारा।

0: हर लड़की के जीवन में एक रोज एक राजकुमार आता है। वो राजकुमार उसके सपनों में नए रंग भरता है। काजोल के फिल्मी करियर और निजी जिंदगी के हीरो बने अजय देवगन।
1: देखो देखो जानम, हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए।
0: अजय देवगन के साथ काजोल ने कुछ बेमिसाल फिल्में दी। ये फिल्म है इश्क।

फिल्म दिल क्या करे। इस फिल्म में उनके साथ थे अजय देवगन। 1994 में आई फिल्म हलचल में काजोल ने शर्मिली सिन्हा की भूमिका निभाई थी। सन 1998 में फिल्म आई थी प्यार तो होना ही था, जिसमें काजोल ने संजना पटेल का किरदार अदा किया था।

सन 2006 में काजोल की फिल्म आमिर खान के साथ आई थी। फिल्म थी फना, जिसमें उन्होंने एक नेत्रहीन कश्मीरी लड़की की भूमिका निभाई थी। खास बात यह है कि इस फिल्म में ऋषि कपूर पर्दे पर नजर आए थे।

0: आमिर खान के साथ कुछ फिल्में और की थी काजोल ने, जैसे फिल्म इश्क। हालांकि फिल्म इश्क में आमिर खान के साथ थी जूही चावला।
1: काजोल की बेहद कमर्शियल फिल्म आई थी हम आपके दिल में रहते हैं। इस फिल्म में काजोल के साथ पर्दे पर नजर आए थे अनिल कपूर।

काजोल बनी थी मेघा वर्मा। सन 2000 में आई फिल्म राजू चाचा। सन 2001 में फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी।

0: कुछ मीठी।
1: दोस्तों, काजोल को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। सन 1996 में काजोल को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

सन 1999 में फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड। सन 2002 में कभी खुशी कभी गम फिल्म के लिए मिला काजोल को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर। अभिनेता थे शाहरुख खान। सन 2007 में आमिर खान के साथ काजोल की फिल्म आई फना, जिसके लिए मिला उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 2011 में फिल्म मायने मिस खान के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इस फिल्म में अभिनेता थे शाहरुख खान।

काजोल के फिल्मी करियर की एक बड़ी बेहतरीन फिल्म आई थी तानाजी, जिसमें अजय देवगन बने थे तानाजी मालूसरे, काजोल बनी थी सावित्री बाई और सैफ अली बने थे उदय भानु सिंह राठौड़। बहुत सारे फिल्मी समीक्षकों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी।

काजोल की अभिनय यात्रा आज भी जारी है। सन 2015 में उनकी एक कॉमेडी फिल्म आई थी दिलवाले। फिल्म खूब चली थी।

सन 2021 में आई फिल्म त्रिभंगा, इसके बाद सन 2022 में आई फिल्म सलाम वेंकी। काजोल ने कुछ वेब सीरीज भी की, जैसे कि द ट्रायल। काजोल ने अपने फिल्मी करियर में हर तरह के किरदार निभाए। वे कहीं चुलबुली लड़की के रूप में पर्दे पर नजर आईं, कहीं गंभीर स्त्री, तो कहीं बेहद रूमानी प्रेमिका या पत्नी।

अभिनय के अलावा काजोल एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और विधवाओं और बच्चों के साथ अपने काम के लिए वे काफी चर्चित हैं। काजोल ने सन 2008 में कुछ रियलिटी शोज भी किए जिसमें एक टैलेंट जज के रूप में भी उन्होंने काम किया।

0: काजोल का फिल्मी करियर काफी विराट है। उनके पूरे करियर को समेटकर सारी फिल्मों का जिक्र करना एक कार्यक्रम में संभव नहीं है। आज बस इतना ही।
1: जाती हूं मैं,
2: जल्दी है क्या?
1: घर के जिया,
2: वो क्यों भला?
0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी अभिनेत्री काजोल पर।
1: जाती हूं मैं,
2: जल्दी है क्या?
1: घर के जिया,
2: वो क्यों भला?
0: शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। पेश खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को मोहम्मद फखरुल हसन का

मिलन फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी मुकेश और लता मंगेशकर की, संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की अगली पेशकश है ताजमहल फिल्म से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, साहिर लुधियानवी के बोल हैं और रोशन का संगीत है।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना।

0: आदमी से ज्यादा वफादार है। हप, हप, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी को मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

मेरा नाम जोकर फिल्म से अभी आपने ये नगमा सुना। आवाज़ मन्ना डे की थी, संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आइए सुनते हैं ब्रह्मचारी फिल्म से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन।

अंदाज़ फ़िल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें थी किशोर कुमार और साथियों की। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। पहचान फ़िल्म का गीत आइए सुनते हैं, आवाज़ मुकेश की है।

मेरा साया फिल्म से अभी आपने ये खूबसूरत सा गीत सुना। आवाज़ लता मंगेशकर की थी। राजा मेहदी अली ख़ान ने इस गीत को लिखा था और संगीत से संवारा था मदन मोहन ने। और ये है रजनीगंधा कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म वो कौन थी से। आवाज़ लता मंगेशकर की है, राजा मेहदी अली ख़ान के बोल हैं और मदन मोहन का संगीत है।

इसी नगमे के साथ ही अब आज का रजनीगंधा कार्यक्रम समाप्त करने की मोहम्मद फखरुल हसन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा।

0: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई, विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहाँ के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहाँ खुश है।
1: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू होने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी कर प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए आज भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मुंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्सकॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मान हानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा है। तथाकथित यौमे इस्ते साहल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रैट माइनिंग श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग हादसे का बचाव अभियान हाल के वर्षों के सबसे कठिन अभियानों में से एक था। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी नाबालिगों को आईएसआई द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature